एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया।

0: जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः की 6:05 हुए हैं। चिंतन।

समय पूरा होने पर शून्य में विलीन हो जाता है। न जन्म मैं और अह के माया जाल में उलझ जाता है। भगवान ने उसके भीतर जिस स्नेह प्रेम व सह मैं और अह के माया जाल में उलझ जाता है। भगवान ने उसके भीतर जिस स्नेह प्रेम व सहानुभूति के

मनुष्य का हृदय ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है और उसी मंदिर में उसकी आराधना हमें करनी होगी।

हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और उन्हें बजरंग बली के नाम से भी जाना जाता है। वे बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी की पूजा करने से सब सुख और शांति समृद्धि प्राप्त होती हैं। वे संकटों से रक्षा करते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का भाग 114।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारी आज की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 का समय रहेगा कार्यक्रम शुभ प्याग का। प्रातः 8:30 पर कार्यक्रम नौके लोग नौकियां गल्ला प्रसारित किया जाएगा। प्रातः 9:00 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। दस बजे सुनिए कार्यक्रम गीतों का कारवां। 10:30 पर पहाड़ों के सुर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 11:05 पर हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की सुनिएगा। प्रातः 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। 12:00 समय होगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 5:10 पर सुनेगा कुछ भजन। 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच। 6:06 पर किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी प्रसारित किया जाएगा। 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। 7:10 पर विशेष कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 9:15 पर एक ही गायक गायिका के क्रम में आज सुनी गायिका सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाए गीत। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम धाम गीतांदी। और 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत सुने चित्रपट संगीत में। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 11:00 3:00 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9:00, 12:00, 5:00, 7:00 और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, 12:05, 5:05, 7:05 और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 31 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुं, उपनिरीक्षकं मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुं च मृत्योपरान्तं वीरचक्रं प्रदत्तम्। आंध्रप्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2 लक्ष रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2000 तमवर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, संपर्कं, राष्ट्रीय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनः पश्चिम बंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिमवंगस्य मुख्यमंत्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋण प्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्य सर्वकारेण सह निकट समवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्तर्राष्ट्रीय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम

0: देशस्य कार्डिफ नगरे षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतम वर्षस्य आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वचषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं षड्विंशति धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना हो की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच

0: or led Women in Blue posted 179 for 8 in the stipulated 20 overs, powered by Bharti Fulmali's unbeaten 56 runs of 40 balls. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुहानी।
2: सुबह सुहानी। सुहा सुहानी।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आज के विचार के साथ। श्रोताओं, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक सोच है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। ठीक वैसे ही एक अच्छा विचार जीवन बदल सकता है। कभी परिस्थितियों से मत हारिए, क्योंकि पतंग हवा के विरुद्ध उड़ती है, उसके साथ नहीं। संघर्ष ही मनुष्य को मजबूत बनाता है। आज का दिन शिकायत में नहीं, कृतज्ञता में बिताइए। जो आपके पास है वही किसी और का सपना है। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी के जीवन की उम्मीद बन सकता है।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे आज के दिन के बारे में। जी हाँ श्रोतो, आज 9 जून है और 9 जून का ये दिन इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। नौ जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन 9 जून 1999 में कुली ओडेजो माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण तथा उत्तर दोनों छोर से चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। 9 जून 2006 में म्यूनिख में विश्व कप फुटबॉल की रंगारंग शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 9 जून 2008 में केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन ने चंडीगढ़ को तंबाकू मुक्त घोषित किया। 9 जून 2008 में अभिनेता शाहरुख खान ने 9वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार समारोह में फिल्म चक दे इंडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। 9 जून 1913 में स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध नेता चौधरी दिगंबर सिंह का जन्म हुआ। 1949 में आज ही के दिन भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी का जन्म हुआ। और आज ही के दिन 9 जून 1975 में हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमीषा पटेल का जन्म हुआ। आज ही के दिन 9 जून 1985 में फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर का भी जन्म हुआ था। और 9 जून 1912 में भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई का जन्म हुआ। श्रोताओ, तो आइए सुनते हैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, आज 9 जून है और 9 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। मानव सभ्यता के विकास के साथ आम आदमी की जिंदगी में दस्तावेज यानी अभिलेख का महत्व बढ़ता गया। हर आदमी अपने दैनिक जीवन में अभिलेखों को सहेजता और संवारता है। ये अभिलेख अपना आपका राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आपकी डायरी, कुछ भी हो सकता है। हमारे आपके सहेजी ऐसे ही दस्तावेज और अभिलेख कई बार पूरे समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही अभिलेखों के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और कार्यक्रम में अब एक नजर डालते हैं समाचारों की सुर्खियों पर। श्रोताओ, रेलवे ने दक्षिण रेलवे में मरारी कुलम आलपुझा खंड को डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ईरान और इजराइल तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा, सरकार के 12 वर्ष होने के साथ ही भारत अवसरों और नवाचार से प्रेरित राष्ट्र के रूप में उभरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना जीर्णोद्वार के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। और सरकार ने कहा, देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी, और कार्यक्रम में अब बात करेंगे मौसम की। श्रोताओ, हिमाचल के मौसम की अगर बात करें तो सोमवार को प्रदेश में तेज धूप खिलने से गर्मी में के तेवर जो हैं वो कड़े हो गए हैं। दिन के तापमान में करीब 1 डिग्री का अंतर आया है, कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट आई है। धर्मशाला में तापमान की अगर बात करें तो धर्मशाला में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। तो इस गर्म मौसम में आप सभी को अपनी सेहत की जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो आप अपने साथ पानी की बोतल या फिर पानी का प्रबंध जो है वो साथ करके चलें, क्योंकि गर्म मौसम में गला जल्दी सूखता है और हम अगर अपनी परवाह नहीं करेंगे तो फिर हमारी

0: सुबह सुहानी। सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम शुभ्याग के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अशोक चौधरी की आवाज में गाए इस लोक भजन के साथ।

0: दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में संवाद बहुत जरूरी है और यही कोशिश करता है आपका अपना आकाशवाणी धर्मशाला का परिवार।
1: जी श्रोताओं, चैटिंग और मैसेजिंग की इस दुनिया में आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां जुड़ती है आम जनता की आवाज, उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी उम्मीदें।
0: आपकी इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी, जहां हर राय मायने रखती है, हर आवाज गूंजती है।
1: साथियों, जनवाणी सशक्त माध्यम है आपके और हमारे बीच संवाद का, जिसमें आप फोन कॉल्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं।
0: क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है, तो आइए मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं कार्यक्रम जनवाणी में, हर शुक्रवार सुबह 9 बजे FM धर्मशाला।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom, TNC.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रयाग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।
1: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है?

0: मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं

0: क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जाँच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध

0: करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के लिए जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांतिवार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए। 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: केसरो, ओ केसरो, केसरो, ओ मिया कुछ कमरे बड़ी है तू, ओ इस कमरे भी नहीं है, ताहे जान्दी वाला, इधे इत्थु भी नहीं है, केसरो, करे कोई नहीं है, केसरो,
1: तोड़ दे पिता, सारे पिता तोड़ी दे तू, दिखिया छेड़ दी थोड़ा भी, जालू दिखे तालू बिना सदियो चलियो उन्दी, ना तेरी चिट्ठी, ना तेरा फोन, ना तार, बिना मतलब ते, इलड़े हैंया, ना कोई तेरा संदेश सा, ना कुछ, चलियो बिना सदियो, चलिया चलिया, जिस पाहे नी दिखे तिस पाहे बैठियो मैं,
0: मिंजो की बता तू सिर सैड़ हुए बैठियो, ए दिखमी पतरे दे लायो ते, बची की है गई तू,
1: आई नी बहुत जो खुशी है ना, कि केसरो बची गई,
0: मी में तेरे सुख शांति ताई दिखला ताई तो काली ब्योरी हुई ही मिले बड़ा भरी लन गया पता नहीं केसरो दा सहर सहलू बचिया कि नहीं बचिया ता दौड़ दी चली ही सुख शांत भी पूछना का नहीं ले छाई दे डब्बे पकड़ी सी हो कालकनी रखी हो खटी हो यही है उन पानी पाई पाई के पिंदी रही है इसी हो
1: आ ए तो तेरी सह गल होई चीज ना पोवे मुंह में तो खा मेरी ये नुम में पर इत्थु तो साब है केसरो तू खा खटिया छाई ले दौड़ी होंदी मिठी खवाई होंदी लोग कहेंगे ना खटिया ले होंदी केसरो यो
0: ओना ना तो टाइम में दे कने ले आ कर मैं कर कर देना नहीं ओना होंदा
1: बैठ बैठ चा पानी जड़ा करना करी ले प्या गई ना ना कोई बकना बैठी गया अपने सो कम्मा छड़ी करिए ना पसूड़िया दा बखा बेहिया मिये बेहिया
0: मी केसरो बड़ी इज्जत पाई तै मेरी तेरे घरे के आई अज मैं ता सोगी छाई दे डब्बे भी लेके आई करे उपरे ते बोला दी खट्टी है
1: छा लंदी तो लगी तो प्याना तिजो में चाह मिये बैठिया बड़ा तमाड़ रखने नुआई देनी है करी तिसने आईनी बो आईनी निश्चा रे आजकल शांति है जरा निश्चा नहीं रहा अली मैं गला दी थोड़ा बहुत इलण हो तमी नी माणू समझा दा कि चो दिना दे प्रोने ना हाँ रखियो मने च सही ए नी ओ नी ए खरा ओ बुरा बैठ बैठ करना दे चाहिए
0: पता नहीं मी तू सीता गीता दे पापे ने लड़ी हो कि क्या मंजोंदी खाना पे ये कोई नहीं मेरे खातिर कीती तू छड़ परा ए दस मिये इलन होया ना तल तू क्या करा दे ही मैं सोचे जाई ने पहले केसरो दा सुख शांत ले आंदी है अंदर थी तू हैं दसे मी सुती थी
1: राती या कड़िया को ये जाना था अंदर ही थी मिये कने जिन्हें ही पहला टोलका लगा हाय बो मिये गठड़ुए दी याद आई मिंजो ना ठी मैं भी गठड़ुए तो अपना पर मिये याद था जड़िया को तू रखी है जे भूली होंदी ना आ मिये बड़ा मुश्किल था गठड़ो लाया इक्का कने दौड़ी यही मैं बारे हो
0: गठड़ू कह दा गठड़ू
1: इतना के दसी तो सही बड़ा है लोग सुनी लेंदे दे दिया गल्ला नहीं दस दे
0: अच्छा तू गठड़ू तैयार ही रखे था तिजो पता था कि लड़ोना है मिंजो क्या नहीं दसिया ते मैं भी गठड़ू पर नहीं रखना हा मिये जालू लड़ होए मैं ता मिये बोड़ी ते गुड़ गुड़ गुड़ कर दे लो ये चप्पला में नहीं पाना मिलिया एक लत अंदर एक बार
1: ओहो ए ते लड़े दी गलती हो ये कि कैसरो गलाई या कने तिजो नहीं गलाया तिन्नी कि मैं लग गया होना अड़िए तू किदी गप्पा मारा दी मिंजो लगा दे इलिया तेरा भी दिमाग इलने ने करने करने
0: इलना नहीं इड्डा भरी झटका लग गया हमिए हाँ दे तू चाय दे कुट चली पोना फिर गाय अंदर बंधनी है माख खा दी उनी ते ना यो
1: ओ शांति ये दो कड़ियां बे भी आ कर मिए जिंदगी मिलियो नंद भी लिया कर जालू दिखे गाय मई दूध क्यों दही छा बैठ कने नंद ले सचाई दा बैठ बैठ

0: मी केसर तुझे पता है मैं सुने ना बखे आले दे ना सारी टीरी पे होए मी ए लगी टोटरी च तिने दे मुनुए हो ताई ते मैं बोले केसरो दा भी सुख शांत ली होंदी घर बार सब कुछ ठीक है कि नहीं। मी पूरी रात मिंजो नींदर नहीं आई, जरा नींदर नहीं आई।
1: ओ शांतिए ते सैला दी गल लाई मी ए फोलणी दी याद आई ए मिंजो तिसा दा भी क्या तिजो सुना मैं हिसाब किताब। खरा बड़ा मकान पाया एन बढ़िया बंगला पाया पीरे भी मुंडरा तिथु कच्चे दा पाहे ठोकी सड़दी।
0: ए ते दुख मी तिसा दा मंदी नहीं है सै तू ठीक गलाया। पता नहीं मी लण एड्डी जोरे होया पता नहीं तिसा दा सैलू बचिया कि नहीं बचिया और सैलू छड तू तिसा सै बची होंगी कि नहीं बची होंगी दबोई ते नहीं मरी होंगी कुतकी।
1: ओ नी है तोली जाने आली पियोंगा ते सैल पियोना कुतकी प्रला तिसा पर निकले होना तिन्ना नमाने हैया। पर पीरी भी मिये पता नहीं हुंदा इलने दा एक तू हाड़ा अपना सक्का वे सुने है मर्दी मर्दी है बचियो सकसांत पंतरा ले ओंदे तिसा दा ले एक छाई दा डोलनु और नहीं ता इसी चुक जाए ओंदिया करी
0: आता चल ता चल।

0: ए दिख मी इस दर सैल वे दिखा अल्ली भी पुरानी संगली लगी है ठोरे मी ठोरे सा फिर ठोरे सा यो
1: पीरी ठोरे तू कुंडिया ने खेलन आई इस सुंगलिया ने जे सुंगली पटोई ना तो उन्ना खाई सड़नी है ना हदोनो जितो मारा आली गाल लो है केसरो गा करीन दिए
0: उंगी भी
1: फोलड़ी ओ फोलड़ी
0: ऐ वो अंदर ही है
1: ओ याओ मी ये खड़ा का
2: ए कुण आई रे आज ऐ कुण
0: ऐनी पछड़ो दिया
2: ठहरा ठहरा अनका लाना दे जरा करी जड़ी इयां आखी भी नहीं हुण कम्मे दियां रहियां ए कुण गला दिए
0: मैं नी ओ मी ये फोलनी है तेरा स्यापा तेरा मैं शांति ए मिंजो ने आई हो केसरो दिखे है तू जिब खुल दी तेरी मिंजो ने बड़ा चपर चपर पांदी तू
1: बक्खा होंगी दादा मैं दसगी फोलनी केसरो मेरे पाहे दिख मैं पणछुईयाणी
2: पणछुईयाई मिंजो तू मी पणछुईयाई कने ओ भी पणछुईयाई जरा की भलेखा लगा है सुखी यही क्या होया मिये
0: कट सुझा था तुझे एक ही अखी ते दुन्नी ते दिख खरी ते बदिया
2: दुन्नी नी अखी मेरिया खरिया न पर जरा करी लगी पे नजरा च फर्क पौना तू आ कियां की पूजियां आज
0: ओ मैं सोचिया सुख शांत ले आंदी फुलणी एदा एडा भारी मी जड़जड़ आया हा एडा भारी

0: लड़ाए हमिए तेरे रसैड़ुए दी चिंता लगी मेले फुलनियो जाए के पुछी ओंदी है जिंदा है कि चली यो। कने कालकड़ी मिये ग्राए च नी सुजी बोले चली यो चार धाम गई है कुथी ही तू
1: जेड़े गला दे ना चार धाम तिने पुछ भला जिसक सांत तू हां फुलनी दाई के लिया भी चार धाम हो ये मेरे घर ही बिस्तरा ही पियो साल हो ये मिंजो भैन सदियो अपनी ये बिचारी करा दी के माड़ा मोटा काम ता मिंजो खाने समला मिलना दा समझायो।
2: हां जी नमस्ते जी नमस्ते बैठा जी बैठा। ए भैणा दा तो क्या है ना अजकल थोड़ी दी तबीयत खराब चली हो तो भई मैं आई हो थी।
1: तू बड़ियां गल्लां मत करा चा लिए फटाफट होना ही है तो हुन चाय दा कुटता पूछना ही पौना।
2: बिल्कुल जी बिल्कुल बैठा तो हां पहले मैं तुहानू पानी पियांदी फिर चाह लियांदी है। ठीक है जी कोई गलाने दी गल है
0: खरी फुलनी तू हुण
1: हुण तां खरी है ताई तां तेरे सामने खड़ूती हो पर पहले नहीं थी मैं खरी दूवे जुगे हटी है मैं तां
2: ले जी ले पानी पी है पहले।
0: अधिक फुलनी मी खरा होए तेरी भैन आई रही हो एडी भारी सेवा करा दी मी दिख आंदी इतनी सेवा ता तेरी जान भी नहीं बचाई हड्डी मिंजे लगा दा।
1: ओ मी ये बोल दे हसदी दा गहना ए भी ना करा दी ही पहले पड़े परी मैं मिंता कितियां चले आ मी ये दो कड़ियां जे दिखनी है भैन चार दिन जिंदी ता ये भी कुतू टाइम सो कम बेहतर है कोई दुकान कोई बच्चे स्कूल ना भेजने फिर मैं बोले मी थोड़े दिन कढ़ाई दे मेरे सब बच्चे भी हुन बाहरो बाहर रहने आले ताहे कुन पूछा दा
2: मियो हुन तुहां भी आईया करा ना दिखा तुहां भी त ग्राए दीयां न त तुहां भी नी औंदीयां हाल चाल पूछना त बीच बीच औंदीयां रिया करा त ए जे लण नी औंदा त तुहां औंदीयां नी हाल चाल पूछना।
0: आहां दे बाए गईयो फुलनी चार धाम सांजो क्या पता बिस्तरे पईयो अपने अपने के काम लगे होंदे पर मी फुलनी दिखता आहां इतनी भारी डरी आईयां
1: डरी ता मिये मैं तो उठने जोगी नहीं रही लण जे आया ता
2: ले ले हुन चाह पी लिया चाह ये चाह पी
1: लिया रखी दे मिये चाह ही रखी दे दो कड़ियां गलाना दे
2: पकोड़े भी बना थोड़े दे
1: मैं गलाए ते जो पकोड़े बनाने हो ए बेसन पे अंदर जाए के दिख भला ये भी खवानियां पकोड़े कदी चलिए तू अपना काम कमाई ले
2: तो ठीक है फिर ना बिस्कुट ही दे इंदी है
1: रहने दे तू चली पडोल के तीजे से कम में लगी कर बिस्कुट अपने खवादियां मिंजो ये रोज
2: तो मुझे ना सिर्फ कली चाय पियानी
1: तीजो ने पता तू चार दिन आई हो ना मैं जान दी ने ग्राए दी है
2: चल चल ठीक है फिर जिया तू गला दी अड़िए
0: मी केसरो ये बढ़िया खुसर पुसर नहीं करा दी भैना भैना बड़ा प्यार मी ना दूनी दा पुछ दिख मी भैन के एडी भरी काम मी चाय पुछा दी पानी पुछा दी है ना
3: आ मी ये शांति बड़े सुख भैना दे बड़े सुख मिये करमाले मिलदे भैना दे सुख नेड़े तो मिये दिख भला फुकरिये ही ना इसे ओखिया घड़िया मेरिया धन पर कैत लैनिया बड़िया भारी दूर दूर ब्याई सटियां ना है सोखिया आंदियां ना सै ओखिया घड़िया आंदियां बड़िया छमाइया एक बारी पुजना ती ना कुतकी री लोग गलांदे कुड़िया कुड़िया होइया कैत लैनिया मिये इस टाइम आंदियां कुड़िया याद ये बड़े रोने नहीं रोने की कुड़िया खरिया नहीं आंदियां कुड़िया भी बहुत बदिया होंदिया खरी शिक्षा खरे संस्कार देंगे तो कुड़िया मैं गलांदी पई स्वर्ग बनाई दी करे
0: ए तो खरा होए मी फोलनी तू ठीक है खरी है बांकी तेरा ए रसैलू भी खरा है मैं तो सोचा दबोई मरी होनी कुतकी पर मिये लोकां दे बुरे हाल
1: लोकां दे हाल कहने होने मिये इतनी इतनिया बड़िया बड़िया कोठियां पाइया दे दिया हिलण जरा कि ज्यादा आई आंदा ना तो मैं बोलती थे ना बेचारे ज्यादा नुकसान होना हा कच्चे टप्पर वाले खरे टेई पौंदा था मिंजो पर क्या पौने दो बही पौने थे
0: आसे तो ते इन्हें ही सारी लेने हैं ना
1: ओ मैं भी ये प्राणी खराका खा दिया कोई एडे कच्चे भी नहीं है ना बच्चे भी दसा दे फोन ना चौदह पे लोगों के घर बोले नुकसान हो थोड़े थोड़े बे ओयो ही है ना
0: हाँ ये तो चेतावनी है बोले अली तो बड़ा कुछ होना बाकी है ए मैं तो बोलती सारे हाँ असा तुसा लोका दे कारनामे ने मी फुलनी दिखना यात्राएं जा दे लोग यात्रा तो करा दे पर उ तुम्हें गंद पाई ओ दे ते देवत्यां देना ही है दोष फिरी
1: लोकां मिये मैं बड़ी होई हो कने हुण सै दिखा चार धाम पहले कोई स्याणे बाणे जांदे थे जे सारा घरे दा निपटाई आना सारा कम कार करी आना बच्चे ब्याई आने हुण तो मैं बोला दी जे बच्चे चली पवा दे नोए ब्याते चली पवा दे तू घूमना फिरना जा दे ते देवते भी सच्चे प्रचंड होए
2: बिल्कुल ठीक गलाई तू हाँ सारिया ना दिखा क्या होंगे ना कि उत्थी खा दे नमकीन खा दे बिस्कुट खा दे कागजा तिथी सट्टी आ दे एना बोतल सट्टी आ दे पैसे कुनी चुकना तेना बुढ़े आई के चुकना है पैसे इतना भी नहीं सोचते
1: ये तो ठीक गला दी मी ये तो स्कूले भी लगी थी पहले मैडम तेत बड़िया भरी गल दसा ही तीजो पर तलू सह भगत आई हाँ तो तलू तो सुध बुध नहीं रही कैसी दी भी सब कुछ भूली आंदा ना अपना कोई समान दुसदा बिकता है नसी है बत भी नहीं दुसदी तलू तो
0: बड़े लोग नहीं होया बार तो आई खड़ोते पर बत नहीं सुजी कुसी
2: भाई तू हाँ ठीक गला आई है दिखा तलू ना छड़ा हांजो अपना कोई गठड़ू नहीं संभालना चाहिए तलू हांजो दिखा पहले तो तैयारी रखना चाहिए जियां कोई पानी की बोतल हो गई कुछ खाने का समान हो गया जे गठड़ू पल्ले रही है हाड़े कने अखे बखे कोई दुकान ही नहीं रही तो खाना भी क्या तो इसते पहले तो हाँ अनाज अपना खाने पीने का समान सुरक्षित रखे होगा तो तलू खाई तो सकती हाँ
0: तो सह भी जान बच गई ता ही ना फुलनी है ना आह मरी ये फिरी
1: इसे खाने की पे रही मीए तलू जानी बचाने दी ये बोला दी खाने का समान पाई लिया सह तो इन्ना ठीक गलाया पर पे खाने का समान थोड़ी पाना और बड़ा कुछ सोचना पौंदा घरे का बच्चा डंगर बछुआ दे बोलते जोड़े जाड़े खोली देना चाहिए तलू जिसे ओदे गल हुआ था कहीं नजीबा माल बेचारा मारना अपनी अखी सामने ना
0: पर दे दे दुर्घटना होनी है पता लगे ता ना हूं तलू जड़ जड़ जड़ जड़ करके हिलण वादा हुआ है आपू नसना कि डंगरे नसाने कि समान चुकना कि जान बचानी
1: पहले तो मैं बोलती जान ही बचानी जे आपू रहेंगे ना तो और चीजा भी यहां दिखगे पर भाई इस बारी मैं भी बड़ा भरी महसूस किया हिलन था पर बड़ा भरी ज्यादा था इस बारी
0: करे मी बोला दे कि मौसम बदलो ही आ
1: बोला दे पे तीजो ने दूसा का मौसम बदलो ही आ जित पाहे जा दिखा करा दे कर बड़िया बड़िया बिल्डिंगा चिणिया लोग तो मीए सोचा दे भैनने जमीन भी नहीं रहा थले बदलूना नहीं तिन्नी भला सभी दुखी है मौसम भी अहां ते अह अपनी नीति बदलिया चार चार छे छे महीने तो बरसात हो दिब कने जे गर्मियां हो दियां कने जे दो बरखा पे आ दियां तो भावें बोला दी कोटियां कढ़ना पे आ दियां ए मैं हिसाब लिया ये काम ही खराब है कने अह तुहें अकल करना पौनी है थोड़ी मैं छड़ी दिया
2: कहने भैने ये है कि भाई सांजू जेड़े से बूटे भी ज्यादा लाना पौने कले सांजू सह लैने मुश्किल हो जाने
1: सह तो होना नहीं सल है जे बूटे जी सल है बड़ी बड़ी सट्टा देन ना तिना दू बूटिया हाड़े तुआड़े लाए तो पता नहीं बेचारे कदू बडूना जेड़े जमाने दे रुख बूटे सह सुर नहीं छड़े लोग
3: आमिये फुलनीये तेरी गल सोला आने है माणू अभी जाड़ पाइयो कने डंगरा ये जेड़े बारा छड़े ना बड़ी भारी जाड़ पाइयो कोई रुख बूटा नहीं तैयार होना दे हूं दे पलछ तो होने बड़े भारी पलछ होने
0: ठीक है फुलनी तो मीए ये गल चली रहनिया चली पौंदी मीए घरे भी बड़ा भरी काम है चल केसरो चली पौंदियन अच्छा फुलनी ता चली पौंदियन तब केसरो चल तो चली पौंदियन
3: उठे ता उठे कहे बैठी कालू दी अड्डी राम कथा लाई करिया फुलनी
1: हाँ
3: आई नी बो जान खरी सदी फुलनी ध्यान रखिया चल दिया ना हा
1: रख्या मीए रख्या भी दो चार दिन नहीं है भैन भी गला दी भी चली आना ना पर मैं बोला चलो जरा कि जंगा सधेरी तीन ने मेरिया ना चलने वाली हो गई तो हूं मैं मठिया मठिया चलो करना तुहाड़ा भी कदी कदी
3: आ निकले आ कर जरा के घर ते ना
1: तू हाँ भी चले आ करा तमी पुछी आ कर हाल चाल
3: कोई नी ए होंदा ना दुईया बरिया फिरी
1: कौन
3: ए हिलण ए पीरी लगा तो यहाँ तेरे सुख शांति हो आला
1: इसते पहला नहीं आई सकती है पे हिलने ने आला है तू हाँ
3: अमी ये सुख शांत लेने दा चल कोई पाना मिली जाएगा तू ध्यान रखिया
1: दे दे पाना नहीं चाहिए बो सारे सुख शांति चाहिए दी
2: फोलनी पैन ये तो चली पिया जरक मैंने रोटी राटी बनाई दी है थोड़ी देर बोल बहने
1: सामने ना मिंजो मत गलवा कर चली तो जाना डोल कितिया ने हूं तीजो घड़िया घड़िया खाने लेवा तीजो नहीं पता इन्हों का ये भी नहीं पुछदियाँ चाहे तो लावा मिंजो कुछ भी
2: मीए दे दिए ने मिंजो नहीं है पता था ही नहीं आंदियाँ पुछना
1: चल चल तू कमाई अपने कमे मिंजो जाना देने लगी भेजना
3: अच्छा फुलनी चल दिया ने ता
1: रुको रुको मीए चली पिया चरफट खादा भी नहीं कुछ रोटी लगी बनना खाई के जानी थी
0: ना ना मीए बस सुख शांति लेना आई हियां रोटी घरे बनानी कने खानी चल केसरो चल
1: ओ मीए दो मिनट लगनी हियां खाई आना था ग्राह ग्राह जरा करी
0: ना ना मीए फुलनी फिरी खांगियां
3: ओ शांतिए मी बड़ा पर जोर पाए अन्ना खाई लेनी है
0: चल चल तू इन्हें बोल दिए चल
2: ओ फोलनी भैन तू मिंजो मना करा दी कने अपू तू बड़ा बड़ी जोर पा दी अजे बेही इया ता
1: तिंजो नहीं पता चली इया ना इं पुछ दी मैं जाती है बरिया कौन बैठे इन्हें बुढ़े का नौकर इतू मिंजो तो नहीं बन दी रोटियां कने तू भी जे रहेंगी पांच सत दिन कने दुआर हो गई ता कड़िया कड़िया मत पुछ दी ठीक है ता जा ता आनी रहने कदी कदी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजे हैं, अब समय है फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का।
2: हेलो धर्मशाला,

0: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं हाजिर हैं कार्यक्रम हेलो धर्मशाला के साथ और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं इस कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और सुनते हैं प्यारे प्यारे से गीत। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि जिन फिल्मों के गीत इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकेंगे वो फिल्में हैं अभिमान बादशाहो, चलते चलते, दाग, दिल है कि मानता नहीं, फर्ज, जब वी मेट, मुकद्दर का सिकंदर, पद्मावत और तमाशा। इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे। तो जल्दी से हमें फ़ोन कीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391 और हमसे बात कीजिए, अपनी पसंद का गीत आप इस कार्यक्रम में सुनिए। फ़ोन नंबर एक बार फिर बता देते हैं 01892224391। हेलो धर्मशाला।
1: हेलो मैडम, प्रदीप बोल रहा हूँ हिमाचल से।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: प्रदीप सिंह बोल रहा हूँ मैडम।
0: प्रदीप जी, अच्छा, फतेहपुर तहसील से बोल रहे हैं आप, और मौसम कैसा है प्रदीप जी वहाँ पे?
1: आजकल तो बहुत गर्मी है
0: जी, और धूप तो काफ़ी है और बाहर नहीं निकला जाता होगा वहाँ पे तो, है ना?
1: जी जी मैडम।
0: अच्छा, पहले प्रदीप जी ये बताइए कौन सी फिल्म का गीत आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएं?
1: कौन कौन सी फिल्म है मैडम?
0: फिल्में हैं अभिमान बादशाहो, चलते चलते, दाग, दिल है कि मानता नहीं, फर्ज, जब वी मेट, पद्मावत, तमाशा और मुकद्दर का सिकंदर।
1: आप बादशाह का सुना दीजिए मैडम कोई सा।
0: बादशाहो है, बादशाहो जो नई वाली फिल्म है ना। हाँ,
1: कोई सा भी सुना दीजिए मैडम।
0: नया सुनोगे?
1: जब भी मेट का सुना दीजिए।
0: जब भी मेट का कौन सा गीत?
1: कोई सा गाना सुना दीजिए।
0: कोई सा भी, ठीक है। और करते क्या हैं आप प्रवीण जी?
1: मैडम मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ।
0: अच्छा, और वहीं पे फतेहपुर में ही हैं?
1: नहीं नहीं मैडम, हाँ जी, बस हाफ ऑफ हिमाचल है।
0: अच्छा,
1: सेल्स में हूँ मैं।
0: ठीक है, और अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, सुनिएगा।
1: ठीक

0: कार्यक्रम हेलो धर्मशाला आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम के साथ तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 01892 224 3 91 और हमसे बात कीजिए और सुनिए अपनी पसंद का कोई भी प्यारा सा गीत जो आज हमने फिल्म ली है। 01892 224 3 91 ये है हमारा फ़ोन नंबर। आप इस नंबर पर कॉल करके सुन सकते हैं प्यारे प्यारे से गीत।
1: नीलम, छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हेलो धर्मशाला।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मैं राकेश कुमार मलेरकोटला पंजाब से। फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर का।
0: राकेश जी, क्या करते हैं आप?
4: हम फैक्ट्री में काम करते हैं मैडम जी।
0: किस चीज में?
4: फैक्ट्री, फैक्ट्री में।
0: अच्छा, और अभी काम चल रहा है आपका, है ना?
4: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: और साथ में यहाँ के कार्यक्रम भी सुने जा रहे हैं?
4: हाँ जी, आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी होगी, है ना?
4: हाँ जी, हाँ जी, गर्मी 40-45 डिग्री है जी।
0: अच्छा, और आपने फिल्म बताई मुकद्दर का सिकंदर, तो कौन सा गीत आज के इस कार्यक्रम में इस फिल्म का सुनेंगे?
4: ओ साथी दे तेरे बिना भी क्या जीना।
0: किशोर कुमार की आवाज में या आशा भोसले की आवाज में?
4: आशा भोसले की आवाज में सुना दो।
0: ठीक है, आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद का यह प्यारा सा गीत। ठीक है जी, सुनिएगा।

0: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी, क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल रूप से खेती बाड़ी का काम है।
0: तो खेतों में क्या लगा रखा है आजकल आपने?
1: अभी फिलहाल खाली है, बरसात होगा तभी धान लगाएंगे।
0: अच्छा, धान की खेती। और इनका जो है फोन कट हो गया है, इनका संपर्क हमसे टूट गया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं वो जब भी हमें कॉल करें, सिग्नल में रहकर हमें कॉल करेंगे, तो हम तभी आपकी जो बात है वो कर सकते हैं आपसे फ़ोन पे। और अगर सिग्नल नहीं होगा तो इसी तरह से फ़ोन कटेगा, तो सिग्नल का ज़रूर ध्यान रखें और हमसे बात करें और सुनते रहें आकाशवाणी धर्मशाला से कार्यक्रम हेलो धर्मशाला।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हेलो धर्मशाला, लीजिए इन्होंने भी जो फोन है काट दिया। बहुत देर ट्राई किया इन्होंने, लेकिन शायद सिग्नल इनका जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कृपया सिग्नल का ज़रूर ध्यान रखें, तभी हमसे बात हो पाएगी, नहीं तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। सिग्नल में रहिए, हमसे बात कीजिए और सुनते रहिए कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। हमारा फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, हमारा फ़ोन नंबर है 01892-224391। हेलो हेलो, देखिए हमारे जो श्रोता हैं हमें फ़ोन तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हम अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं सिग्नल की वजह से, कि सिग्नल अगर होगा तभी हम आपसे बात कर सकते हैं, अगर सिग्नल नहीं होगा तो बिल्कुल आपसे बात जो है वो नहीं हो पाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि सिग्नल का ज़रूर ध्यान रखें। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हेलो धर्मशाला। अब जिन फिल्मों के गीत इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं, आपको वो फिल्में बता दें। फिल्में हैं अभिमान, बादशाह हो, चलते चलते, दाग, दिल है कि मानता नहीं, फर्ज, पद्मावत और तमाशा। इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं।
2: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
3: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
4: गांव का करके विकास।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM 103.4 MHz पर। श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो धर्मशाला यूं ही जारी रहेगा 9:30 पर भी। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
5: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आगाज। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, ऐसे आयोजनों से राज्य की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता को मिलता है संरक्षण। हिमाचल के दो वीर सपूत कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर व मेजर अंशुल बाल्टू शौर्य चक्र से सम्मानित। मंडी जिले के सरकाघाट में रेशम कीट पालन से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। और राज्य के 3 जिलों ऊना, बिलासपुर व सोलन जिले के कुछ इलाकों में आज व कल हीट वेव का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। समारोह के दौरान जेपी नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आगाज भव्य तरीके से हो गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस महोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ किया। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फ्लावर शो व खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: शिमला समर फेस्टिवल के महोत्सव में रिज मैदान, गेटी थिएटर, माल रोड और संजोली समेत पूरे शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बॉलीवुड पंजाबी कलाकारों के साथ हिमाचली नाट्य और लोक कलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माल रोड पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, स्टैचू मैन के करतब, फ्लावर शो, स्कूली बच्चों की डांस प्रस्तुतियां लोगों को लुभा रही है। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचली स्वाद फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। आज माल रोड पर माँ की ममता समाज की शक्ति थीम पर आधारित महानाट्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा लेंगी। फेस्टिवल के दौरान लोगों की सुविधा के लिए HRTC स्पेशल बसें व टैक्सी चला रहा है, ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: इस बीच राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ करने के बाद कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन में आवश्यक होते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को जहां ऐसे आयोजनों से अपनी संस्कृति जानने का मौका मिलता है, तो वहीं शहर में आए पर्यटक भी प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होते हैं।
2: अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो रंग है वो इस समर फेस्टिवल के माध्यम से दर्शाया जाता है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ कई राज्यों से आए हुए लोग भी उसका आनंद लेते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए और ये फेस्टिवल को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, ताकि हम इसी बहाने इकट्ठे भी होते हैं और सभ्यता को और संस्कृति को भी हम प्रमोट करते हैं।
0: सांसद अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों से कहा है कि वे केंद्र प्रायोजित योजनाओं व विकासात्मक परियोजनाओं में जिला हमीरपुर के लिए अधिक से अधिक बजट लाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करें। वे जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने अपने स्तर पर संस्थागत व्यवस्था के तहत आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले में संचालित किए नशा उपचार केंद्रों और टीबी मुक्त अभियान की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने वन संपदा को आग से बचाने व मॉनसून सीजन में अधिक से अधिक पौधरोपण करने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के दो वीर सपूतों कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के लिए इसे बेहद गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दोनों जांबाजों को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिले के जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत दारट बगला, जबकि मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिले की जुब्बल तहसील के घुंसा गांव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दोनों वीर सपूतों ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से यह साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना के कड़े अनुशासन और सर्वोच्च राष्ट्र सेवा का प्रतीक ये सम्मान न केवल पूरे देश को गौरवान्वित करता है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को देशभक्ति व देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTS सेवा और न्यूज ऑन AIR और ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा आश्रय गृहों में रहने वाले वयस्कों व असहाय बच्चों के लिए जिला स्तर पर विशेष आधार अपडेट केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि पात्र लाभार्थियों को आधार सेवाएं आसानी से मिल सकें। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आधार पंजीकरण व 5 व 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय पर करवाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्पेशल बायोमेट्रिक अपडेट अभियान 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरह निशुल्क चलाया जा रहा है। रेशम कीट पालन प्रदेश सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल के तहत रेशम कीट पालन कार्यक्रम अब ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र की महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: मंडी जिले के सरकाघाट क्षेत्र की महिलाएं इस योजना से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सिहारन गांव की मधु इस सफलता की एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने विभागीय जागरूकता शिविर से जानकारी लेकर सरकारी सहायता और मार्गदर्शन के साथ यह कार्य शुरू किया। मधु के अनुसार वे घर पर ही रेशम उत्पादन कर रही है और साल में 2 सीजन लगाकर वो 50,000 रूपए कमा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें रेयरिंग स्टैंड, ट्रे, नेट, रेशम कक्ष, शहतूत के पौधे और रेशम सीड जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही तकनीकी मार्गदर्शन भी लगातार दिया जा रहा है। इस योजना से न केवल आय के अवसर बढ़े हैं बल्कि ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना भी मजबूत हुई है। वर्तमान में क्षेत्र में लगभग 40 से 50 महिलाएं इस गतिविधि से जुड़ चुकी हैं। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: लाहौल स्पीति जिले में मिनी तिब्बत के नाम से मशहूर स्पीति घाटी के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धरोहर स्थलों में शामिल ढंकर बौद्ध मठ जरूरी मुरम्मत कार्यों व उचित रखरखाव के चलते आगामी 5 दिनों के लिए पर्यटकों सहित यात्रियों के लिए बंद रहेगा। मठ प्रशासन ने इस कार्य के चलते सभी से सहयोग व धैर्य बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि रखरखाव का कार्य पूरा होने के बाद मठ को पुनः श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है और ऊना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 11 व 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज व कल ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, HPTDC के बड़े पदाधिकारियों की सुविधाओं पर चली सुक्खू सरकार की कैंची। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पर्यटन निगम के पदाधिकारियों को नहीं मिलेगी विशेष सुविधाएं। अमर उजाला के शब्द है, निगम के होटलों में अब न 100 रुपए का कमरा, न खाने पर 50% छूट। शिमला में केवल ब्रिज, फ्लाईओवर, नई टनल शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, सीएम सुक्खू के 2,200 करोड़ के स्ट्राइड प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की तैयारी, ADB करेगा मदद। दैनिक भास्कर की एक खबर है, नई पंचायतों की पहली परीक्षा, आयोग की ग्रांट के लिए जून में पूरी करनी होंगी शर्तें। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल में 3 जिलों के लिए 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी समारोह का करेंगे शुभारंभ। शिमला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का आगाज, राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, ऐसे आयोजनों से राज्य की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता को मिलता है संरक्षण। हिमाचल के 2 वीर सपूत कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर व मेजर अंशुर बाल्टू शौर्य चक्र से सम्मानित। मंडी जिले के सरकाघाट में रेशम कीट पालन से महिलाएं बन रही है आत्मनिर्भर। और राज्य के 3 जिलों ऊना, बिलासपुर व सोलन जिले के कुछ इलाकों में आज व कल हीट वेव का अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हेलो धर्मशाला का शेष भाग। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा, और जिन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं वो फिल्में हैं अभिमान, बादशाह हो, चलते चलते,

0: अग, दिल है कि मानता नहीं, फर्ज, पद्मावत और तमाशा, इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। हेलो धर्मशाला जी, कौन बोल रही हैं?
1: मैम, मैं सानिया बात कर रही हूँ पालमपुर से।
0: सानिया क्या करती हैं आप?
1: मैम मैं स्टोरी करती हूँ।
0: अच्छा सानिया, सबसे पहले तो ये बताइए कौन सी फिल्म का गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनेंगी?
1: कौन कौन सी मूवीज बची है मैम?
0: अभिमान, बादशाह हो, चलते चलते, दाग, दिल है कि मानता नहीं, लीजिए, इन्होंने भी जल्द ही साथ छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, सानिया दोबारा हमें फ़ोन करिएगा, आपका फ़ोन हम ज़रूर उठाएंगे। और हमारा फ़ोन अगर आप करना चाहते हैं आकाशवाणी धर्मशाला के केंद्र पर, तो हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391। इस नंबर पर कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हेलो
2: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
2: इंद्रभान सिंह जी, पहले तो ये बताइए कौन सी फिल्म का गीत आप सुनेंगे?
1: हम बताइए मैडम, क्या क्या निकाले हैं, क्या क्या फिल्म? क्योंकि
2: अभिमान, बादशाह हो, चलते चलते, दाग, दिल है कि मानता नहीं, फर्ज, पद्मावत और तमाशा, इन फिल्मों की लीजिए। इन्होंने भी फिल्में ही सुनी और इनका फ़ोन भी कट गया। कोई बात नहीं, आप फ़ोन करते रहिए, कभी ना कभी हमसे बात ज़रूर हो जाएगी। और हमें फ़ोन करने के लिए आप डायल कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर 01892224391। श्रोता, और जिन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं वो फिल्में हैं अभिमान, बादशाह हो, चलते चलते, दाग, दिल है कि मानता नहीं, फर्ज, पद्मावत और तमाशा। इन फिल्मों के गीत जो हैं वो आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। तो हमें फ़ोन कीजिए, हमारा फ़ोन नंबर आप सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और जब भी आप फ़ोन करते हैं तो सिग्नल का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि सिग्नल में रहेंगे तभी हमसे बात हो पाएगी, और अगर सिग्नल में नहीं होंगे तो हम भी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोन नंबर एक बार फिर आपको बता दें, हमारा फ़ोन नंबर है 01892224391।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। श्रोताओं, अगर आप भी बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम का अंग तो हमें फ़ोन कर सकते हैं आप 01892-224391 पर। इस नंबर पर कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। और आप जब भी हमें फ़ोन करते हैं तो सिग्नल में रह के हमें फ़ोन कीजिए, क्योंकि आज हम जिन भी श्रोताओं से बात कर रहे हैं उनका सिग्नल जो है वो ठीक से नहीं है और हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अगर सिग्नल में होंगे तभी हम आपसे बात कर पाएंगे, तो सिग्नल का ज़रूर ध्यान रखें। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत हमारी पसंद का।

0: हेलो धर्मशाला। हेलो, आपकी आवाज़ हम, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? अच्छा, आपकी आवाज़ तो हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए फटाफट ये बताइए, कौन सा गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे?
1: सड़क फिल्म का जी।
0: सड़क फिल्म तो हमने नहीं ली है, अभिमान बादशाह हो, चलते चलते दाग, दिल है कि मानता नहीं, फर्ज, पद्मावत और तमाशा फिल्में हैं। दाग का कौन सा गीत? कोई भी
1: सुना दीजिए।
0: ठीक है, आप तक पहुंच रहा है ये प्यारा सा गीत, पर पहले ये बताइए आपने नाम क्या बताया था?
1: संजीव शर्मा जी।
0: क्या करते हैं संजीव जी?
1: दुकानदारी है छोटी मोटी।
0: अच्छा, और यहाँ के कार्यक्रम भी सुने जाते हैं है ना, जब दुकान में बैठे होते हैं तो?
1: सारे रेडियो लगा, घर में लगा हुआ, दुकान में लगा हुआ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और अब सुनेगा अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत फिल्म दाग से। ठीक है जी।

0: हेलो धर्मशाला।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रही हैं?
1: जगदीश चंद बोल रहे हैं। अभिमान फिल्म का गाना सुना दो।
0: अभिमान फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: अभिमान का कोई सा सुना दो, सभी अच्छे हैं।
0: ठीक है जगदीश जी, करते क्या हैं आप?
1: बस जी टायर हो चुके हैं और रेडियो सुनते रहते हैं सारा दिन।
0: चलिए अच्छी बात है, रेडियो सुनते रहते हैं, आपका टाइम पास होता रहता है ना?
1: हाँ जी।
0: चलिए अच्छी बात है। और अब आपको सुनवा रही हैं फिल्म अभिमान का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो धर्मशाला
1: बच्ची मेरी प्रातः काल जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, पहले तो बताइए कौन सा गीत आज किस कार्यक्रम में आपको सुनवाएं?
1: फिल्म का नाम है चलते चलते, पुराना पिक्चर होगा तो उसमें गाना है ना प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। गायक
0: हमारे पास नई पिक्चर है, इन्होंने फिल्म चलते चलते का गीत सुनना चाहा, लेकिन हमारे पास जो फिल्म है वो नई है। और कोई बात नहीं, इन्होंने फिल्म चलते चलते कहा है तो इनको सुनवा रहे हैं फिल्म चलते चलते का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो धर्मशाला, हेलो। लीजिए, इनका फ़ोन लगा लेकिन ये पता नहीं कहाँ फ़ोन को छोड़ के चले गए हैं। तो श्रोताओं, हमारा फ़ोन नंबर आप जानते ही हैं, 01-892-2243। और इस नंबर पर कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। और जो फिल्में अब हमारे पास हैं वो फिल्में हैं बादशाह हो, चलते चलते, दिल है कि मानता नहीं, फ़र्ज, पद्मावत और तमाशा। इन फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। हेलो,
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जयकरण सरासी जी। जल्दी जल्दी मैं फिल्म का नाम बताऊंगा, दिल है के मानता नहीं।
0: कौन सा गाना सुनेंगे?
1: प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है।
0: ठीक है जयकरण जी, आप सुन रहे हैं आज का ये कार्यक्रम, है ना?
1: जी जी जी मैम।
0: चलिए, अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये प्यारा संगीत।
1: कुछ पूछोगे नहीं, बातें को
0: बातें आज हम कैसे करें कि आपके फोन जो है वो जल्दी ही कट जा रहे हैं और हमसे बात
1: आज नहीं कटेगा, अब लग गया, फिल्म बता दी।
0: चलिए बताइए, और क्या चल रहा है वहाँ पर?
1: बहुत ही बढ़िया चल रहा है जी, मोल है। एक बरस के मौसम होते हैं चार, लोग गर्मी गर्मी कर रहे हैं, पर गर्मी भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है हमारी फसलों के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि अगर अभी गर्मी होगी तभी जो बारिश है वो होगी, और
1: आएगी।
0: बारिश होगी तभी हमारे खेत जो हैं हरे भरे दिखेंगे, है ना?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: चलिए, गर्मी भी जरूरी है और हर मौसम अपनी जगह एक अलग पहचान रखता है,
1: मतलब रखता है
0: जी। और जयकरण जी, आप सराह के वासी हैं, है ना? धर्मशाला के नज़दीक ही हैं तो।
1: हाँ जी, और मैं सिलाई का काम करता हूँ मैम।
0: हाँ, और वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं होती है जितनी हमारे दूसरे क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे ऊना की बात कर लें, कांगड़ा की, हमारे आगे नूरपुर साइड की, तो वहाँ पर ज्यादा गर्मी है थोड़ा।
1: तो जी ऐसे स्वर्ग की धरती में बसे हैं, यहाँ ना ज्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, मतलब बराबर का ही होता है।
0: बराबर का ही होता है हाँ। और आप अब सुनिएगा अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: थैंक यू मैम।
0: ठीक है जी।

मुझे देख। हेलो धर्मशाला, हेलो दीजिए। अब हमने इनका फ़ोन उठाया तो ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज फ़ोन बहुत मुश्किल से लग रहे हैं और ये फ़ोन जो है वो अपना छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो कोई बात नहीं, हमें फ़ोन करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर आपको पता ही है, वो बता दें, 01892224391।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी दोस्त अनुराधा को दीजिए इजाजत। और कार्यक्रम संपन्न करने से पहले आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विपिन कुमार ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और अब दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो धर्मशाला,
2: हेलो धर्मशाला।
0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो धर्मशाला। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम गीतों का कारवा का।

कार्यक्रम का पहला गीत हमारे श्रोताओं ने सुना, एक लड़का एक लड़की। इस फिल्म से गायक कलाकार कुमार सानू साधना सरगम, गीत को लिखा समीर ने और संगीतकार आनंद मिलंद। गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त ज्योति। कहते हैं श्रोताओं, गीत और संगीत वो धागा है जो दिलों को जोड़ते हैं। तो अगला गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर हम पहुंचा रहे हैं शान और श्रेया घोषाल के मिले जुले स्वर में। एक विवाह ऐसा भी, इस फिल्म से ये गीत हमने लिया।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौंडवाल की मखमली आवाज में फिल्म सूर्या से ये गीत, संतोष आनंद के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गीतों का कारवां। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।
1: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314

0: सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में कुदरत का कानून। इस फिल्म से ये खूबसूरत गीत सलाहुद्दीन परवेज के बोल हैं, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

गीतों का कारवां। इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे हैं पैडमैन फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज है, कौसर मुनीर के बोल हैं, संगीत अमित त्रिवेदी का। इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर कार्यक्रम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: पहाड़ों के सुर इस कार्यक्रम में अब अगला लोकगीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, निम्मो चौधरी की आवाज में गाया हुआ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अंकुश संदल की आवाज में गाया हुआ ये अगला लोकगीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। समारोह के दौरान जेपी नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का आगाज भव्य तरीके से हो गया है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इस महोत्सव का कल देर सांय शुभारंभ किया। 12 जून तक चलने वाले महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, फ्लावर शो व खेलकूद प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: शिमला समर फेस्टिवल के महोत्सव में रिज मैदान, गेटी थिएटर, माल रोड और संजोली समेत पूरे शहर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बॉलीवुड पंजाबी कलाकारों के साथ हिमाचली नाट्य और लोक कलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माल रोड पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, स्टैचू मैन के करतब, फ्लावर शो, स्कूली बच्चों की डांस प्रस्तुतियां लोगों को लुभा रही है। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचली स्वाद फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। आज माल रोड पर माँ की ममता, समाज की शक्ति थीम पर आधारित महानाट्य का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हिस्सा लेंगी। फेस्टिवल के दौरान लोगों की सुविधा के लिए HRTC स्पेशल बसें व टैक्सी चला रहा है, ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।

0: बीच राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव का कल दरसाए शुभारंभ करने के बाद कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध संस्कृति सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन में आवश्यक होते हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को जहां ऐसे आयोजनों से अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है तो वहीं शहर में आए पर्यटक भी प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू होते हैं।
1: अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो रंग है वो इस समर फेस्टिवल के माध्यम से दर्शाया जाता है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ कई राज्यों से आए हुए लोग भी उसका आनंद लेते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए और ये फेस्टिवल को बचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए ताकि हम इसी बहाने इकट्ठे भी होते हैं और सभ्यता को और संस्कृति को भी हम प्रमोट करते हैं।
0: प्रदेश के 2 वीर सपूतों कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के लिए इसे बेहद गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने दोनों जाबाजों को इस सम्मान के लिए बधाई दी है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिले के जोगिंदरनगर की ग्राम पंचायत दारट बगला, जबकि मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिले की जुब्बल तहसील के घुंसा गांव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दोनों वीर सपूतों ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से यह साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना के कड़े अनुशासन और सर्वोच्च राष्ट्र सेवा का प्रतीक ये सम्मान न केवल पूरे देश को गौरवान्वित करता है बल्कि प्रदेश के युवाओं को देशभक्ति व देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। लाहौल स्पीति के कोकसर की ओर से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग पास जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अब ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी होगा। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने जारी आदेशों में कहा है कि बिना वैध परमिट के किसी भी वाहन को पुलिस बैरियर कोकसर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। SDM कुनिका एकर्स ने कहा कि ये निर्णय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार लिया गया है। इन निर्देशों के तहत रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की संख्या निर्धारित की गई है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है और ऊना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पास पहुंच गया है। राजधानी शिमला में भी दिन के समय लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 11 व 12 जून को कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए ओलावृष्टि, वर्षा और आंधी तूफान का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आज व कल ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं करनैल राणा की आवाज में गाए इस लोक गीत के साथ।

0: this June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: धोबी की धोबन।
3: आइए अब सुनते हैं वर्षा कटोच और सखियों को इस अगले लोकगीत में।
2: घाट पर पानी लाने न जाए, क्योंकि वहाँ पर राजा शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। धोबी के लाख मना करने पर भी धोबन नहीं मानती और घाट पर पानी लेने चली जाती।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
3: गूंज पहाड़ों की ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं प्रदीप परदेसी की आवाज में गाया हुआ ये अगला लोकगीत।

गूंज पहाड़ों की इस कार्यक्रम में ये आखिरी लोकगीत आप सुन रहे हैं दीपक कुमार की आवाज में। इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को इजाजत।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश

0: अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
1: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
0: आगे आप लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है।
1: जी,
0: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है,
1: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टिक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
1: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे।
0: जी,
1: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
0: जी हाँ श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
1: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
1: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
1: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
1: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
1: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
1: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
1: दूसरा शब्द है केई।
0: जी,
1: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
1: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
1: जी, एक और खास बात यह है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
1: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
1: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
1: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
1: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय

0: संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
1: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
2: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
3: आ गए भैया।
2: हाँ।
3: लो ये पीढ़ी सर का लो, कुछ देर बैठ जाओ।
2: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते। और हाँ।
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तो

0: अरे राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा चलता हूँ।
0: अच्छा
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचा है उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
5: हाँ?
4: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी

0: तो आखिर बड़ी हवेली बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, पर गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
1: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
0: अच्छा अच्छा माँ जी।
1: अरे हरगोबिंद क्या सोच रहे हो, कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया, वो किस लिए आया था, वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसक रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
0: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
1: अरे
0: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पाए लागू।
1: जीते रहो बेटा,
0: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
0: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
0: अच्छा राम राम
3: राम राम
0: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, पी लो, पी लो, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ।

0: काश अब जी कैसा है।
1: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
0: कहे?
1: मुझे माफ कर दो।
0: पर
1: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
0: हरगोविंद भाई,
1: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
0: हरगोविंद भाई, तुम
1: मैं अब हमने ठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी ना?
0: नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
1: बड़ी माँ,
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
3: जॉइन टुगेदर इन द जनजातीय गरिमा उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ प्राइड, एस्पिरेशन एंड द जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, इंस्पायर्ड बाय द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ट्राइबल कम्युनिटीज मूव फॉरवर्ड विथ होप, डिग्निटी एंड डिटर्मिनेशन। सेलिब्रेटिंग जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
2: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
4: जी,
2: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
5: Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals, and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants, and trees, as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry, shifting

फौजी भाइयों जय हिंद। हाजिर है फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म खुद्दार के इस गीत के साथ, जिसे गाए हैं कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनु मलिक के संगीत निर्देशन में फिल्म टक्कर का ये गीत। गायक कलाकार हैं अभिजीत और अलका याग्निक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

0: सभी सखी सहेलियों को रेडियो सखी ज्योति का नमस्कार। कार्यक्रम में आपका तह दिल से स्वागत करते हैं। आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनो सखी में आप सुन सकेंगी अपनी फरमाइश का गीत 01892224391। जी हाँ, ये नंबर है 01892224391। और अब नोट करें आज की हमारी चुनिंदा फिल्मों के नाम, जिनसे आप सुन पाएंगी अपनी पसंद का कोई सा भी गीत। फिल्में हैं आज हमारे पास मन, सिर्फ तुम, हेलो ब्रदर, पत्थर के सनम, मेरे जीवन साथी, दिल, चांदनी और मिस्टर इंडिया। और ये कार्यक्रम सिर्फ हमारी महिला साथियों के लिए है, तो वही इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकेंगी। और शुरू करते हैं कार्यक्रम का ये सिलसिला, लेते हैं कार्यक्रम की पहली फोन कॉल।
1: हेलो,
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
1: गुड आफ्टरनून ज्योति मैम।
0: जी, वेरी गुड आफ्टरनून। किन से बात हो रही है?
1: मैम सानिया से बात हो रही है, पिछले मंगलवार को भी हमने बात की थी।
0: जी जी सानिया जी, तो बताएं फिर आज कौन सी फरमाइश है आपकी?
1: मैम कौन कौन सी मूवीज है? मैम
0: फिल्में आज हमारे पास हैं मन, सिर्फ तुम, हेलो ब्रदर, पत्थर के सनम, मेरे जीवन साथी, दिल, चांदनी और मिस्टर इंडिया।
1: हेलो ब्रदर।
0: हेलो ब्रदर जी, इस फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगी?
1: कोई भी मैम।
0: कोई सा भी, ठीक है सानिया। और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।

0: कार्यक्रम है सुनो सखी।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, नाम बताएं।
1: जी सविता बोल रही मैम, रानीताल से।
0: जी सविता जी, रानीताल से बात कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम जी। और
0: जी बताएं, सबसे पहले अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दें।
1: जी सिर्फ तुम फिल्म मैम गाना सुनवा दीजिए, पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जी तो गाकर सुनाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: बस ऐसे मैम, पहली पहली बार मोहब्बत की है।
0: जी जी
1: बस ऐसे ही मैम।
0: बहुत अच्छा गा रही हैं, थोड़ी सी और कोशिश कीजिए।
1: बस इतना याद आ रहा है मूवी।
0: जी जी, और क्या कुछ कर रही हैं इन दिनों?
1: जी बस ऐसे हैं, घर पर बैठे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है मैम।
0: जी जी, गर्मियाँ सचमुच बहुत बढ़ गई हैं, तो किस तरह अपना ध्यान रख रही हैं?
1: जी बस ऐसे घर पर रहते हैं, पानी वगैरह ज्यादा लेना पड़ता है ना, आजकल गर्मियाँ हुई हैं तो।
0: जी बिल्कुल, तरल पदार्थ जो भी हैं उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा उनका सेवन करें और स्वस्थ रहें और जुड़े रहें हमारे साथ।
1: हाँ जी, थैंक यू मैम जी।
0: जी, और कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ी, आपका शुक्रिया। पहुँचा रहे हैं आपके गाँव आपका फरमाइशी गीत।
1: थैंक यू जी।

0: हेलो, कार्यक्रम में आपका जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी
1: मैं साक्षी बोल रही नूरपुर से। जी
0: जी बिल्कुल, साक्षी जी नूरपुर से बात कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैम जी। आप कैसे हो? ठीक हो?
0: जी अच्छे हैं, आपकी तरह हमारे आप जैसे जो हैं वो श्रोता हैं तो बिल्कुल अच्छे हैं। और आप बताइए क्या हाल चाल हैं आपके।
1: ठीक है मैडम जी। गर्मी बहुत है, पर धूप बहुत पड़ती है।
0: जी तो अनावश्यक रूप से धूप में बिल्कुल नहीं जाना है।
1: हाँ जी। नहीं जाते, हम कमरे में होते हैं। कुछ
0: जी बिल्कुल। और क्या कुछ करती हैं
1: नहीं, क्या करना, घर में होते हैं। सॉन्ग
0: और क्या शौक रखती हैं
1: को गुनगुनाने का। हाँ जी।
0: गुनगुनाने का? तो पहले अपनी फरमाइश बताइए।
1: चांदनी मूवी बताई थी आपने?
0: जी बिल्कुल बताई है।
1: हाँ जी। उसका मेरे को ना सॉन्ग सुनाना, कोई
0: कौन सा?
1: भी अच्छा सा।
0: चलिए आप गुनगुनाइए और हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का कोई सा भी गीत।
1: आपको मैं भजन सुना दूं?
0: जी बिल्कुल सुनाइए।

0: कार्यक्रम सुनो सखी में आपका स्वागत करते हैं।
1: जी मैम।
0: जी नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, उज्जैन से।
0: उज्जैन से?
1: जी मैम।
0: तो इतनी दूर से आपने हमें कॉल किया है, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर।
1: जी मैम, मेरे हस्बैंड सुनते हैं।
0: जी जी। और आप कब से जुड़ी हैं हमारे साथ?
1: मैम आज मंगलवार है, इनके अवकाश रहता है, घर पे रहते हैं ये।
0: जी जी।
1: इसलिए फिर मैंने बोला आज मैं बात करूंगी मैम
0: आपसे। जी तो कौन सी फरमाइश है आज आपकी?
1: मन मूवी की है।
0: जी जी।
1: और मेरा मन जो तुझे चाहे वो सॉन्ग है ना।
0: जी जी,
1: वो सुनना है।
0: और अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ। घर पे ही पार्लर चलाती हूँ।
0: जी।
1: और बस बच्चे हैं दो मेरे।
0: जी जी। और क्या कुछ करना अच्छा लगता है?
1: मैम मुझे तो घूमना, घूमने का बहुत शौक है।
0: जी तो ये तो बहुत अच्छा शौक है, कहाँ कहाँ घूमी है?
1: मैम मैं अमरनाथ, इधर जम्मू कश्मीर वो पूरा घूम चुकी हूँ, इधर मथुरा वृंदावन
0: जी
1: पूरा एरिया देखा हुआ है, राजस्थान पूरा देखा हुआ है।
0: और अभी जो मौसम है कैसा है आपके वहाँ?
1: अभी तो गर्मी है लेकिन ऐसा है कि सुबह शाम ठंडी हवाएं चल

0: है क्योंकि 2-3 दिन पहले पानी आ चुका है यहाँ पर उज्जैन में,
1: जी,
0: बारिश हो गई है तो थोड़ा मौसम तो हुआ है, ठंडाई हुई है। दिन में तो गर्मी रहती है पर सुबह शाम थोड़ा अच्छा मौसम रहता है।
1: जी। और रेडियो का साथ आपने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा
0: बिल्कुल, मैं
1: जानकर।
0: मेरे किचन में लगा हुआ है
1: जी
0: और मैं काम करते करते रेडियो सुनती हूँ।
1: जी बहुत अच्छा लगा रेखा जी, आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया और अब आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते जी,
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं। जो पूछ रहे हैं हाल चाल, वे अपना नाम नहीं बताएंगे।
1: मेरा नाम सादिया है
0: जी। और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं गुरदासपुर पंजाब से
0: जी। और कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं पहले ये बता दें।
1: मैम मैं मिस्टर इंडिया के जो बच्चों वाला गाना है ना,
0: जी जी,
1: बॉल हमारी वापस दे दो, वो वाला गाना सुनूंगी।
0: ठीक है, और क्या करती हैं?
1: मैं मैम 9th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: तो कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी?
1: बहुत अच्छी चल रही है, अभी छुट्टियाँ पड़ी हैं तो मैं आई हुई हूँ हिमाचल।
0: हिमाचल घूमने आई हैं?
1: जी जी, अपने घर।
0: अच्छा, कहाँ पे है यहाँ हिमाचल में आपका घर?
1: कांगड़ा।
0: कांगड़ा में?

0: जी
1: जी ठीक है, आपकी फरमाइश हम आप तक पहुंचाएंगे। कुछ विज्ञापन है, पहले वह सुन लेते हैं।
0: ओके, थैंक
1: जी शुक्रिया, आपने कार्यक्रम में हमें कॉल किया।
0: यू मैम।
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
3: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
3: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
4: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Come on boys, let's go practice.
2: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है।
1: ये तो बैंक को कंप्लेन करना।
2: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं।
3: तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
4: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कार्यक्रम की इसी अंतिम फरमाइश के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है।
1: शोर नहीं बाबा, शोर शोर शोर।

जिन सखियों की कॉल आज हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं वह अगले मंगलवार हमसे फिर जुड़ें, और जिन सखियों की कॉल आज के कार्यक्रम में हमने शामिल की है वह 2 हफ्ते बाद हमसे जुड़ें।

चलते चलते आपको बताते चले कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विपिन कुमार का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। बेकार का ड्रामा है। प्यारी सखियों नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of Nation First, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity today on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. India also slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Ambassador P. Harish, said that Islamabad was merely attempting to deflect blame onto New Delhi.
3: Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. India stands steadfast in rejecting terrorism in all its forms and manifestations.
2: New Delhi condemned Islamabad's cross-border military operations, holding Pakistan accountable for significant civilian casualties resulting from its aerial assaults in Afghanistan. The Enforcement Directorate is conducting search operations at six premises across Punjab, Uttar Pradesh and Delhi NCR in connection with a money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. The case is linked to Aam Aadmi Party leader and Punjab Minister Sanjeev Arora. According to the probe agency, it uncovered a large-scale money laundering operation

करता है, लेकिन माँ होती है जो हमारे गर्भ में आने के बाद ही वह हमें प्रेम करने लग जाती है और उसी प्रेम के लिए हम उसे याद करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सभी सांस्कारिक प्रश्नों पर गीतों पर चर्चा का समन्वय रहेगा। जन्म लेने से पहले माँ का साथ रहता है, किंतु जब वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत अकेलापन महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वो माँ है, अपने बच्चों को के बारे में कितना कुछ सोचती है, कितना करती है। उस आंगन में नन्ही सी चिड़िया की तरह फुदकते हम कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहो, लाख पैसा कमा लो, पर अपना घर अपनी माँ हमेशा दिल में रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने भी। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, पर मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ। ये बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा गीत है। बस बता दीजिए, माँ के लिए इतना प्यारा लिखने वाले गीतकार कौन है? इस गीत को लिखने वाले गीतकार कौन है, ये नाम बस बता दीजिए। और अगर आपके मन में कोई पहेली आ रही है तो वो हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा।

अपनी माँ के साथ जाते हुए बच्चों को एक सुंदर सी घोड़े की टाप के संगीत के साथ रोशन ने संगीतबद्ध किया इस गीत को। मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज़ के साथ इसे गाया। दादी माँ फिल्म से लिया गया यह गीत है। और हमने आपसे पूछा था कि इतना सुंदर गीत रचा किसने, यह ज़रूर बताएं उस गीतकार का नाम। तो सच में इतने सुंदर गीत को रचने के लिए मजरूह सुल्तानपुरी को धन्यवाद बनता है। माँ के प्रति समर्पित हमारी भावनाओं को हम तक, हमारा वहाँ तक पहुँचाना। अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है कि इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी, हमने वो रास्ता देखा है। अरे वाह, इसके साथ ही हमने आपसे जो प्रश्न पूछे उसमें हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि फिल्म दादी माँ का गीत है और मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। बिल्कुल सही, हमारे श्रोता ने लिखा है, कहते हैं तेरी शान से ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। बिल्कुल, माँ का, माँ के बिना तो ईश्वर भी स्वयं को ईश्वर कहलाने के लिए इस धरती पर नहीं आ सकते, उन्हें भी उनकी आवश्यकता होती है। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि हाथ दुआ वाले सदा रहते हैं सदा सर पर, तू है तो अंधेरे पथ में भी सूरज की ज़रूरत क्या होगी। बहुत खूबसूरत गीत हम सब ने अभी सुना और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हमारे बीच में लिखी हैं और कुछ पहेलियाँ लिखी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, उन्होंने बताया 3 तीतर। चलो बढ़िया बात है। पर हमारे एक श्रोता ने एक और प्रश्न छोड़ दिया है, अब उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता, शायद आपको पता हो, और अगर सही होगा तो हमारी ये श्रोता आपके उस पर जाकर अवश्य बता देंगी कि आपने सही उत्तर दिया या नहीं इस पहेली का। काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे में छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अब ये प्रश्न आपके बीच में हमने हमारी श्रोता का रख दिया है कि काले रंग का प्राणी हूँ, उजाले के साथ में रहता हूँ, रात के अंधेरे छुप जाता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। चलिए इसका उत्तर आप ढूंढिए। इसके साथ ही हम चलते हैं अगली पहेली की तरफ। फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, आज की इबारत में हमने लिखा है कि फूलों की गलियों का मैं मुसाफिर अनजाना, गुनगुन मेरा गीत ना कोई शब्द पुराना, शाम वसन ओढ़े फिरूं मधु की खोज में, बताओ कौन हूं मैं जिसका घर है हर बाग में। हम जानते हैं आप सही उत्तर दे चुके हैं और इसका

उत्तर आपने दिया है बहुत अच्छे से, भंवरा। और जब भंवरे की बात चल रही है तो हमने हमारी श्रोता की वो पंक्तियाँ भी आपको सौंपी हैं और ये गीत भी हम आपको सौंप रहे हैं। बस इतना बता दीजिए इस गीत के संगीतकार कौन हैं, और अगर आपकी कोई पहेली है जो बड़ी सुंदर सी है तो हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिएगा।

देखिए, हम सुन रहे थे ये बढ़िया सा गीत, और इस बढ़िया से गीत में हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा इसके बारे में, और आपने बड़े अच्छे से उत्तर हमें दिए हैं। हमारे श्रोताओं के उत्तर सुनते सुनते बड़ा आनंद आ रहा है, पढ़ते पढ़ते बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारी पहेलियाँ हमारे बीच में आ रही हैं और उन पहेलियों के साथ बड़े प्यारे जज्बात भी आ रहे हैं। और हम ये जो गीत सुन रहे थे वह आज और कल, आज और कल फिल्म से सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज़।

0: आज में हसरत जयपुरी के पोल और जो प्रश्न है वो शंकर जयकिशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। इसके साथ ही हमने आपसे पूछा था तो हम आपका उत्तर काले रंग की परछाई है ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए देखते हैं उत्तर सही है या नहीं, आप अवश्य देख लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से लिखा है कि फिल्म कलाज और कल का सदाबहार गीत भंवरे की गुंजन हसरत जयपुरी के द्वारा रचित किशोर कुमार द्वारा गाया गया एक मधुर रोमांटिक गीत है। बिल्कुल सही बात है, आपकी प्लेलिस्ट से भी गाने बच जाते हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है, उसका भी आपको बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता ने लिखा है, दो लड़के लड़ते जाएं उनका खेल बढ़ते जाए। इसका उत्तर उन्होंने बताया, स्वेटर बुनने वाली दो सलाइयाँ। हाँ, माँ जब स्वेटर बुनती थी तो कुछ ऐसे ही बुनती थी। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से उसका उत्तर भी दिया है, हमने जो आपसे पूछा था। हमारे एक और श्रोता ने बोला है कि एक गुफा में 32 चोर हमेशा करते आपस में शोर, बताइए इस पहेली का उत्तर। तो इस पहेली को उत्तर सहित हमारे एक और श्रोता पहले ही बता चुके हैं, इसका 32 चोर होते हैं हमारे दांत। इसका उत्तर हमको पता है। इसके साथ ही हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर सहित बता दें, क्योंकि हम तो बड़े अनभिज्ञ व्यक्तित्व हैं, तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, वो कौन है जिसकी परछाई नहीं होती रास्ता। अच्छी बात है, ये भी बढ़िया बात आपने कही है। इसके साथ जब हम आगे बढ़ें तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पहेली पूछना और समझना एक दिमागी विकल्प है, आज के समय में हर इंसान पहेलियों में उलझा हुआ है। बहुत बढ़िया, हमारी एक श्रोता की एक संवेदना हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए जो पिछले गीत के लिए उन्होंने की थी कि हजारों गम हो मेरी जिंदगी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां माँ साथ हो वहां कोई भी दुख ठहर नहीं सकता, लिखूं जो माँ पे तो स्याही कम पड़ जाए, वो एक हस्ती है जिसके आगे सारा जहान भी झुक जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे श्रोता ने एक बढ़िया सी पहेली लिखी है कि वो कौन है जो पूरे गाँव में घूमती है पर मंदिर नहीं जाती। उन्होंने लिखा, चरण पादुका। कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, कौन होता है? बताइएगा जरूर। इस पहेली का अर्थ आपको बताना है, उत्तर बताना है। बचपन की पहेली है जो हम सुनते आए हैं, कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इस पहेली का उत्तर आप बताइए। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, ये गीत के साथ इसकी पहेली भी हम आपको सुनवा देते हैं। तो ये पहेली है कि नन्नी सी मैं उड़ती जाऊं, चीची करके गीत सुनाऊं, पेड़ों पर मैं घर बनाती, पूछो कौन कहलाती। और इसका उत्तर है चिड़िया। जब चिड़िया पर मैं आपको ये सुंदर सा गीत सुनवा रही हूँ, और इसके पहले मैंने भंवरे पर आपको गीत सुनवाया, हम मान लें तो मधुमक्खियाँ और जो भी फूलों का रस चखती हैं उन सबको अगर इसमें हम जोड़ लें तो ये सब जीव खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं विचार कीजिएगा। और गर्मियों के दिन है, चिड़ियों के लिए दाना पानी तो ज़रूर डालिएगा। गायक का नाम बताइएगा।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया,

मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। साथ हमारे चले बर...

0: हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौआ भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौआ भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, ये गीत तो बड़ा सुंदर सा है जो हम सुन रहे थे। ये फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, दत्ताराम का संगीत है, और हमने पूछा था कि आवाज़ किस गायक की है, तो आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे हैं, इस गीत के साथ एक शिक्षा तो मिलती है कि ये छोटे छोटे जीव हैं और हम इतने बड़े बड़े मनुष्य, छोटे जीवों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर विचार करते हैं और उन जीवों को बचाते हैं, क्योंकि अगर ये जीव नहीं होंगे तो ये बड़े बड़े मनुष्य भी समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ये प्रकृति, ये विज्ञान कहता है। तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारी पहेलियाँ भेजी हैं। जैसे हमारे एक श्रोता ने पंजाबी कहावत पहेली भेजी है कि गुड़िया विच तकतेनी पढ़ने सड़ गए थे कुंवारे अखते नी, शादी की इच्छा रखने वाले ऐसा कुछ कहते हैं। और एक बहुत अच्छा उन्होंने पहेली भेजी है, बूझ मेरा बुझक का सुंदर लाल मेरा सक का सुंदर लाल मेरा भाई मैं सदा कुछड़ पाई। इसका उत्तर उन्होंने घड़ा या मटका दिया है। हर भाषा में अपने अपने अलग अलग बात आ जाती है ना। इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लिखा नहीं जाता पर पढ़ा जाता है, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कहा जाता है, आंखें इसे देखकर नम हो जाती हैं, बताओ वो क्या है जो दिल को छू जाता है। तो उन्होंने इसके दो उत्तर दिए हैं, पुरानी यादें या एक भावुक पत्र। बहुत बढ़िया, बड़ी मज़ेदार सी बातें भी आई हैं, ना खून का रिश्ता है ना घर का नाम फिर भी रहता हरदम साथ, और इसका उत्तर उन्होंने दिया है सोशल मीडिया। जी, इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं रही है, इसके साथ ही जीवन चलता नहीं है, जीवन रुक जाता है ऐसा हम मान के चलते हैं, पर चल सकता है। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, ये जो जेब में रहता है काम में आता है, बाजार जाके शॉपिंग भी करवाता है, आजकल वो स्मार्टफोन भी है, फ़ोन भी हो सकता है, भाई इसके बिना कहाँ रहा जाता है। जी, आपकी इस बात को भी हम मान लेते हैं। एक पहेली है जो हम आपको सौंप रहे हैं, और हमने इसके पहले आपको सौंपी थी कि कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, तो आपने सही उत्तर दिया नारियल। अब एक पहेली सौंप कर मैं बस आपको एक संदेश सुनवाने वाली हूँ। वो पहेली है, हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी मोतियों से भरी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। इसका एक हिंट दे देती हूँ, अरे बड़े शौक से इसे कोयले पर सेक कर उसमें नींबू और दही घी लगा कर नमक लगा कर हम बड़े चाव से खाते हैं, बताइएगा। तब तक सुनिए ये संदेश।
2: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
2: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
2: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
3: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
2: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सुरीला सफर, और सुरीला सफर कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं बहुत सारी पहेलियां। और अगली पहेली आपको सौंपने से पहले, पिछली पहेली जो हमने यूं ही पूछी थी उस पहेली का, हरी थी मन भरी थी, इस पहेली का जो उत्तर हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर

आपने दिया है भुट्टा, बिल्कुल सही बताया आपने। और इसके साथ ही हम कई सारे और प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न दिया है, मुझे पहली बस का उत्तर पता नहीं होता है तो मैं पहली बताती नहीं हूँ, मैं भी थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ। जी चलिए, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जहाँ जितने ज़्यादा पेड़ पौधे फूल होते हैं वहाँ चिड़िया पंछी भंवरे तितलियाँ दिखते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना सारी समस्याओं, बहुत सारी समस्याओं का हल है। आपने बहुत अच्छा हल बताया है और हम सबको ये हल मानना चाहिए। और अभी मौसम भी आ रहा है, जैसे ही बरसात का मौसम आता है, ऐसा कहा जाता है कि बरसात के मौसम के कुछ 10-15 दिन पहले गड्ढा खोद देना चाहिए ताकि ज़मीन जो है वो सूख जाए, एक कीट रहित हो जाए, और उसके बाद जब वह गड्ढा सूख जाता है 10-15 दिन में तो फिर उसमें पेड़ लगा देना चाहिए और पानी डाल देना चाहिए, और धीरे धीरे बारिश आएगी, बरसात स्वयं उसको पानी देती रहेगी और 4 महीने में वो हरा भरा हो जाएगा। तो अभी ये काम कर सकते हैं, मौसम आ गया है, गड्ढा खोदने की शुरुआत कर दीजिए। हमारे श्रोता ने लिखा है, हवा में उड़कर आती हूँ, बिना छुए दिल को छू जाती हूँ, मेरी हर सुर में कहानी है, विविध भारती की मैं रानी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। और उन्होंने उत्तर दिया है, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का सुरीला सफ़र। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में हम सब छुट्टियों में दादी के घर जाते थे तो रात को सब अपने बिस्तर पर लेटे लेटे पहेलियाँ बुझा करते थे, और हमारे बड़े भी हिस्सा लेते थे, और उनमें से एक पहेली, पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ। हाँ, इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया, पानी में रहता है मगर। पंछी उड़ता आकाश में मगर रहता कहाँ, तो मगर रहता है पानी में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खामोशी और मौन दोनों ही, एक श्रोता ने पूछा कि अच्छा आपने इसका उत्तर दे दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बोलते ही क्या टूट जाता है, तो उन्होंने कहा खामोशी और मौन टूट जाता है, बिल्कुल सही। चलिए अब हम चल रहे हैं कि अब बड़ी खूबसूरती के साथ में अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगली जो इबारत में से जो कवि पहेली है वो हम आपको सौंप रहे हैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू अब सपनों का स्वर, बताओ कौन हूँ मैं। ईंटों पत्थरों का तन मेरा, पर यादों से सजता मन मेरा, हंसी आंसू सपनों का स्वर, बताओ कौन हूँ मैं। और इसका उत्तर है घर, और सुनते हैं ये घर का गीत, बस बता दीजिए कौन सी फिल्म का गाना है। और इसके साथ ही आपके जो पहेलियों के किस्से हैं, या किसी ने आपसे कोई पहेली पूछी है, या आपके परिवार में सबसे बढ़िया पहेलीकार था कौन जो बड़ा सताता था, ज़रूर बताइएगा।

हम सुन रहे थे ये गीत जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाज़ में, जावेद के बोल और जावेद अख्तर के बोल और कुलदीप सिंह के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि ये गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपने यहाँ पर दिया है। और इसके साथ ही अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ। और अगले गीत की तरफ बढ़ने से पहले, जो आपने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं, सुझाई हैं, संदेश भेजे हैं, वह तो हमें आपको सुनवाने ही हैं। तो हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। दीप्ति नवल, फारूक शेख, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, फिल्म साथ साथ, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं, घर वो जगह है जहाँ आकर हमें सबसे ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है, सुरक्षित महसूस करते हैं और घर चाहे बड़ा हो या छोटा हमें आश्रय देता है। हमारे श्रोता लिखते हैं, आज भी लोग रिश्ता करने जाते हैं तो घर देखते हैं, कैसी बड़ी बिल्डिंग हवेली, वर नहीं देखते पर वर के खूबसूरत बलवान कितना कमाता है, विचार क्या है ये देखना चाहिए। बिल्कुल सही संदेश आपने दिया। और हमारे श्रोता ने, हमने भुट्टे के बारे में पूछा था, उसे छल्ली भी कहते हैं, मक्की भी कहते हैं। अरे वाह, इतने सारे नाम हैं भुट्टे के, हमें भी पता पड़ गए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से चिड़िया या गौरैया को कम देखा जा रहा है। हमारे घर में चिड़िया का एक जोड़ा जहां हम दाना डालते हैं आता है, पिछले कुछ महीनों से दो जोड़े आने लगे हैं। उनके लिए मिट्टी का घर टाका है छज्जे पर, और आज ही एक चिड़िया का जोड़ा उसका मुआयना कर रहा था। आशा है कि घर में घोंसला बनाए और उनकी संख्या बढ़ जाए, फिर से उनकी चहचहाट से मेरी आँख खुले और मेरा दिन खुशनुमा हो जाए। कितनी बढ़िया बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि बिहार में जब लड़की की शादी होती है तो मायके में ही लड़का लड़की कोहबर में बैठने के लिए लाया जाता है, तब घर की सालियां दरवाजे से को घेरती हैं और दूल्हे राजा से गाने की कुछ लाइनें या कुछ पहेलियां पूछती हैं। पहले तो दूल्हे राजा गड़बड़ाते हैं, गाने की दो लाइन गा देते हैं, फिर उन्हें शगुन भी देना पड़ता है। ये सब प्रेम की बातें हैं ना। हमारी श्रोता लिखते हैं, बचपन में रीत के बहुत से घर बनाते थे, जब दो मंजिला घर बन जाता था तो बहुत खुश हो जाते थे, और वो दो मंजिला घर भी हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं होता था, और टूट भी जाता था तो हम फिर से बनाते थे, टूटते नहीं थे, है ना। अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जितना पास आए उतना कम दिखाई दे, और इसका उत्तर उन्होंने बताया, अंधेरा। आहा, क्या बात है। एक बचपन वाली पहेली भी हमारे पास में आई है, एक खड़ी एक पड़ी एक चमाचम नाच रही, बताओ कौन, और उसका उत्तर है रोटी, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। ये हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिए हैं। और इसके साथ ही हम चलते हैं हमारी अगली पहेली की तरफ। और वो जो पहेली है बड़ी सुंदर सी है, और इन पहेलियों के

स्मृति दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं बचपन या हम अपने वो दिन जी रहे हैं जो हमने आज की तकनीकी युग में कहीं छोड़ दिए हैं। तो चलिए हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं और हमने हमारी जो इबारत है उस इबारत में अगली पहेली लिखी है, जेब में रहता काम ना आता, जेब में रहता काम में आता, बाजार जाकर चीज़ दिलाता, सबको मेरी होती चाह है, बताओ मेरा नाम क्या है। और इसका उत्तर है पैसा या रुपया या धन। जी बिल्कुल, सबको चाहिए होता है, इसके अलावा इसके बिना कुछ काम होता नहीं है, लेकिन जब यही पैसा लालच बन जाता है तो इस लालच के कारण बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो पैसा जो है वह एक सोच और समझ के साथ आना चाहिए और सोच और समझ के साथ संभालना भी चाहिए, है ना। चलिए मैं आपको अगला गीत सौंप रही हूँ, आप बताइएगा कि आपको लालच आया था कभी पैसा देखकर? किसी उम्र में तो आया होगा, किसी के पर्स में रखा पैसा देखकर लगा होगा, काश इतना मेरे पास होता। अरे मैं अपना बता देती हूँ, मैं तो बचपन में सोचा करती थी कि काश कोई बड़ा रईस आदमी आए, वो हमसे कहे चलो हम तुम्हें इस शहर में ले चलते हैं, बड़ा बना देते हैं। बैठे बैठे बड़े बनने के ख्वाब सबके होते हैं, है ना, आपके भी होंगे, मेरे भी थे, पर बाद में सत्य का पता चला। चलते हैं अगले गीत की तरफ, बताइएगा ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे पापा कहते हैं फिल्म का यह गीत, और हमने पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया है, परंतु हम गीतकार जावेद अख्तर इसके हैं और राकेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हमारे श्रोताओं ने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया कि कुमार सानू की इस आवाज़ को हम सुन रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि आपको लालच किस चीज़ का है, तो हमारी श्रोता लिखती हैं, मुझे तो पति के पॉकेट से मिलने वाले पैसे का लालच आज भी है। जब भी उनके कपड़े धोती हूँ मेरी नज़र पॉकेट पर ही रहती है, कुछ सिक्के भी मिल जाए तो खुशी होती है, वो नोटों की गड्डी से भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, और ये तो हमारा अधिकार में भी आता है ना जी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक ना गिरे। इसका उत्तर मुझे पता है, आपने उत्तर नहीं दिया था लेकिन मुझे पता है, आसमान। और मैं आपको अगली पहेली सुनाने से पहले एक पहेली दे रही हूँ, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे, मैं हरी मेरे बच्चे काले है ना, और मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले, बताइएगा ये कौन है। मैं हरी हूँ मेरे बच्चे काले हैं, मुझे छोड़ दे और मेरे बच्चों को खा ले, ये उत्तर है, इसका उत्तर आपको देना है। और इसके साथ ही अगली पहेली हम आपके बीच में पढ़ने वाले हैं, और अगली पहेली के साथ में जो अगला गीत है उस अगले गीत के गायक कलाकार का नाम भी आप बता दीजिएगा। हम आपके बीच में बस इस पहेली को पढ़ देते हैं। नखून का रिश्ता है न घर का नाम, फिर भी रहता हरदम साथ, हंसाए खिलाए दुख भी बांटे, बताओ कौन है इतना खास, और वो होता है दोस्त। चलिए इस दोस्ती के नाम ये गीत, बताइए गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और आप सब ने बिल्कुल सही पहचाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का मैं था यह गीत। और आपने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, उन सब संदेशों को हम पढ़ देते हैं जल्दी से। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे, पांच भाई एक साथ घूसा मारता है भात भी खाता है, पाँच उसके साथ हैं दोनों मिलकर करते हैं नमस्कार, बिल्कुल सही, और दोनों हाथ का पंजा इसका इन्होंने कहा है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, ये इनकी भावना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं जब भी लॉटरी वॉटरी की टिकट रखती है तो उनको लगता है कि विदेश यात्रा मिल जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। देखिए लालच तो सबको होता है, पर ये लालच कोई थोड़ी सी भावनाएँ होती हैं, उन भावनाओं को अपन देख सकते हैं। अब मैं अंतिम पहली की तरफ जा रही हूँ। सागर जिसके चरण पखारे, हिमालय जिसका ताज कहाए, अनेक भाषाएं अनेक रंग, बताओ वह देश कौन सा कहलाए। और हमारे देश का नाम है भारत, भारत, भारत। ये अद्भुत देश जो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, और जिसका ताज, जिसके सर पर मुकुट है हिमालय जैसा, और जिसके चरण प्रतिदिन पखारे जाते हैं समंदर से, ऐसा देश माँ के अलावा और क्या हो सकता है। ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ, और बताइएगा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, और पहेली वाला कार्यक्रम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बड़ा मज़ा आया होगा मुझे ऐसा लगता है।

एक समय था जब खुशियाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाया करती थीं। फुर्सत के क्षणों में परिवार के साथ बैठकर बोलना, बतियाना, खाना पीना, हंसी ठिठोली, बातें करना, छत पर देर तक बातें करना, चांद सितारों को निहारना, त्योहारों की हलचल, इन सब में हमारे चेहरे पर खुशी और मुस्कान खिली रहती थी। साधन उस समय सीमित थे, लेकिन प्रेम और अपनेपन की मिठास घुली रहती थी। आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हमारे मन में खुशी कम होती जा रही है। लेकिन खुश रहना कितना ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आज हमें ये सोचने की फुर्सत नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो मन में जैसे तरंगे आती हैं, मन में ऊर्जा पैदा होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा मन उड़ जाता है मुक्ताकाश की ओर, और पांव जमीन पर नहीं पड़ते।

आज पहले जैसे खुश न रहने का कारण ये है कि जीवन की रफ्तार, जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। हर कोई व्यस्त है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह हमें बहुत सारी उपलब्धियां तो देता है, तो दूसरी ओर हमारे अपनों से हमें दूर करता जा रहा है। एक दूसरे के लिए हमारे पास समय कम होते जा रहे हैं, साथ रहते हुए भी मन की दूरी बढ़ती जा रही है। अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आगे बढ़ने की रेस मन को थकाने लगी हैं। रिश्तों में आत्मीयता और दिलों की चमक, मन की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी हैं।

खुशी हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमसे अलग नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम घर, बाहर, समाज और अपने कार्यस्थल पर अपनी मुस्कान और अपनापन जरूर बांटें, अपनी संवेदनाएं बाहर निकालें, सबका आदर और सम्मान करें। अपनी संवेदनाओं को कभी कुंठित नहीं होने देना चाहिए। किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी के सुख दुख को बांट लेना, सहयोग के दो शब्द कह देना, मीठे बोल बोल देना, ये सभी चीजें जीवन को जीवंत बनाए रखता है। तब हमारे स्वयं के चेहरे पर भी सुकून और खुशी लौट आती है, और जब हम खुश होते हैं तब पूरा ब्रह्मांड खुश होता है। पेड़ पौधे खुशी से झूमते नजर आते हैं। खुश रहने के नियम बताए गए हैं, सकारात्मक सोच, स्वास्थ्य का ध्यान, दूसरों से तुलना न करना, वर्तमान में जीना, माफ करना और संतोष करना। इन नियमों का पालन मानसिक शांति जीवन में चेतना लाती हैं। जीवन खुशियों से भर जाता है और जिंदगी को पूरी तरह से प्यार कर पाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं

0: दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री

0: बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया, बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिला

0: और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: लगें।
1: हम सुन रहे थे बड़ा आदमी फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं दाग फिल्म से यह गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल है, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम सुन रहे हैं।

0: हम हिंदुस्तानी फिल्म से हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साहिर लुधियानवी के बोलों से सजे हुए उषा खन्ना के संगीत के साथ संगीतबद्ध इस गीत को। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। मॉडर्न गर्ल इस फिल्म का यह गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में, गुलशन बावरा के बोल और रवि के संगीत के साथ आइए सुनते हैं।

जब प्यार किसी से होता है। फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलो शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है घराना फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शकील बदायूनी के बोल और रवि का है संगीत।

हम सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का यह गीत आशा भोसले, मुकेश की आवाज़ में महेंद्र नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के ने इसे संगीतबद्ध किया। इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आई भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निर्माण व विध्वंस मलबे के प्रबंधन और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में नॉर्वे की विशेषज्ञता श्रेष्ठ प्रणालियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सतत और पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नॉर्वे के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल में पर्यटन, हरित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। इसके लिए सरकार ने किसानों, बागवानों, पशुपालकों और मछुआरों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। धर्माणी आज घुमारवीं में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का फैसला लिया है जिनकी भूमि नीलामी के खतरे में है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार पात्र किसानों के 3 लाख रुपए तक के ऋण कृषि ऋण पर ब्याज देनदारी का 50% वहन करेगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 6,356 किसानों को लाभ मिलेगा। धर्माणी ने कहा कि सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का चौथा चरण शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस अवसर पर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। एम्स चमियाना के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने कहा है कि इस अस्पताल में अगले एक महीने में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित कर दी जाएगी। डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एम्स चमियाना को बहुत कम समय में पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यहाँ हर रोज ओपीडी की संख्या 1,000 से ऊपर पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 2400 घंटे की लैब सुविधा, ब्लड स्टोरेज सेंटर और सीटी स्कैन व एक्सरे सुविधा शुरू कर दी गई है और डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश के 2 वीर सपूतों कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर और मेजर अंशुल बाल्टू को देश के प्रतिष्ठित वीरता सम्मान शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। प्रदेश के लिए इसे गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दोनों जांबाजों को इस सम्मान के लिए बधाई दी। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर मंडी जिले के जोगिंद्रनगर की ग्राम पंचायत दारट बगला, जबकि मेजर अंशुल बाल्टू शिमला जिले की जुब्बल तहसील के घुंसा गांव से संबंध रखते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन दोनों वीर सपूतों ने अपने अद्वितीय साहस, दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण से ये साबित कर दिया है कि हिमाचल की देवभूमि आज भी वीरों की जननी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना के कड़े अनुशासन और सर्वोच्च राष्ट्र सेवा का प्रतीक ये सम्मान न केवल पूरे देश को गौरवान्वित करता है बल्कि प्रदेश के युवाओं को देशभक्ति व देश सेवा के मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करता है। प्रदेश सरकार ने बीएमसी केंद्रों से आज से दूध की खरीद बंद कर दी है। प्रदेश भाजपा ने सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार का ये फैसला किसानों की आजीविका पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दूध उत्पादक किसानों के साथ इस प्रकार का अन्याय सहन नहीं किया जाएगा और भाजपा हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर गरीब, किसान, महिला और युवा विरोधी फैसले लेने का आरोप भी लगाया।
1: कल सरकार से आदेश आया है, जो सरकार का सुखी सरकार का एक तुगलकी फरमान जो आया है, जारी हुआ है कि मंगलवार को दत्तनगर के जितने भी बीएमसी है उसके अंतर्गत जो दूध नहीं खरीदा जाएगा और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। आप एक तरफ से महिला किसानों को और दूध उत्पादक किसानों को कह रहे हैं कि हम आपकी आय को दुगुना कर रहे हैं, हम आपकी आय को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से 2-2 महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की चिट्ठी के अंतर्गत आज सुनिए ऊना जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक हैं राजेश कुमार और वाचक स्वर है पूनम शर्मा का।
0: ऊना जिला में पंचायती राज चुनावों के चलते गत माह चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच चुनावी सरगर्मियां भी तेज रहीं। जिला में स्थानीय नगर निकायों एवं सभी 249 पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंचों के मतों की गिनती 26, 28 और 30 मई को मतदान के तुरंत बाद की गई, जबकि नगर निकायों, जिला परिषद और पंचायत समिति के मतों की गिनती 4 जून को जिला के पांचों उपमंडलों के मुख्यालयों पर संपन्न हुई। ऊना, महतपुर, बसदेहड़ा, संतोखगढ़, दंगलखुर्द और गगरेट नगर निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बहुमत जीत दर्ज करवाई, जबकि अंब और दौलतपुर चौक में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों का बोलबाला रहा। जिला परिषद की 17 सीटों में से 11 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिसे जिला भाजपा संगठन ने आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल करार दिया। उधर गत वर्ष नगर परिषद से नगर निगम में स्तरोन्नत हुए ऊना नगर निगम और बंगाणा नगर पंचायत के चुनाव अगले चरण में होने तय हैं। नगर निगम के चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है और हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 के तहत तैयार की गई मतदाता नामावली 8 जून से आमजन के निरीक्षण के लिए उपलब्ध की गई है। मतदाता नामावली में नाम शामिल करने के लिए 1 अप्रैल 2026 अहर्ता तिथि निर्धारित की गई है। इस माह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में उपमंडल अंब व गगरेट के विभिन्न संस्थानों में आयुष विभाग की ओर से योग व स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जहां विद्यार्थियों, कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों को नियमित योगाभ्यास के महत्व और उसके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी गई, वहीं आम जन को योग व स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया। उपमंडल बंगाणा में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय जिला स्तरीय पिपलू मेला इस वर्ष 24 से 26 जून तक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। रबी की फसल के उपरांत स्थानीय किसान परिवारों द्वारा उपज का कुछ भाग देवता को भेंट करने के उद्देश्य से इस मेले का हर वर्ष आयोजन किया जाता है, जिसमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों से लोग पिपलू गांव में स्थित पिपलू मंदिर के प्रांगण में आयोजित इस मेले में श्रद्धा से भाग लेते हैं। 24 जून को पारंपरिक फेरी व झंडा रस्म के साथ पिपलू मेले का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। क्षेत्र की लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। मेले के दौरान पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें हिमाचली लोक कलाकारों के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला ऊना की सभी 249 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया गया। इन विशेष बैठकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करने और जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। ग्राम सभाओं में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जिम्मेदार सामाजिक व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया और ठोस व प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन में परिवारों, स्थानीय संस्थाओं और समुदाय की भूमिका पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही कचरे के पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग में कमी, जैविक कचरे से कंपोस्ट तैयार करने और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इन दिनों हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक

0: सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति से विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेडिएशन फॉर द नेशन 2 नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव शिखा लखनपाल ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निपटारे के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: हम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चले आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: बाद में 1 अगस्त 2014 को उन्होंने अपनी कंपनी जीनिया हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस को आधिकारिक रूप में स्थापित किया और ये कंपनी इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और रणनीति साझेदारियों के क्षेत्र में कार्य करती है।
3: जी, उन्हें विशेष रूप से लग्जरी हॉस्पिटैलिटी, कॉरपोरेट गवर्नेंस और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कामों के लिए जाना जाता है। उनकी कंपनी मुख्यतः वेडिंग प्लानिंग, कॉरपोरेट इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टिंग और डेस्टिनेशन इवेंट्स, लग्जरी गेस्ट जो मैनेजमेंट होता है वो सेवाएँ प्रदान करती है।
2: और उनका काम वी इन्वाइट यू You Own Event इस विचारधारा पर आधारित है, यानी ग्राहक अपने कार्यक्रम का पूरी तरह से आनंद लें और बाकी व्यवस्था सब कंपनी संभाल लेगी। हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ वो कॉरपोरेट गवर्नेंस में भी सक्रिय हैं।
3: जी, वो कुछ बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में भी जुड़ी हुई हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉमेडी क्लब और लाइव इवेंट्स में काम करते हुए उन्हें अपने व्यवसाय की प्रेरणा मिली थी और इसके बाद उन्होंने स्वयं का ब्रांड भी शुरू किया। जीनिया सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रही हैं और पर्यावरण तथा CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसमें गतिविधियों में वो भागीदारी करती रही हैं।
2: ये रही बहुत अच्छी जानकारी उनके बारे में और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली, और अब जो बातें होंगी वो होंगी पानी के बारे में, पानी की बचत के बारे में।
1: बिल्कुल, पानी, और देखो पानी का जो रहते कहते ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
0: पानी का कोई रंग नहीं है फिर भी हर एक की जरूरत है। कहते हैं कि जिंदगी अगर है तो पानी सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए।
1: और जितनी भी सोचिए सभ्यताएं बसी, जितनी भी हमने प्रगति करी, वो सब कहां, सिर्फ नदियों के किनारे बसी।
0: जी,
1: जिससे कि हमारे देखो जीवन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, पानी। और अभी कुछ रिसेंटली हम लोगों ने अभी कुछ खबरें भी सुनी कि किस तरह से पानी नहीं मिलने की वजह से 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये सोचिए, ये हमें जागरूकता का विषय भी है कि अभी से हमें चेत जाना चाहिए कि अगर पानी नहीं होगा तो हमारे पास कल भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही बात है, जल है तो ही कल है। जिस तरह हवा बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही पानी ज़रूरी है। और बहुत सारी नदियों में पानी का जल स्तर दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कई बार हम पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जिन जो हमारे पानी के स्रोत हैं उन्हीं को हम गंदा कर देते हैं। वहाँ पर जो कल कारखाने हैं उनसे पानी गंदा हो जाता है, या फिर हम जो प्लास्टिक प्रदूषण करते हैं, हम बहुत सारी जगहों पर जब घूमने जाते हैं, झील नदी समंदरी किनारों पर हमें जाकर बैठना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर हम बहुत सारी गंदगी छोड़कर आते हैं। लेकिन बात अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पानी जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है उसे हम किस तरह से यूँ बेकार की चीज़ समझकर वेस्ट करते रहते हैं, और इसका खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना
1: बिल्कुल
0: पड़ेगा।
1: और लोग भुगत भी रहे हैं। सोचिए एक जगह हमें अभी यहाँ पे अगर सहूलियत से पानी मिल रहा है, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी के लिए लोग कितनी कितनी दूर तक चल के जाते हैं और मतलब दो दो बूंद पानी के लिए तरसते हैं कि वहाँ पे अगर उनको पानी एक घड़ा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझ लेते हैं उस चीज़ को।
0: इसीलिए देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं कि पानी की बचत करना एक अच्छी बात है, फिर वो पैसा हो या पानी, इसके बिना सारी दुनिया है फानी। पृथ्वी पर बसे हर एक जीव के लिए पानी प्राथमिक ज़रूरत है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है और यही सबसे बड़ा गम है। इन्होंने जो बातें लिखी है ना उसे इस तरह तुकबंदी में जोड़कर बड़े अच्छे ढंग से लिखा है। आगे देखिए क्या लिखते हैं ये। इसे बचाने के लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं कि जल के बिना जल बिना जरूरी उपयोग के इसे वेस्ट ना करें। पानी के बहते नल को बंद करना ज़रूरी है। वर्षा का जल का संचयन करना चाहिए जो साल भर तक शुद्ध रह सकता है। यदि हम समय पर सतर्क नहीं हुए तो जल बिन मछली जैसे तड़पती है, वैसे ही कभी हमें भी तड़पना होगा।
1: बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जल की हर एक बूंद में जीवन का विस्तार है। सूखी धरती की प्रार्थना का ये मधुर उपहार।

0: हार है। मत छीनो इसकी सांसें, मत इसका मान हरो, जल बचेगा तो ही जग में मानवता का श्रृंगार है।
1: बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि जल ही जीवन है, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि बहुत बड़ी सच्चाई है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो कह सकते हैं कि पानी है।
0: जी
1: पीने के लिए, खेती के लिए, बड़े बड़े जो उद्योग चलते हैं उनके लिए, स्वच्छता रखने के लिए, भाई अगर हमें घर को, अपने आप को स्वच्छ रखना है तो उसके लिए भी पानी ज़रूरी है, और
0: बिल्कुल
1: पर्यावरण संतुलन के लिए भी पानी ज़रूरी है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, जल प्रदूषण और पानी का जो दोहन हो रहा है सबसे ज़्यादा, उसके कारण जल का संकट दिनों दिन बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल। और चंचल जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है,
1: जी
0: ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे जीवन भी पनपा, क्योंकि कहते हैं ना महासागरों में सबसे पहले जीवन पनपा था। तो ये सोचिए कि अगर हम यहाँ पे अगर उस जल को ही ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही कहाँ बचेगा। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से पानी को ज़रा सा भी ना बर्बाद करें। जैसे छोटे बच्चे, उनको अकल नहीं है, तो अगर उस चीज़ को वो कर रहे हैं तो उनको समझाइए, सिखाइए।
1: जी
0: अभी से हम सिखाएंगे तो ही वो आगे जाके समझेंगे।
1: इसी पर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत कैसे ना करें, कपड़े बर्तनों को धोया पानी कप पेड़ों में डालकर नल खोलकर कोई काम ना करें, मग्गे बाल्टी पानी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की मात्रा कम खर्च होगी। और इस समय गर्मी के मौसम में पंछी जानवरों के लिए भी पानी ज़रूर से रखें, पेड़ पौधे लगाएं, आसपास गड्ढे करें जिससे उनमें पानी का संचय हो सके, और छतरी रखकर टंकी को ओवरलोड किया हुआ पानी सीधा आप इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह निकासी करे हुए पानी को गड्ढों या पेड़ पौधों में छोड़ सकते हैं और पानी की बचत हम कर सकते
0: बहुत
1: हैं।
0: ज़रूरी है। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आँखों में आँखों का पानी और धरा का पानी सूखना बड़ा ही दुखदायी होता है, जो अंदर तक दर्द के रेगिस्तान को जन्म देता है, और जहाँ फिर प्रेम का अंकुर पर अपना मुश्किल हो जाता है, जीवन खतरे में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों से लोगों को पानी के लिए भटकते देखते हुए मन में टीस सी उठती है, परंतु एक बार बरसात हो गई तो लोग भूल जाते हैं और फिर वही पानी का अपव्यय शुरू हो जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है।
1: सही बात है, बारिश का जो मौसम है वो सिर्फ 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने रहता है,
0: बिल्कुल।
1: इसके बाद के जो 8 महीने हैं उसमें पानी नहीं बरसता। इसी पानी से हमें बाकी के 8 महीने निकालने हैं, इसीलिए बचत बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस समय कार्यक्रम में गीत सुनना भी ज़रूरी है।
0: जी

0: तो अब हमारे बहुत सारे
1: हम्म,
0: श्रोताओं ने, जिन्होंने अपना संदेश हमें लिखकर भेजा है, वो बताते हैं। पानी की बचत के महत्व को लेकर हमारे श्रोता ने लिखा है कि पानी की बचत करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रख सकते हैं। हमें नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए और पानी का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हम आज पानी बचाएंगे तो भविष्य में जल संकट से बच सकेंगे। इसीलिए हमें जल है तो कल है के संदेश को अपनाकर पानी की एक एक बूंद की रक्षा करनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी की बचत का महत्व बहुत ज़्यादा है, हम कई तरीकों से पानी को बचा सकते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि घर में नल को खुला छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, मोटर लगाया है तो मोटर बंद नहीं करते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इस तरीके से हम पानी की बचत नहीं करेंगे तो कल को ये जल जो हमारा जीवन है, ये हमारे आने वाले लोगों को, पीढ़ियों को कैसे मिलेगा। तो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए हमें कई तरीके से अपना सकते हैं। नल को खुला ना छोड़ें। अगर किसी के घर में टंकी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टंकी बंद करना भूल जाते हैं, तो उसको आप बंद करें सही समय पे, जैसे करके टाइमर लगाइए उसमें। और अगर किसी कोई इस तरीके के, मतलब जो उन्होंने लिखी है, इस तरीके की चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आप पानी बचा सकते हैं। घर में किस तरह से बचा सकते हैं ये इन्होंने बताया। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पानी को बर्बाद, जो पृथ्वी का 70% पानी है, वो जो 70% पानी है, और मतलब पानी से ढका होने के बाद भी पीने लायक पानी जो है वो बहुत ही कम है। तो वही वो भी बता रहे हैं कि नलों को आप खुला मत छोड़ें, मोटर को बंद करें, और अगर कोई नल टिप टिप करता रहता है तो उसको भी ठीक कराइए। उसको ऐसे ही नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया, अगर कहीं आपको बाहर भी ऐसा दिखाई दे रहा है तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उसको आप ठीक करने की कोशिश करिए।
0: बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है, जब वो कपड़े धोती हैं या बर्तन धोती हैं तो नल चालू है, इधर कपड़ों पे वो साबुन लगा रही हैं या बर्तन को साबुन लगा रही हैं और पानी लगातार बह रहा है, तो उतनी देर के लिए जब आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं, नल का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप नल को बंद कर दीजिए। इसी तरह से कुछ पुरुषों की आदत भी होती है, जब वो सुबह सुबह शेव करते हैं तो इधर नल चालू है, यहाँ
1: चल रहा है,
0: उधर काम चल रहा है उनका, तो उतनी देर के लिए जब तक आप शेव कर रहे हैं आपको अपना रेजर नहीं धोना है तो आप उसको बंद कर सकते हैं ना नल को। इसी तरह से महिला पुरुष बच्चे ये सबकी जिम्मेदारी है।
1: छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी पीते हैं तो हम पानी, थोड़ा सा पानी पिए, दो घूंट पानी पिए और पानी बाकी फेंक दिया,
0: आधा ग्लास पानी पीते हैं और आधा फेंक,
1: पीने लायक पानी होता है, कितना कीमती पानी है उसको हम फेंक देते हैं यूं ही।
0: कई बार जब हम किसी समारोह में जाते हैं, किसी आयोजन में, उत्सव में जाते हैं, तो आजकल पानी की बोतल देने का सबसे ज़्यादा चलन है, तो वहाँ भी आधी बोतल पी के आधी बोतल को हम फेंक देते हैं, तो ऐसा ना करें। आप बची हुई आधी बोतल पानी को अपने पास ही रखिए ताकि दोबारा ज़रूरत पड़ने पर एक नई बोतल का इस्तेमाल करने की बजाय आप उसी बोतल के पानी का फिर से इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो ये अन्य ग्रहों की तरह सूखा और वीरान होता। पानी की बचत आज समय की सबसे बड़ी मांग है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत सीमित है और बढ़ती आबादी के साथ इसका संकट भी गहराता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद बचाना पर्यावरण और भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है, जबकि इसकी बर्बादी गंभीर परिणाम ला सकती है। घर में किसी को भी, किसी भी नल या पानी से पाइप टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है, तो अगर सभी जागरूक हैं तो जो जागरूक नहीं हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है कि आजकल सभी घरों में वाटर प्यूरीफायर लगे हुए होते हैं और सबसे अधिक पानी की बर्बादी यहाँ होती है, तो कुछ लोग इसे संग्रहित करके पौधों में डालते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। अगर आप कपड़े धो रहे हैं या इस तरीके का पानी आपका बच रहा है या आपने सब्जियाँ धोई, तो वो पानी जो आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अलग से आपको वहाँ पे पाइप लगा के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है पाइप लगा के जब हम पानी डालते हैं।
0: इसी तरह से बहुत से लोग एसी लगाकर जब घर में रहते हैं तो उसके पाइप से जो पानी रिस कर धीरे गिरते रहता है और बाल्टी में जमा हो जाता है, तो उसको भी आप पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार छत या आंगन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो इस तरह की आप छोटी छोटी चीज़ें भी करेंगे ना तो बहुत सारा पानी बचेगा, और बहुत ज़रूरी अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अब अगली जो युद्ध होगा वो

0: निकली होगा, है
1: क्या
0: ना।
1: बात
0: तो
1: है,
0: इसलिए हम उस युद्ध को रोक सकते हैं होने से।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उसके लिए हमें, क्योंकि अब देखिए खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है, अगर हमें साफ पानी चाहिए तो ज़रूरी है पानी की बचत करनी।
1: तो बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन इस समय घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि लेते हैं
0: अंतराल
1: छोटा सा अंतराल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं हूं आरती श्रीवास्तव।
0: और हम बात कर रहे थे पानी की बचत के बारे में। तो बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं श्रोताओं से। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से बीमारियों को भी रोका जा सकता है। पानी की कम खपत से प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदियों, झीलों पर दबाव घटता है, जिससे जलीय जीवों और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जनसंख्या और पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। समझदारी से पानी का इस्तेमाल करने से पीढ़ियों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम जब नहाने नहाते हैं तो ढेर सारा वो शॉवर चला के नहाने की आदत होती है ना, तो बहुत सारा पानी बर्बाद होता है। अब तो उससे बाल्टी से नहाइए, मग्गे से नहाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि जो इस तरीके से पानी की जो वेस्टेज है, जो बर्बादी है, वो भी रुकेगी। और साथ ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जो वर्षा का जो जल होता है उसको भी आप इकट्ठा करके रख सकते हैं, जिस तरह से वो बना के बताया गया, जैसे हमारे श्रोताओं ने भी बताया। इस तरीके से आप पानी की बचत ज़रूर करिए।
0: और जैसे कहते हैं कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, कई बार उसकी कदर नहीं होती।
1: नहीं करते,
0: जिस तरह से हवा हमें मिल रही है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन हमें जहां से मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते। पेड़ों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी तरह से जब वर्षा का जल हमें कोई बिना कीमत चुकाए वो वर्षा जल हमें मिलता है, हम उसका संचय करते नहीं और बाद में वही पानी हमें खरीद कर लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया भर में जहां जल संकट अति का बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ चाय की कीमत से ज़्यादा पानी की कीमत होती है, ऐसा हमारे श्रोता भी लिखकर बता रहे हैं कि चाय या अन्य चीज़ें वहाँ सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन पानी वहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा कीमत देकर खरीद कर वो लोग लेते हैं।
1: और जब से मैं बताऊँ कि मैंने तो ये चीज़ खबर सुनी तो सच में अजीब सा ही लगा। अब जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एकदम से सचेत हो जाती हूँ, बस सोच के कि सोचो उस समय उन लोगों को सिर्फ एक दो बूंद पानी मिल जाती तो उनकी जान बच जाती। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, पानी का क्या महत्व है। जब तक हमारे पास बहुत पानी आ रहा है, हम पानी पी रहे हैं, फेंक रहे हैं, और जब जिस समय कहते हैं ना कि अब पानी कटौती होने वाली है या पानी दो दिन नहीं आने वाला, तब लगता है अरे यार अब कैसे होगा, अब का ऐसे काम चलेगा। तो हमें सोचना चाहिए इसी तरह से समय से आप काम करना चाहिए कि अब पानी नहीं आए तो हम क्या करेंगे।
0: एक दिन की कटौती में अगर हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर ये कटौती पानी को बहुत जल्द से अगर घट गया तो बहुत ज़्यादा अगर होने लगी तो कितना हम परेशान होंगे। उस परेशानी से बचने के लिए महत्व इसका हम बता रहे हैं। और आप सुन लेते हैं गीत।

0: भाई क्या हुआ, जब एक किसान ने आम तो बेचे ही, आम बेचकर पैसे कमाए, लेकिन जो गुठलियां बच गई वो एक नर्सरी को बेच दी ताकि नए पेड़ आम के लगाए जा सके। तो यानी कि जो मूल चीज है उसे तो आपने मुनाफा कमाया ही, लेकिन जो बची हुई चीज है उसे भी आपको मुनाफा मिला। दोहरा फायदा, दोहरा लाभ, डबल मुनाफा, इसीलिए कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम।
1: गुठलियों के दाम भी उसने ले लिए और खाली उसी ने नहीं लिए, पेड़ लगाने से सबको फायदा हुआ, तो बहुत अच्छी चीज है ये।
0: तो ये तो सिर्फ कहावत है, लेकिन बहुत सारे इसी तरह से हम काम करते हैं कि दोहरा फायदा हमें मिलता है। तो हमारे श्रोताओं के साथ क्या अनुभव रहे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई।
1: बिल्कुल, तो हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, जिसका मतलब एक ही काम या किए गए प्रयास का दोहरा लाभ प्राप्त होना है। जैसे कि मैं ठहरा बुजुर्ग व्यक्ति, मेरे लिए सखी सहेली सुनना और कमेंट लिखना समय जो प्रसार करने के साथ साथ मनोरंजन और उपयोगी जानकारी प्राप्त करना होता है। मतलब आम के आम और सखी सहेली के नाम।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि आम तो इन दिनों हम रोज ही खा रहे हैं और गुठलियों को सहेज कर रख दिया जाता है ताकि जब बारिश आएगी तो इन्हें उगा देंगे। तो हो गया ना आम के आम और गुठलियों के दाम, एक पंथ दो काज की तरह ही होती है ये कहावत।
1: जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और एक और हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि इसमें इसे अंग्रेजी में टू बर्ड्स विद वन स्टोन भी कहा जाता है, यानी कि एक तीर से दो निशाने। मतलब एक ही मुहावरा है, उस मुहावरे को बहुत कई तरीकों से कहा जाता है।
0: एक पंथ दो काज, आम के आम गुठली के दाम और एक तीर से दो निशाने, लगभग एक जैसा ही अर्थ है इन बातों
1: बिल्कुल
0: का।
1: और व्यवहारिक जीवन में इसको कहा जाता है कि यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी पुरानी किताबें अच्छी कीमत पर बेच देता है तो उसे दोहरा लाभ होता है। और व्यापार की बात करें तो जब कोई किसान आम बेचने के साथ साथ उसकी गुठलियों या छिलकों का उपयोग करके अचार, तेल या अन्य उत्पाद बनाने के लिए करता है तो आम के आम और गुठलियों के दाम भी, तो सच में एकदम सही बैठा कि उन्होंने आम खाया और गुठलियों से उसके छिलकों से अचार भी बना लिया।
0: और आगे एक श्रोता का संदेश है कि ये मुहावरा हमें संसाधनों का सही उपयोग करने और अवसरों का पूरा लाभ उठाने की सीख देता है। दैनिक जीवन में जब किसी व्यक्ति को एक प्रयास से कई फायदे मिलते हैं तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि मुहावरा आज भी उतना ही

0: आरती, अक्सर हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए बहाने का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बहाने मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सभी के द्वारा, कि बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ या 5 मिनट में पहुँच रही हूँ, या अगर फ़ोन नहीं उठाया तो क्या बोलते हैं, भाई मेरा तो फ़ोन ही साइलेंट पे था इसलिए कॉल नहीं देखा, या कहेंगे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, कहीं अगर समय पर ना पहुँचे तो कहेंगे भाई ट्रैफिक बहुत मिल गया, और अगर समय पर ना पहुँचे या फ़ोन भी नहीं देखा तो अगर मैसेज करने की बात हो मैसेज करना भी भूल गए, अचानक से बहुत ज़रूरी काम आ गया, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, इस तरह के ब्ला ब्ला बहुत सारे बहाने हैं जो बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है बहाने के बारे में, अब ये बात है पढ़ने वाली।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बहाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, सभी को उल्लू बनाना ये भी आसान काम नहीं है, अगर बहाने में वफाए हो तो तूफा भी किनारा है, वरना साहब के गुस्से से गिरती बिजली का नजारा ही नजारा है,
0: क्या बात है?
1: सामने वाला आसानी से विश्वास कर सके ऐसा बहाना बनाओ कि हम राहत की सांस ले सकें। ज्यादातर लोग तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बनाकर आसानी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहाने का उपयोग कब और कहां करना है ये सोचना चाहिए, नहीं तो आपके योग वियोग में बदल सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को लगने लगता है कि नहीं ये तो बहाना बनाया जा रहा है तबीयत खराब होने का, जो बच्चे अक्सर बनाते हैं स्कूल से छुट्टी लेने के लिए।
0: और बहाना जो अक्सर काम करता है, सबसे पहले तो बहाना विद्यालय में बच्चे होमवर्क नहीं करें और कहेंगे कि मैडम कर तो लिया लेकिन कॉपी

0: घर पे रह गई, अब क्या कहें। और शिक्षक बहाना एक्सक्यूज, किसी काम करने के लिए, बचने के लिए, अपनी गलतियां छिपाने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए ये एक कारण होता है। यानी कि अलग अलग तरह का बचाव है
1: जब बहुत
0: जिसका
1: ज्यादा स्पष्टीकरण मिलने लगे तो समझ लीजिए बहाना है।
0: बिल्कुल, बहानों का इस्तेमाल लोग स्थिति से बचने के लिए, टाल मटोल करने के लिए या असफलता को सही ठहराने के लिए करते हैं। जैसे लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था, तबीयत खराब हो गई, बैटरी खत्म हो गई, कोई जरूरी काम आ गया, वगैरह वगैरह।
1: बिल्कुल, एक श्रोता है जो कहते हैं कि बहाने जो अक्सर काम आते हैं इस विषय पर, एक बहाना ऐसा है जो हम सभी ने कभी ना कभी, बहुत लोग अक्सर करते ही हैं, और वो भी सटीक लग भी जाता है, और वो है फोन कॉल से संबंधित। अगर किसी अनचाहे का कॉल अटेंड नहीं करना हो तो सीधा सीधा बहाना होता है, अरे फोन तो चार्जिंग पर लगा था या साइलेंट मोड में चला गया था। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल हटकर है, कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं बल्कि सच से चल सकता है। ये तो आप सही कह रहे हैं कि अगर हम जबरदस्ती में बार बार बहाना करेंगे तो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि ये बहाना ही है।
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब भी स्कूल जाने का मन नहीं होता तो सबसे बड़ा अच्छा बहाना होता था कि पेट दुख रहा है, और अक्सर बच्चे ये बहाना करते हैं। और आगे श्रोता लिखते हैं कि बहाना जो अक्सर काम आता है, तो ये कहूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दफ्तर ना जाना हो तब भी हम यही बहाना बनाते हैं, घुटनों में दर्द है, कहीं जाना आना संभव ही नहीं है।
1: बिल्कुल, अक्सर होता है ऐसा। और एक कोई श्रोता है जो कहते हैं कि बहानों में हमारी श्रीमती जी का, हमारे जो श्रीमती जी हैं वो एक नंबर है, कुछ काम कहो तो बहाना बनाती हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि, और वो स्वयं काम कर लेता हूं, और फिर वो कहती है मैडम अरे वाह तनिक थोड़ा धैर्य रखते तो हम कर ही देते, लेकिन इसमें हल्की फुल्की बहाने, नोक झोंक, प्यार और स्नेह, तो दोनों खुश हो जाते हैं, और फिर वो हमारी तारीफ भी करती है, भाई आप काम कर देंगे तो तारीफ तो आपकी होगी। वैसे अच्छी चीज है ये, इस तरीके का बहाना, और आप उनकी बात मान के थोड़ा बहुत काम का हाथ बटा देते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा कि बचपन में स्कूल जाने के नाम पेट दर्द का बहाना बनाया करते थे, पर मैंने एक बहाना अभी भी मारा है। मुझे सोशल मीडिया पर कुछ अटेंड करना था, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने ऐसे ही बहाना मार दिया कि मेरा पेट खराब है, लेकिन मैं पकड़ी गई और मुझे स्कूल जाना ही पड़ा। और उस समय सोशल मीडिया पर प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए, वो प्रोग्राम सोशल मीडिया पर भी आ रहा था और वीडियो पर भी था, लेकिन मैंने ना दे दिया, और इसलिए सोशल मीडिया, लेकिन मुझे याद है कि मैंने क्या किया था।
1: हाँ, लेकिन अब सबको पता चल गया कि वो आपने बहाना बनाया था।
0: जी,
1: एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के अपने अपने बहाने होते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार लोग वही बहाना चुन लेते हैं जो उस वक्त उनको सही लगता है। और मेरे साथ भी एक मज़ेदार घटना हुई। मेरा एक दोस्त का जन्मदिन था, मुझे उसे विश करना था। सुबह तक तो मुझे उसका जन्मदिन याद था, लेकिन दिन भर की व्यस्तता में मैं उसे विश करना भूल गई। शाम को जब उसका फ़ोन आया तो वो मुझसे थोड़ी नाराज़ थी, तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा अरे यार मुझे याद था, बस दिमाग से निकल गया। सच कहूँ तो अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, या मुझे याद था बस दिमाग से निकल गया, ऐसे बहाने जो में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी जरूर इस्तेमाल करते हैं। मैं करती हूँ अक्सर, हालांकि कई बार ये सिर्फ बहाना नहीं बल्कि सच भी होता है, क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच कुछ बातें सचमुच दिमाग से निकल जाती हैं।
0: तो चलो अब एक गीत सुन लें।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो आरती, तुमने कभी कोई बहाना बनाया है? बताओ मुझे।
1: बनाए तो बहुत सारे बहाने, मैं अक्सर बना लेती हूँ बहाने, लेकिन अभी मैंने बनाया था कि हाँ यही वाला कि मेरा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मैं उठा नहीं पाई।
0: हाँ, ये जो है ना, फोन साइलेंट पे था, बैटरी खत्म हो गई थी, चार्जिंग पे लगा था। आजकल क्योंकि जब कहते हैं कि भाई फोन करना भूल गए, तो ये बहाना तो हर कोई बनाता है, या हम कहेंगे कि भाई घर पे कोई आ गया था, ये भी
1: बिल्कुल।
0: बहाना बहुत होता है। तो अब बहानों की बात चली है तो बताएं हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। कहते हैं कि बहाने यानी दो तरह के होते हैं। इससे हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे किसी से अगर हमें नहीं मिलना होता है तो हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और किसी से मिलना चाहते हैं तो बहुत बहाने हम निकाल ही लेते हैं। बस बहाने की ही बात है। मिलना ना हो तो हम बहाने बनाकर मिलने भी जाते हैं, ना मिलना हो तो बहाना बनाकर टाल देते हैं, और यही बता रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और एक हमारी श्रोता हैं जो लिखती हैं कि अभी कल की ही बात है, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ, वो लोग कहीं घूमने गए हैं, उनकी देवर की लड़की इतवार को मेरे साथ मेरे ही घर पर लंच करना चाह रही थी अपनी माँ के साथ। इतनी गर्मी हो रही है, मैंने बचने के लिए कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। इस तरह से मैं कहीं गई भी नहीं और घर में इतनी गर्मी में किचन में काम करने से बच गई। ये बहाना मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा, लेकिन अब उनको पता चल गया होगा, उन्होंने सुना होगा
0: हाँ,
1: प्रोग्राम
0: अगर वो रेडियो सुनते हैं उन्हें रेडियो पर बात पता लग गई होगी।
1: कि आपने बहाना बनाया था खाना बनाने से बचने के लिए। तो
0: और हमारे श्रोता ने लिखा है कि जब बहुत छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो एक तो बच्चों का कॉन्वेंट स्कूल और बहुत खर्च भी वहाँ पर था, और कई बार बजट डिस्टर्ब ना हो जाए तो कई बार बहाने बनाने पड़ते थे। जैसे एक बार बच्चों ने महंगी साइकिल लाकर देने को कहा, तो मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मेरे मित्र ने अपने बेटे के लिए जो साइकिल खरीदी थी वो 15 दिन में ही टूट गई, और वो यहाँ बन भी नहीं पाती है, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर चीज़ लानी पड़ती है, तो बहुत पैसे लग जाते हैं। और इसी तरह बहाना बनाकर बच्चों ने जब साइकिल मांगने की जो जिद थी वो छोड़ दी।
1: बहुत बढ़िया बात है। और देख, हम इस समय एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम पर भी हमारे जो एक सखी, उन्होंने लिखकर भेजा है, कहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उसमें चूसने वाले आम बहुत आते थे, उसमें जब हम आम खा चुकते थे तो गुठली को मेरी दादी एक टीन के डिब्बे में इकट्ठा कर लेती थी। बाहर छत पर रखा डिब्बा बहुत दिन तक रखा रहता था और गुठली इकट्ठा होती रहती थी, और फिर बरसात में भी भीगती थी। जब बहुत सी गुठली इकट्ठा हो जाती थी तो उसी डिब्बे में उबाल कर ठंडा होने पर गुठली को तोड़कर उसके बीज को नमक लगाकर खाते थे। यही हमारा मुहावरा बन गया कि मतलब आम तो खाए गुठलियां भी खाएं।
0: अचार में भी कई बार गुठलियों का प्रयोग किया जाता है, और गुठलियों में बड़ा अच्छा तो स्वाद होता है
1: बिल्कुल
0: लेकिन बहुत मीठा स्वाद होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भी तो सुन लें गाना।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: दिल तो हमारा भी नहीं भरा अपनी सखियों से बातचीत करते करते,
1: बिल्कुल
0: लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें जाना होगा,
1: जाना ही
0: इसीलिए
1: होगा।
0: ये था इस कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोता, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे, कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जानना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफ़र है चेन्नई से वहाँ, मतलब मैं तमिलियन हूँ समझिए।
1: अच्छा, अच्छा। लेकिन आपने शुरुआत की तेलुगु फिल्म से।
2: हाँ, वो क्या हुआ, मेरे वालिद साहब का ट्रांसफ़र हुआ करता था हर तीन साल, यू नो, पोस्टिंग होती थी जो आईएएस ऑफिसर्स की होती थी। तो हम विजयवाड़ा में थे, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने कई बार डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे दिए थे। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, 11-12 साल की। तो साउथ इंडियन मूवीज़ जो थी वहाँ से मुझे ऑफर्स आ रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने कहा, ये उम्र बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई भी नहीं ख़त्म हुई, तो अभी वैसे एज ए प्रोफेशन शुरू करने का इरादा भी नहीं था। मगर उसके बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं 13 साल की थी। फिर भी मेरी, मुझसे तीन बड़ी बहनें हैं, उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी, मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तेफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूँगी, फिर से ऑफ़र आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहाँ तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफ़र आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं तो मैं नहीं इजाज़त दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे, वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से ज़मींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर लें तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत, मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो। और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था, वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद हैं उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद हैं आपको?
2: पूरे तो याद नहीं हैं। हेरुआ का साकारो रन्नो चिन्नन्ना, आगे
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं। अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
2: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज, विच लिटरली चेंज माय लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और ख़त्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है? तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे, उन्होंने कहा पॉसिबल है क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद, एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज़्यादा कामयाब हुआ था वो गाना,
1: क्या कहने।
2: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफ़ी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर? तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी, तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम, एक डांस किया है वो, तो बहुत कामयाब हुआ, और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है? तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं, हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरह मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं? तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके ज़रिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहाँ मुलाकात हुई। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर 10-15 मिनट मैं और मेरी वालिदा थे, फिर चुप। कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुँचे तो इस चीज़ को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से, यू नो।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली?
2: CID पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो CID और प्यासे की बातें करें उसके पहले हम वहीदा जी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
2: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: वह बहुत ही खूबसूरत गाना है और खासतौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका जवाब ही नहीं है। आपको याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें, कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीआईडी बनी थी, उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: हाँ जी।
1: तो एक महीने दो महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली दो तीन महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फ़र्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ़ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरदत्त साहब
1: हाँ
0: को कैसा डायरेक्टर मानती थी?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह,

0: वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ
1: you know? उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है अपना, कौन सा सीन?
0: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज़ है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा।
1: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाने चाहिए।
0: हाँ, एक्सप्रेशन लाने थे और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी मन और बढ़िया दिखती थी।
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज़ के फूल का, ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
0: हाँ
1: है और इसकी मेलोडी जो है आज तक
0: हाँ
1: बहुत दिल को छू लेने वाली है।
0: बिल्कुल,
1: क्यों नहीं गाना सुना जाए?
0: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ, तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सब ने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं।
0: तो आपने कह दिया?
1: हाँ, मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा, बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज़्यादा हैवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं, तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली,
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना, उसके बाद चौदहवीं का चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म, फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और गुलाम, उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा वेदा जी, साहेब बीबी और गुलाम का जिक्र आया है, डायरेक्टर के रूप में नाम आता है अबरार अलवी साहब का, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि शैडो के रूप में गुरदत्त साहब मौजूद हैं। पूरी फिल्म में वो झलक जो है गुरदत्त साहब की जरूर दिखाई पड़ती है, उनके निर्देशन की झलक दिखाई पड़ती है।
1: अभी देखिए अबरार साहब क्योंकि उनसे उनके साथ शुरू से काम कर रहे थे तो नेचुरली उनका इन्फ्लुएंस तो होगा ही ना, तो उन्होंने हमेशा गुरदत्त जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरदत्त जी नहीं थे तो उसमें गुरदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरार साहब और गुरदत्त जी के डिस्कशन ज़रूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज़ को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
0: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती थी।
1: बिल्कुल, जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरदत्त जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल, तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक मैच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा तड़पती जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोले वो नहीं आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज़ को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए, लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे वो हमने सब ने स्टिल्स देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी हो के कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज़ को। तो मैं समझ गई बाद में क्या कहना चाह रहे हैं। सो
0: इस फिल्म का शुमार भी बहुत बेहतरीन फिल्मों में होता है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कोई यादगार संस्मरण इस फिल्म से जुड़ा है, कोई आपको याद आता हो, कोई प्रसंग याद आता हो?
1: मुझे रोल अच्छा लगा था क्योंकि हाँ उसके बाद गुरदत्त जी ने कहा आप नहीं करेंगे तो बात ख़त्म हो गई। तो जब अबरार साहब डायरेक्ट करने लगे तो वो एक दिन घर पे आ कहने लगे देखो मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे क्योंकि मैं नया डायरेक्टर हूँ इसके लिए नहीं कर रहे। मगर मैंने कहा उसकी तो कास्टिंग हो गई है अभी मीना जी के साथ। बोले नहीं जबा का रोल है वो भी तो कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लूँगी। तो गुरदत्त उन्होंने जाके गुरदत्त जी को बताया तो उनको ताजुआ भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं चौदहवीं के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने कहा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जबा का रोल, डिफरेंट डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब्रार साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूँगी, तो इसलिए मैंने किया।
0: तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो?
1: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी, मगर

0: अब इसके पहले बातचीत में आपने जिक्र किया था चौदहवीं का चांद का, एक बड़ी, वो भी एक बहुत अलग तरह की फिल्म आपकी, बड़ी खूबसूरत फिल्म, और उसमें भी गुरुदत्त जी आपके साथ में थे, तो उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसी थी बतौर, जैसे वो एक एक्टर एक्ट्रेस के बीच में जो एक ट्यूनिंग होनी चाहिए, कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है, मायने रखती है, खासतौर से परफॉर्मेंस को लेकर के।
1: नहीं, क्या हुआ, प्यासा जब शुरू हुई, क्योंकि कई सीन में गुरुदत्त जी नहीं सिर्फ डायरेक्ट कर रहे थे, तो मेरे दिलो दिमाग में गुरुदत्त जी इज मोर अ डायरेक्टर देन एन एक्टर। तब तक आदत हो गई थी कि वो के समझने लगे हमारे प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे कर लो, तो वो एक रैपोर क्रिएट हो गया था उनके साथ। हाँ, इनके साथ बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये नहीं हो रहा है हमसे, तो वो समझाते थे, वो था। फिर गुरुदत्त फिल्मों की एक बड़ी अच्छी बात थी कि वो एक ही किस्म के नई फिल्में बनाते थे, जैसे CID बनाए, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूँगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मज़ा है वो कोई छोटी सी बात मैं नहीं समझ सकूँगा, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़बान है ही नहीं, अगर सादिक बाबू करेंगे तो वो छोटी छोटी बातें होंगी, हाय अल्लाह कहने का भी अंदाज उनको जो मालूम होगा जो मुझे नहीं पता होगा,
0: क्या कहना,
1: यू नो, और ख़ासकर वो लखनऊ के हैं उस तरफ से, सही बात थी, तो उनका अगेन डिस्कशन ज़रूर होते थे होंगे, बट ऑन द सेट सिर्फ सादिक बाबू, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुरुदत्त जी बैठे हो कह रहे नहीं

0: आप बैठिए, मैं ये शॉट ले रहा हूँ, ये वो उतनी रेस्पेक्ट देते थे अपने डायरेक्टर्स को।
1: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
0: नहीं, मैं तो यू नो ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए। अगर कोई गलत ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं। एक चीज होती है फिल्मों में, उसको कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी, तो वो हमको लेनी पड़ती है।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा।
1: देव साहब के साथ में कैसी ड्यूटी थी आप?
0: देव साहब के साथ क्योंकि पहले वो सीआईडी में थे, तो मेरा उनका बहुत अच्छा एक वो भी अगेन ही वाज अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत ही वाज नॉट अ टॉकेटिव पर्सन, मगर वेरी नाइस, वेरी डिसेंट, और बहुत अच्छा था उनके साथ।
1: उनके साथ कोई यादगार संस्मरण आपका किसी फिल्म का?
0: हाँ, एक बार हम उनकी प्रोडक्शन थी काला बाजार नवकेतन की, उसकी शूटिंग चल रही थी ऊटी में, तो यूनिट होटल से कुछ डेढ़ घंटे की ड्राइव थी दूर लोग के आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो यूनिट पहले जा चुका था, तो देव मैं और मेरी सिस्टर थी और मेरी हेयर ड्रेसर थी, हम जा रहे थे। देव ने कहा मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ, बोला ठीक है। हो एक आधे घंटे के बाद देव कहने लगे, फॉग आने लगी पहाड़ियों में, तो कहने लगे वहीदा मुझे दिख नहीं रहा है। मैंने कहा क्या मतलब आपका दिख नहीं रहा, क्योंकि पहले कभी मैंने उनको देखा नहीं चश्मा पहनते हुए। नहीं, एक तो फॉग है। मैंने कहा हाँ फॉग तो है, मगर ये क्या मतलब आपका दिख रहा है? तो बोले मैं चश्मा लगा था। तो फिर मैंने कहा आपने चश्मा क्यों नहीं लगाया? तो बोले जी मैं अपने कमरे में भूल आया। तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो बोले ऐसा करो मैं गाड़ी रोकता हूँ, तुम आगे बैठो और अपनी दीदी और हेडरेसर को पीछे बैठने दो, और तुम मुझे बताते रहना राइट में लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह, मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है, और वो जो ट्रक्स आ रही हैं। तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा, आहिस्ता चलाई है और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुँचे तो एक घंटा देर पहुँचे, तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुँचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा, विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुँच गए। तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं, कोई गाना याद करिए आप?
0: खोया खोया चांद।

0: वेदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए। वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना था?
1: आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था वो गाने में, उस म्यूजिक में, उसके लिरिक्स में और पिक्चराइजेशन में इतना उभर के आया, तो वो एकदम परफेक्ट था। तो चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, कुछ खंडर थे वहाँ पर, वो ऊंची सी दीवार थी, कुछ 6-7 फुट की और ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थी, और बीच में एक गैप था। तो वो कहने लगे, आप इतनी खुश और इतनी, मतलब लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएँ तो मर जाएँ, मगर खुश हैं। तो गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। तो मुझे थोड़ी कभी कभी हाइट से वर्टिगो सा होता है। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा टूटे हुए पत्थर, खंडर, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो ज़रूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज़्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है? तो बोले 2-4 बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना। मैंने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, पैर फिसलेगा तो फिसलेगा। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: गाइड की पूरी बात कर रहे हैं तो भी कम है, उसमें बहुत सारे दृश्य एक से बढ़कर एक हैं। वैला जी, उसमें आपने रोजी का एक करेक्टर किया था, और उस दौर में विमेन लिप की बात अगर हम कर रहे हैं या नारी की मुक्ति की बात करें, इस तरह के आंदोलनों का नाम भी शायद लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन रूसी एक ऐसा करेक्टर जिसने उस स्त्री की जो एक परंपरागत इमेज थी, ट्रेडिशनल इमेज, उसको तोड़ा उसने। वो विद्रोही उसमें रिबेलियस है। तो अमूमन इस तरह के खतरे लेने से जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ डरते हैं कि इससे उनकी इमेज पर फर्क पड़ेगा, पता नहीं पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी।
1: ये क्या हुआ, जब मैं फिल्मों में आई, मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो भी रोल हो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हो सकता हमारी फैमिली में कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं था, परफॉर्मेंस से मेरा मतलब था, क्योंकि आजकल भी लोग पूछते हैं आपने CID का रोल कैसे किया, वो तो वैम्प का रोल था। फिर मैं कहती हूँ वो वैम्प का रोल नहीं था। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से वैम्प वो होती है जो इंटेंशनली किसी का बुरा चाहती है। वो कैरेक्टर वैसा नहीं, तो वो फंसी हुई थी, एक गरीब लड़की थी किसी के चुंगल में, उनके कहने पे जो भी कर रही है वो कर रही थी। रोजी का कैरेक्टर रोल लिया, मेरे दूसरे डायरेक्टर्स उन्होंने कहा आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं। मैंने कहा क्यों? तो बोले एक तो रोजी नाम है, और पहले सीन में ये दिखाया जाता है कि आप शादीशुदा औरत हैं, उसके बाद जाके आपका राजू से इश्क होता है, वॉट एवर, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है। फिर मैंने कहा भाई मैं नहीं मानती नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, एक नॉवल लिखी गई है। और ये नहीं कि अक्सर फिल्मी कहानियां क्या होती हैं, दिमाग में जिस आर्टिस्ट को लेने वाले हैं उनके पर्सनालिटी के हिसाब से लिखी जाती है, ये एक प्रोफेशनल ऑथर ने लिखी, उसको हम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मेरी बन रही थी फिल्म नीलकमल, उसमें मेरा नाम था सीता और मनोज का नाम था मेरे ख्याल से राम, ऑब्वियसली। तो वो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्ट किया, आपने ये रोजी का रोल किया, मेरी तो आपने बर्बादी कर दी, ये पिक्चर मेरी नहीं चलेगी, तो सीता का क्या होगा? तो मैंने कहा एक बात बताइए, उसमें राजकुमार का एक कैरेक्टर है जो पिछले जन्म में हम दोनों का बड़ा प्यार है, तो इस जन्म में आते रहते मैं एज ए स्लीप वॉकर चली जाती हूँ, तो वो सीता का राम पिछले जन्म में कहाँ चला गया, जो तो इस जन्म में आप कह रहे हैं।

0: कंप्लीट कस्म का रोल था, उसमें वेरिएशन बहुत थे इमोशंस के, कि एक तवायफ है, उसको किडनैप किया जाता है, फिर उसे शादी होती है, फिर वो माँ बनती है, कैसे उसमें चेंज आता है, कैसे वो अपने हस्बैंड को, डाकू को समझाती कि भाई छोड़ दो इन सब चीज़ों को, सरेंडर कर दो बच्चे की खातिर. सो द इमोशंस के जो वेरिएशन और अप्स एंड डाउन्स थे, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था. मुझे लगा शायद उसमें अवार्ड मिलने का चांस है, वो नहीं हुआ. इट्स ओके.
1: डाकू की समस्या पर वो फिल्म थी, सुनील दत्त साहब के साथ में
0: हाँ
1: आपने
0: जी.
1: किया, और सुनील दत्त साहब के साथ में आपने खूब दौरे वाले भी किए, फौजियों के साथ में बीच में जाकर के खूब काम किया, उनके साथ में, उनकी ट्रूप के साथ में जाती
0: हाँ
1: रही
0: जी,
1: ना
0: हाँ जी.
1: इंडिया।
0: तो उनका था एक अजंता आर्ट्स ट्रूप एंटरटेनमेंट समथिंग ऐसे तरह का. तो हम लद्दाख गए थे उनके साथ, और रास्ते में जो भी सिलीगुड़ी जहाँ भी जाते जवान थे वहाँ, बहुत अच्छा भी लगता था उन लोगों को देखकर, खुशी भी होती थी, दुख भी होता था, और काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हमने किए. फिर बांग्लादेश वॉर के बाद वहाँ भी गए थे ट्रूप को एंटरटेन करने के लिए.
1: तो ऐसा है कि कुछ देर पहले ही हमने मुझे जीने दो की बात की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा संगीत है, उसका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो।
0: उसमें जयदेव जी का म्यूजिक था.

0: एक और आपकी बड़ी ऑफ बीट फिल्म रही है, बड़ी खूबसूरत फिल्म रही है, सुनील दत्त साहब ने उसका निर्माण किया, जयदेव साहब का उसमें संगीत था, रेशमा उषे और अमिताभ बच्चन साहब खासतौर से, जो अपने खूबसूरत और गहरी दानेदार आवाज के लिए जाने जाते हैं, असरदार आवाज के लिए, जो उनके डायलॉग सुनने जाते हैं उसमें उनको गूंगा बना दिया गया था। और इसमें जयवंत भी थे आपके साथ में, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रेशमा शेरा भी बनी, उसके आउटडोर्स खासकर बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि हमको टेंटों में रहना पड़ता था और जैसलमेर से कुछ 80 किलोमीटर आगे रेगिस्तान में, मगर बड़ा मज़ा आया। और हाँ, मैं मानती हूँ, मगर उस वक्त अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, और उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी साथ हिंदुस्तानी, ये उनकी दूसरी फिल्म थी, और सब उस वक्त सोचते थे कि इसमें अमिताभ बच्चन आगे क्या होगा इनका, क्योंकि एक तो माशाल्लाह बहुत लंबे हैं, और सब कहते थे

0: थोड़े ऑकवर्ड से लगते हैं उनकी लंबाई की वजह से। तो मैंने कहा सुनील साहब भी बड़े लंबे हैं, वो भी उनको 6 फुट तो हैं होंगे ही। और जब पैकअप हो जाता था, कुछ करने को नहीं, रेगिस्तान में टेंटों में रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो उस वक्त अमिताभ ये जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा काम है, रोज़ ढोलकी बजा के गाया करते थे। मगर उनके एक दो शॉट देखे मैंने रेशमा शेरा में, तो जब सुनील जा रहे हैं तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो वो भागते हैं, तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था बैठे गप्पे मार रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, इस फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है। अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन, तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसके बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग हमें इन रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से विल डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
1: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा, और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है, हाँ। और उनकी माँ का किरदार भी अदा किया।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको, वो जो शुरू में वो जो बात हाँ, होती थी उस समय, बाद में तो सब कुछ बदल ही गया पूरा, उन्होंने साबित भी कर दिखाया, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
0: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव, जो भी कहिए, उनके बच्चे जया, सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं, उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही अच्छा है उनका।
1: दिलचस्प सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे। एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन, मतलब अमिताभ की वालदा, सेट पे बैठी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई जहाँ आंटी बैठी थी, तो मैंने कहा आंटी आप क्यों नहीं थोड़ा बाहर घुमाइए, कितनी देर से गर्मी में कहाँ बैठी हैं आप सेट पे, आप ज़रा बाहर ताज़ी हवा खाइए। फिर कह लेंगे तुम पता है मुझे क्यों बाहर भेज रहे हो। मैंने कहा क्यों, तुम कस के मार तो मैंने कहा देखिए अगर मैं एक कस के मारूं तो वो शॉट ख़त्म हो जाएगा, अगर गलत ठीक नहीं हुआ वो डायरेक्टर कहेंगे और एक टेक फिर 6 तमाचे पड़ेंगे उसको। तो हंसने लगी, बोले नहीं नहीं अच्छा मैं जाती हूँ। फिर मैंने सुनील दत्त को कहा, डायरेक्टर को, देखिए अगर तमाचा पड़ने से पहले कोई गलत पोजीशन मेरी या डायलॉग गलत बोल दिया कुछ भी हो तो पहले काट दीजिए, बेचारे को क्यों इतने तमाचे मारूं, पहले तो आंटी ने मुझे कॉन्शियस कर दिया क्या कस के नहीं मारे, बाद में एक दिया मैंने बहुत कस के।
1: यहाँ हम रेशमा और शेरा, जिसका संगीत बहुत ही खूबसूरत है, जयदेव साहब ने इसका बहुत ही दिल को छू लेने वाला संगीत दिया है, कोई गाना हो जाए रेशमा और शेरा का।
0: रेशमा कैसा, वो एक मीठी सी चुबन, एक हाँ बहुत मीठा गाना, बहुत अच्छा है।
2: एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन,

0: वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, बियॉन्ड इट्स टाइम, और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देके ये नहीं लगा कि ये बुरी औरत है, यू नो, जस्टिफिकेशन था. और एक था, दे वर नॉर्मल कैरेक्टर्स, जैसे कि मार्को का या राजू का या रोजी का, कि हर इंसान हर वक्त कोई सेंट तो होता नहीं है और ना ही पूरा बुरा होता है. और एक पॉइंट आता है लाइफ में, सिर्फ जो अपने आप के लिए जीना चाहते हैं, जो भी चीज़ हम अपने लिए करना चाहते हैं. तो रोजी का पैशन था डांस करना. वो उसको मार्को से नहीं मिलता, तो उसको एंकरेजमेंट राजू से मिलता है. फिर एक पॉइंट आता है जहाँ सडनली राजू सेल्फिश हो जाता है, कि वो एक जगह एक सीन कहते हैं, अभी बस मैं रिटायर होना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. राजू कहते हैं, नहीं अभी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने हैं, अभी जल्दी क्या है. ये कहती है, नहीं मुझे बच्चे चाहिए. अरे बच्चे भी हो जाएंगे, इसकी क्या. उस वक्त राजू सेल्फिश हो जाता है, उसको एक अय्याशी की आदत पड़ जाती है, पत्ते खेलना, शराब पीना. वो कहते हैं, कहाँ से जिम्मेदारी लें शादी ये बच्चों की. सो हर एक मौके पे, कभी मार्को सेल्फिश हो गया था तो अपने पैशन में, तो उसने अपनी बीवी को भूल जाता है. अब रोजी पैशनेटली डांसर बनना चाहती, वो बन जाती है, फिर कहती है, नाउ आई वांट टू गेट सेटल्ड. फिर उस वक्त राजू कहते हैं, नहीं अभी कहाँ सेटल होंगे. तो ये चीज़ जो थी उसको बड़े डेलिकेट ये था. सो यू नेवर फील जब आप मूवी देखते हैं कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ए बैड पर्सन. नो, नोबडी इज बैड एंड नोबडी इज गुड.
0: देव साहब के साथ में, और जो आपके क्योंकि वो भी बड़े सदाबहार अभिनेता रहे हैं और उनके साथ में आपकी बड़ी यादगार फिल्में रही हैं, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उनके बारे में कुछ और. आपकी मन की बातें कुछ और बताइए उनके बारे में, कैसा है उनके साथ में केमिस्ट्री थी आपकी खास उससे. एक होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के बीच में एक वही ट्यूनिंग वाली बात है, फिर एक इंसान के रूप में भी हमारे रिश्ते होते हैं. कैसे थे वो?
1: जैसे मैंने कहा, वो भी बड़े टॉकेटिव नहीं, उनको बात करने बाहर निकालना पड़ता था सवाल कर करके. तो हम प्रेम पुजारी जब सुनाने आए, तो वो उनकी पहली डायरेक्टोरियल मूवी थी, तो कहने लगे, मैं पहली बार डायरेक्ट कर रहा हूँ तो तुमको तो करना ही पड़ेगा. मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कर लेंगे.
0: इतना हक
1: हाँ हक जता रहे थे जैसे. तो बड़े कोऑपरेटिव, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती. जब हम यूरोप गए थे प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए, लंदन, स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना वगैरह, तो वो काफ़ी केयर लेते थे बहुत अच्छी तरह से. तो ही इज़ वेरी नाइस एज अ प्रोड्यूसर,
0: एनर्जी से भरे हुए.

0: जी साहब, मैं तो उनको मजाक में एवर रेडी बैटरी बुलाती हूँ, क्योंकि वो कभी थके कभी, मैं तो कहती भाई मैं थक गई अभी पैकअप कर लें, तो वो तो कभी नहीं कहते थे। वो उतने, जब खासकर जब वो प्रेम पुजारी डायरेक्ट कर रहे थे तो शॉट देते थे, शॉट अरेंज किया, ओके हो गया, फिर कैमरामैन को कहते थे ये शॉट है ऐसा है, फिर भाग दौड़, फिर वो पसीना पसीना हो जाते थे तो ऊपर कमरे में मेकअप रूम में जाते थे, फिर ताज़ी शर्ट पहन के आते थे ताकि पसीने वाली शर्ट नहीं हो शॉट के लिए। फिर वो हुआ, फिर उसको सुखाते थे, वो कहते थे, मैं कहते देव आप हमेशा ऑल द टाइम यूर फुल ऑफ एनर्जी, सो यू आई विल कॉल यू एवर रेडी बैटरी।
1: अभी भी उनके अंदर जैसे एक नौजवान होता है,
0: बिल्कुल।
1: और वो फिल्में बनाए जा रहे हैं, बेशक वो सफलता मिले ना मिले, लेकिन वो कारवां नहीं रुका है, उनका वो जज्बा
0: बिल्कुल।
1: अभी भी वैसे ही है और फिल्में बनाए जा रहे हैं। तो अभी उनसे कभी फोन वोन पे आपकी बातचीत होती, मुलाकात होती है?
0: नहीं, तो एक बार फिल्म खत्म हो जाती है हम कभी एक दूसरे से मिलते ही नहीं किसी से भी, क्योंकि सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे जो फिल्मों में दोस्त हैं वो एक्सेप्ट नंदा मेरी
1: हाँ जी,
0: बेस्ट फ्रेंड है, और उसके बाद सिवाय काला बाजार के बाद हमने कोई काम ही नहीं किया, मगर 40-45 साल की दोस्ती रही है। सलीम साहब हैं, यश जौहर हैं, जो जौहर थे बेचारे, उनसे, उनकी फैमिली से, वैसे भी काम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीने दो में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
2: दोस्तों वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की DG और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, SP की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें NTA के DG स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज़ बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताज़ा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. Addressing the media in New Delhi, External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
5: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
4: Prime Minister

भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक शंकर महादेवन व साथियों की आवाज़ों में गाया ये कुछ कुछ होता है फिल्म से भक्ति रचना।

अभी आपने सुना यशोदास की आवाज में गाया ये भक्ति रचना भजन फिल्मों से। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

माता की इस भेंट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम भजन फिल्मों से अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भजन फिल्मों से FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज जानकारी का विषय रहेगा सैर सपाटा, और आज हम आपको सैर सपाटा करवाएंगे उज्जैन नगरी की।

युवा मंच कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे प्यारे युवा साथियों को, आपकी दोस्त वर्षा टोच का प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो

दोस्तों, शाम का ठीक वही समय 5:30 का, और हम लेकर आ गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच, और वो भी नए अंदाज में। जैसा कि आपको विदित ही है कि हम आजकल युवा मंच कार्यक्रम आपके लिए हर रोज नए अंदाज में लेकर आते हैं, तो आज हम आपको करवाएंगे सैर सपाटा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आज है मंगलवार और आज का दिन होता है सैर सपाटे का। साथियों, हमारे कुछ युवा साथी स्टूडेंट्स होते हैं तो कुछ रोज़गार की तलाश में लगे होते हैं, और कुछ हमारे युवा साथी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में हमारे युवा साथियों के पास कहाँ इतना घूमने फिरने का समय होता है, क्योंकि वो तो बिजी होते हैं अपनी स्टडी करने में। इसलिए दोस्तों, आपको घर बैठे बिठाए हम आज सैर करवाएंगे धार्मिक नगरी उज्जैन की, और इसमें आपको हम बिना खर्च के सैर सपाटा करवाएंगे। और ये सैर सपाटा आप करेंगे हर मंगलवार, कहीं ना कहीं हम आपको घुमाने लेकर जाएंगे कार्यक्रम युवा मंच के ज़रिए। तो आज आप मेरे साथ यानी वर्षा टोच के साथ सैर करेंगे धार्मिक नगरी उज्जैन की। लेकिन सैर सपाटा करने से पहले मैं अपने युवा साथियों का मूड फ्रेश कर दूं इस प्यारे से म्यूज़िकल ब्रेक के साथ।

0: युवा साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये म्यूजिकल ट्रैक पसंद आया होगा। और युवा मंच कार्यक्रम में समय आप सभी श्रोता और हमारे युवा साथी सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त वर्षा कटोच, और बात हो रही है उज्जैन नगरी की। जी हाँ युवा साथियों, तो चलिए मेरे साथ। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक अत्यंत प्राचीन, ऐतिहासिक और पवित्र शहर है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे महाकाल की नगरी और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। पौराणिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध इस नगरी को प्राचीन काल में अवंतिका, उज्जैनी और कनकश्रृंगा जैसे नामों से जाना जाता था, और ये महान सम्राट विक्रमादित्य के साम्राज्य की राजधानी थी। युवा साथियों, कहीं जाइएगा मत, फौरन हाजिर होंगे आपकी सेवा में इस ब्रेक के बाद।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

जी हाँ युवा साथियों, कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आपका स्वागत है। और आज आप सैर कर रहे हैं मेरे साथ उज्जैन नगरी की। उज्जैन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का केंद्र माना जाता है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती और हाल ही में बना भव्य श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। दूसरी अगर हम बात करें काल भैरव मंदिर की, तो इस अनोखे मंदिर में भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है, जिन्हें मुख्य रूप से मदिरा का भोग लगाया जाता है। और तीसरी अगर हम प्रमुख बात करें हरसिद्धि मंदिर की, तो ये देश के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां माता सती की कोहनी गिरी थी। जी हां युवा साथियों, ऐसे ही अगर हम आश्रमों की बात करें जो कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक हैं, तो सबसे पहले महर्षि संदीपनी आश्रम की बात करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। भृतहरि गुफाएं जो हैं, अगर उनकी हम बात करें तो राजा भृतहरि की तपस्या स्थली के रूप में जानी जाने वाली ये गुफाएं क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित हैं। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर फौरन हाजिर होते हैं। आपकी सेवा में कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो, वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100, बाकी एवरेज तू है सैवेज, बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन, बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

कार्यक्रम में फिर से आप सभी युवा साथियों का हम स्वागत करते हैं। अब हम बात करते हैं वहाँ के खान पान की। जी हाँ युवा साथियों, उज्जैन अपने लजीज और तीखे मालवी व्यंजनों के लिए बहुत मशहूर है। दाल वाफला की अगर हम बात करें, घी में डूबा हुआ ये वाफला यहाँ का सबसे लोकप्रिय भोजन है। और स्ट्रीट फूड की अगर हम बात करें तो यहाँ के पोहा, जलेबी, खोए की जलेबी, कचौड़ी और जैन नमकीन काफ़ी प्रसिद्ध है। मिठाइयों की अगर हम दोस्तों बात करें तो महाकाल मंदिर का बेसन का लड्डू प्रसाद, मावा, बर्फी, रस मलाई यहाँ बेहद पसंद की जाती है। और ख़रीदारी की अगर हम बात करें युवा साथियों, तो यदि आप उज्जैन जा रहे हैं तो इन प्रसिद्ध पारंपरिक चीज़ों की ख़रीदारी आप अवश्य कीजिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर हाजिर होते हैं आपकी सेवा में सैर सपाटे के लिए।

युवा साथियों, अगर आपके जाने का मन बन जाए तो हम आपको बता दें कि जाने का सही समय अक्टूबर से मार्च के बीच सर्दियों का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे उत्तम है। तो युवा साथियों, घड़ी की सुइयां अब ज़्यादा बोलने की अनुमति दे नहीं रही हैं, तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हर इंसान से होती हैं। ऐसे में कार्यक्रम प्रस्तुति में हमसे भी कोई गलती हुई हो तो आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, और मान लेने से बड़ी बात और कोई नहीं होती। जी हाँ युवा साथियों, चलते चलते अब एक और बात कहना चाहेंगे कि मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में और साथ ही साथ आपको लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

सरण समय रहेगा कार्यक्रम मौजा ग्राइंडिया का। इसमें आज के दिन आप सुना करते हैं हास्य नाटिका नोखे लोग नोखियां गल्ला। अनेक रंगों से भरपूर कार्यक्रम सब रस रात्रि 8 बजे सुनवाया जाएगा। देशगान हर रोज की तरह सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायिका सुमन कल्याणपुर पर द्वारा गाए हुए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। रात्रि 9:30 से लेकर रात्रि 10:30 तक आप सुनेंगे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए जाएंगे रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंतर्गत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:07 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम के प्रसारण में शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, शाम 7:10 पर विशेष कार्यक्रम, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थे विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्र से रिले किए जाएंगे।

भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को तय की है। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि लाहौल स्पीति में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति केलंग और चंबा जिला के पांगी सब डिवीजन की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 18 अक्टूबर को होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायतों की पहली बैठक में प्रधानों द्वारा हाल ही में निर्वाचित वार्ड सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी। सांसद अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपति द्वारा असाधारण साहस, पराक्रम और राष्ट्र सेवा के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश के 6 वीर सपूतों को बधाई दी है। उन्होंने आज हमीरपुर में कहा कि हिमाचल देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और छोटा राज्य होने के बावजूद देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए यहां के युवा हमेशा अग्रणी रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मान केवल संबंधित सैनिकों और उनके परिवारों का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन शहर के माल रोड पर आयोजित महानाटी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान रंग बिरंगे पारंपरिक हिमाचली परिधानों में 320

0: इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस महानाटी का थीम माँ यानी मदर्स अगेंस्ट एडिक्शन था। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस मौके पर महिलाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई। प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने ये रोक भाजपा के दो पार्षदों द्वारा चंबा सदर के वर्तमान विधायक के इस चुनाव में वोट डालने पर आपत्ति जताए जाने के बाद लगाई है। अदालत ने इस संबंध में चंबा जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित की है। चंबा के SDM प्रियांशु खाती ने कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी।
1: इसी मुद्दे को लेके यहाँ अपोजिट पार्टी जो थी वो माननीय हाईकोर्ट में गई है एंड हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली इसके ऑर्डर पे स्टे कर दिया है एंड इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 15th को रखी गई। तो उसके बाद ही इसमें क्या निर्णय आता है हाईकोर्ट का, अगर उसके बाद ही हम इसमें कुछ कार्रवाई कर सकते। इसमें बेसिकली हमसे रिप्लाई फाइल करने को बोला है, तो इसमें एक रिप्लाई हमारी तरफ से फाइल होगा। उस रिप्लाई के बाद ऊपर से डायरेक्शन क्या आती है, जैसी डायरेक्शन आएंगे उनको फॉलो किया जाएगा।
0: हमीरपुर की उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने जिला के सभी प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए एहतियात के तौर पर आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। मॉनसून की तैयारियों को लेकर एक बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को आपदा की आशंका वाले स्थान चिन्हित करने और मशीनरी व अन्य संसाधन तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नालों और नालियों की सफाई करने व खतरनाक पेड़ों को हटाने को भी कहा। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिले के समग्र आर्थिक विकास के लिए बैंकों और विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिला स्तरीय सलाहकार व समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बैंकों का सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी बैंकों को ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने स्वरोजगार योजनाओं, किसान क्रेडिट कार्ड और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। प्रदेश सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। सिरमौर जिला की नाहन तहसील के ग्राम धौण के राजमिस्त्री गोपाल सिंह की दो बेटियों को बोर्ड की इस योजना के तहत 72,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इस राशि से इन दोनों बहनों ने स्नातक की पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
2: धौण गांव सिरमौर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं और हमें श्रमिक कल्याण बोर्ड से 36,000 की दो किस्तें मिली है, जिससे मेरी पढ़ाई में काफी मदद हुई है और मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है।
0: केंद्र सरकार के युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लेकर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कांगड़ा जिला के 4 युवाओं का चयन हुआ है। इनमें तमन्ना राहुल, दीपिका राणा और शगुन चौधरी शामिल हैं। ये युवा 14 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में कांगड़ा जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी करवाया जाएगा लोकगीतों के साथ।

0: इस कार्यक्रम दे प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुना करदे सारे श्रोतियां जो पंच दी तरफ ते राम राम कने आज टियाले पर मेरे कन्ने ने चुन्नी ताई जी तुंजो भी राम राम
2: राम राम पंच जी दो हाथ जोड़े के राम राम कने सारे टियाले पर बैठे हो अपने घरां च बैठे हो जेड़े बाहर बैठे हो तिन सारे जो साड़ी दुनी दी बड़ी दो हाथ जोड़ के राम राम है
1: जी। तो चुन्नी ताई जी राम राम तो ही कने हां जेड़े से अपने श्रोतियां ने जेड़ी से गलबात करदे ने और दिखा गर्मी दा मौसम है और गर्मी जेड़ी से धुप्पां खूब हो करदियां दिन ता हाँ अपने खेतरां च बाहर नहीं निकली पा करदे और सिंजा ब्यागा ही जेड़ा सा अपने काम कार जेड़ी से खेती बाड़ी दे निपटा करदे ने है ना। ता इस विच दिखा तो हाँ हाँ दे जेड़े खेती बाड़ी दे काम कार न उस विच हाँ अजकल साड़ी जेड़ी मुख्य फसल है धान दी तिस दी पनीरी लगाने दा जेड़ा सा काम जोरा शोरा च हाँ दे किसान भाई हैं चलाया कन्ने कन्ने हाँ दे कुती कुती जेड़ा सा मक्की दी बिजाई भी जेड़ी सा साड़े किसान भाई हैं करीती हो है ना और कुत्थी जेड़ा सा हाँ नियाल करा दे कि बारिश अच्छी बारिश जेड़ी सा हुई है तो जालू अच्छी बारिश हुई है नी तो साड़ी जेड़ी जमीन है तिस विच अच्छी अगर नमी हो जाती है तो हाँ मक्की दी फसल भी जेड़ी सा कन्ने कन्ने लगानी है ना। पर यह कम कार हाँ सारे जेड़े से सिंजा ब्यागा ही अपने निपटाने न क्योंकि दिन है जेड़ी से दोपहर है बड़ी ज़्यादा गर्मी जेड़ी से हो करती है और इस गर्मी ते हाँ जेड़े से हाँ बचना है और खासकर जेड़े अपने साढ़े बुजुर्ग न या फिर साढ़े बच्चे न उन्हों का भी ध्यान जेड़े से गर्मी के मौसम च रखना है और कन्ने कन्ने अपना जेड़ा पशुधन है अहाँ के जेड़े होर अहाँ कई कम कार छोटे मोटे कम कार लगाए होंगे ने तिथू भी जेड़े से ध्यान रखना कन्ने सावधानी जेड़ी से बरतनी है ना।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: और चुनी ताई जी दिखा इन्हों दिनों गर्मी के मौसम च पर्यटक भी साढ़े क्षेत्र जेड़े से आओ करते हैं और खूब सारे जेड़े से मौज मस्ती करा करते हैं साढ़े
2: रोजगार होता है कने आर्थिकी बता दी साढ़े जेड़े धर्मशाला दे आने या जेड़े पर्वतीय इलाके हैं तिना दी जेड़ी आर्थिकी जेड़ी से बता दी है
1: बिल्कुल बिल्कुल और इतने नज़ारे लिया करते हैं साढ़े पर्यटक भी बार तिना कने आशा करनी है कि साढ़े जेड़ी प्रदेश की जेड़ी सुंदरता है उस जो बनाई रखन स्वच्छता बनाई रखन और इस जेड़ी जेड़ा सहयोग करन ताकि इतू अहाँ जेड़े जो भी इसकी सुंदरता है अहाँ पर्यावरण है
2: जियां प्लास्टिक दा उपयोग ना करन या फिर और कुछ जियां ज्यादा धुएं वाली गड्डियां ना लेन इन्हां दो गल्लां जो भी हां अपनांगे तां साडा धर्मशाला या साडा हिमाचल और भी खूबसूरत हो सकदा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल हां दे जो भी कचरा है तिस जो अगर हां अपना अच्छी तरह निपटान करके अपने यानी कि उपरी क्षेत्र च हां ट्रैक पर जांदे न तां उत्थों दे जेड़ा से अपने बैगां च जेड़े से
2: तिस
1: वापस लेन ताकि उन्हां दा उचित निपटान जेड़ा से हो सके और साडे जेड़ी इन्हां पहाड़ां दी सुंदरता से बनी रहे है ना।
2: हां जी
1: और चुनी जी दसा तो हाँ अज होर क्या जानकारी हाँ दे किसान भाई वास्ते लेके आए ना अज
2: पंच जी दसी दई है कि अज जड़ी जानकारी हाँ तुहाड़े कन्ने सांझा करनी है सह है पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ए साड़ी भारत सरकार दी सह योजना है जेड़े सारे ग्रामीण क्षेत्रां जो बिजली दी लगातार आपूर्ति करने वास्ते शुरू कीती हुई है।
1: अच्छा जी।
2: ए योजना नवंबर 2014 ते साड़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू कीती गई थी। इस योजना दे किसान भाईओ कन्ने पैणो साड़े ग्रां च कृषि कन्ने गैर कृषि जेड़े उपभोक्ता है उन्हां जो आपूर्ति प्रदान करना है कन्ने उन्हां जो 24 घंटे का 7 दिन बगैर किसी रुकावट दे ये सुविधा देती जानी है। श्रोतियो ये योजना इस योजना के तहत जेड़े भी लाभार्थी हैं चाहे से ग्राएं दे होन या फिर जेड़े विशेष राज्य हैं जियां कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश कने उत्तराखंड जेड़े राज्य होंदे हैं जो जेड़े कि विशेष श्रेणी का जिन्हें जो राज्य का दर्जा दिता गया है उन्हां च 85% अनुदान का प्रावधान भी है।
1: अच्छा जी।
2: जेड़े बाकी राज्य हैं उन्हां च 60% अनुदान करने का प्रावधान रखे है।
1: जी बड़ी अच्छी गल है साढ़े दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जेड़े इसे साढ़े पहाड़ी क्षेत्र ने उन्हें जो जेड़े से विशेष ध्यान रखे है साड़ी केंद्र सरकार ने और कन्ने कन्ने ही इस बीच सांझे जेड़े से उपदान मिला करदा तां हां इस योजना का भी जरूर फायदा जेड़ा से लेना और लिया भी करदे ने है ना।
2: हाँ जी हाँ जी। कन्ने जेड़े सारे ग्रां हैं कन्ने घर हैं उन्हें विद्युतीकरण कराना इस योजना के लाभ हैं कन्ने कृषि उपज वृद्धि करना मतलब कृषि उपज वास्ते जियां कोई थ्रैशर लगा दे कुछ लगा उन्हें जो बिजली जेड़ी है मुफ्त मतलब घट उस पर अनुदान पर देनी है। छोटे कने घरेलू उद्योग जेडे लगा दे साडे ग्राएं दे लोग उन्हां जो रोजगार दे नए अवसर प्रदान करना। स्वास्थ्य जियां हॉस्पिटल हो ये, शिक्षा एजुकेशन हो ये, बैंकिंग दे सेवा च सुधार करना, रेडियो टेलीफोन टेलीविजन इंटरनेट जियां वो हैं, साइबर कैफे हैं या मोबाइल दे
1: बोलने दा मतलब है कि सारी सुविधाएं जेडी संजो बिजली दे माध्यम ते ही मिलदी
2: हैं, चाहे स्कूल हो, पंचायत हो, या अस्पताल हो, या पुलिस स्टेशन हो, इन्हां जगह चो बिजली दे सुचारू रूप से आसानी ने इसा योजना का उद्देश्य है।
1: जी जी, यानी कि अहां दे घर ग्रां विच जितनी भी सुविधा न से बिजली दे माध्यम कन्ने ही चलदी, और अगर अहां दे घर ग्रां विच जेड़े से सुचारू रूप कन्ने 24 घंटे बिजली अगर उपलब्ध होंदी है तां अहां जो ये सारी ही सुविधा जेड़ी से अहां जो मिलनी है न।
2: कन इसा योजना दी कि व्यक्तिगत आवेदन दा प्रावधान नहीं है, जियां एक ग्रां है
1: अच्छा
2: योजना है सरकारी योजना उसा यो मिलना है, एक मतलब एक व्यक्तिगत आदमी यो नहीं मिलना है, जी पूरा ग्रां ले लेना
1: तेन। हां जी जी,
2: इसा योजना दे अगर तुहानू जो बिजली कनेक्शन दी जरूरत है तां तुहानू अपने स्थानीय बिजली प्रदाता दे दफ्तर जाए के संपर्क करना पौना, कन इसा योजना बारे गल करना पौनी।
1: जी जी, यानी कि कुल मिलाई के जेड़े से पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जेड़ी से साडे देश दे प्रदेश दे और घर ग्राम विच जेड़ी से सुलभ और लगातार 24 घंटे जेड़ी से बिजली उपलब्ध कराना इस योजना दा मुख्य उद्देश्य है ना। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जानकारी चुनी ताई जी तुहां साडे स्रोतियां तक पहुंचाई है, और आशा करनी है कि इस योजना दा जेड़ा सा फायदा जेड़ा सा संजो मिला करता है, और अगे भी अगर कोई कुछ एक क्षेत्र जेड़े से छुट्टी गए तो उन्हें जो भी जेड़ा से इस योजना दा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना दा फायदा जेड़ा से जरूर लेना चाहिए।
2: हाँ जी,
1: तो इसके बाद हुण चलना माता दी भेंट और सुननी है प्यारा दे लोक भजन।

0: जी तो श्रोताओं, हाँ प्यारी दी जिहड़े लोक भजन तां सुणिया और आशा करनी कि सारे पसंद होया आया होना, क्योंकि ये लोक भजन जिहड़ा से बड़े मिठे
1: होंगे।
0: संगीत च जिहड़ा से गाया था
1: हाँ जी,
0: प्रताप चंद होरां ने, और बड़ी अच्छी जिहड़ी इसे हाँ आनंद जिहड़ा से सिंझा दी बेला भी लिया इस लोक भजन दा, और अहाँ दे जिहड़े मंदिर ने, दिवाले ने, शिवाले ने, तिथु भी जिहड़ा से खूब सिंझा दी बेला घर ग्रां दे विच जिहड़ी से रौनक लगदी है, और खूब लोक भजन जिहड़े से अहाँ दे मंदिरां च इस वेले जिहड़े से चलदे ने, है ना,
1: हाँ जी,
0: क्योंकि दिन भर दी जिहड़ी थकान हुंदी साढ़े किसान भाई दी, से जल्लू अहाँ अपने जिहड़े ग्रां दे मंदिर हुंदे तिथु जाए के जिहड़े से थकान जिहड़ी से हटांदे और लोक भजन गाए के जिहड़ा से खूब
1: आनंद लेंदे हैं।
0: आनंद लेंदे ने, और इसके बाद वहाँ हूँ फिर से चलना जानकारी दी तरफ, और जानकारी च अहाँ उन्नत किसान अश्वनी होरा दी जिहड़ी है गलबात सुनदे ने।

0: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह अहां दे कृषि वैज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियां सोकी कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच एक उन्नत किसान अज अहां दे टियाले पर आए होए ने, करदे ने इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: जी अपना नाम दस्सा।
1: अश्विनी कुमार जी।
0: जी अश्विनी जी, घर कुतुं तुहां दे?
1: घर जी मेरे
0: पशु पालक भाइयें या अहां दे किसान साथियें जो तिन्ह दे व्यवसाय कन्ने कोई जड़ा सा तिन्ह जो जड़ा सा जानदा कन्ने अपने इलाके विच तिन्ह अपने इसी कम्मे कन्ने तिन्ह अपनी एक पहचान जड़ी से बनाई हो ना। किन्नी बकरियां पालियां तुहां?
1: भाजी पिछली बार मेरा थोड़ा फार्म तैयार नहीं होया हा।
0: हाँ।
1: तो मेरी कुछ बकरियां मर गई 5-7, पर मैं बीमा वगैरह कराया है तो मैं बची।
0: अच्छा,
1: पर इस बार फिर हुई 20 की बकरियां।
0: अच्छा,
1: बकरियां घट है तो बकरे ज्यादा है। तोता परी?
0: तोता परी।
1: हाँ जी, बीटल।
0: बीटल है ना।
1: हाँ जी।
0: लंबे कन्ना वाली है कि छोटे वाली?
1: हाँ जी, लंबे कन्ना वाली।
0: हाँ, एक तो होंगे नहीं है छोटे कन्ना वाली, इन्हें कई लंबे लंबे कन्न होंगे
1: भाई। लंबे कन्ना वाली दो दो डेढ़ किलो।

0: दस
1: अच्छा
0: बकरियां बीमा किता,
1: अच्छा
0: तो ओहदे च मेरियां मरियां भी तां पैसे दे दित्ते मैं उन्होंने।
1: चलो
0: हाँ
1: थोड़े बहुत मिली ये ना। बाकी जियां घरेलू स्तर पर इयां कुछ ऐसा आई गया तो आपूं भी लगा लैंदे होने टीके वगैरह है ना,
0: हुण तां थोड़ा नॉलेज भी होई गया ना,
1: है ना।
0: ज्यादा तां कांगड़े दे भी तुहानूं पता भी 100 बूटियां है, बंदा घिसदा फिरदा रहिंदा तां फिर पता लग जांदा
1: हाँ
0: क्या
1: जी
0: खुआना
1: हाँ
0: क्या नहीं खुआना
1: बिल्कुल हाँ जी
0: मौसम
1: हाँ
0: दे हिसाब नाल। नए
1: अच्छा
0: नए बंदे के तो मुश्किल हो जाते ना,
1: हाँ जी
0: धीरे धीरे धीरे पता लग जाता ये बीमारी चलनी है, ये बीमारी चलनी है, तो फिर 50 तां दवाइयां घर दे विच निकल जांदियां।
1: हाँ। बाकी कोई बकरी और कोई खास तो नहीं जी, कोई कि चीज कोई खुआने वाला होंगे जी जिससे तेनाली पाचन शक्ति वगैरह बनी रहा करना।
0: नहीं, ज्यादा नहीं कुछ भी।
1: अच्छा ये है कि बढ़िया दिन का घा पट्ठा जड़ा से
0: हाँ
1: होना
0: घा पट्ठा साफ सुथरी जगह हुए।
1: बहने तेने है ना,
0: हाँ जी हाँ जी
1: कन्नै पीने पानी खूब
0: पानी
1: जड़ा
0: पीने साफ हुए।
1: जी। तुहां जिक्र कीता कि इस वेले जड़ा तुहां वाल है ब्रीडर है सै क्वांटल दे लगभग या इस ती ज्यादा है
0: इससे
1: ना,
0: ज्यादा इस
1: सै मारा वगैरह तो नहीं
0: नहीं
1: पौंदा।
0: पाउंदा हमारा, वो तो बड़ा शरीफ है,
1: अच्छा
0: तुसीं बैठी जाओ पाँव उपर कुछ नहीं
1: अच्छा
0: बोलता,
1: हाँ तो इतना जियां जिसे बोलते हैं ताकतवर
0: बहुत
1: जैसे
0: ताकतवर है,
1: माड़ा मोटा था सा जियां
0: मारदा नहीं।
1: बंदा बे भी अंगला नहीं चली पोना ना।
0: हाँ बैठी जंदे बंदे, मैं ही बैठी जंदा।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो इसी ब्रीडर दिखना था बड़े दूर दूर जेड़े सा हाँ पशु
0: हाँ
1: पालक भाई होंगे होने
0: हाँ
1: हैं।
0: बंदे होंदे दूर, सलाह भी लेंदे बंदे जड़े
1: अच्छा
0: पालदे ने, सलाह भी लेंदे कि
1: हाँ
0: कियां रखनियां बकरियां क्या करना, तो सलाह तो देना पौंदी फिर।
1: लिखा है अपने अनुभव होंगे जितने यहाँ कुछ ये बंड की
0: वही
1: ताई
0: ना।
1: कुछ की भला होना है।
0: हाँ जी हाँ जी कोई बच्चा लेके जाता जो कुछ लेके जाता तो 50 बारी पुछता यार मैं क्या खावा, फिर फोन दे भी चीज दे भाई
1: हाँ
0: हूं क्या खावा हूं क्या खावा, तो
1: अच्छा
0: दसना तो पौंदा।
1: छोटा बच्चा अगर कोनी जिये पालने वास्ता लेना था कितने दिन तो हाँ देन जिये थोड़ी तो हाँ दी बकरी सुई पई जदा पड़ी आप ही दिन वाले तो
0: भाई
1: हाँ।
0: बच्चा कम से कम 4 महीने चाहिए, तीन
1: अच्छा
0: महीने तो दूध पींदा ही है बच्चा, तीन चार
1: हाँ
0: महीने फिर माँ का दूध नहीं मिलेगा तो फिर वो बच्चा ग्रोथ भी कितना करेगा, बिना दूध तो गर्मी आई जानी अंदर,
1: हाँ जी हाँ
0: फिर डॉक्टर को लेना तो
1: ओबरे
0: फिर
1: दूध नहीं है ना,
0: नहीं फर्क पौंदा ना।
1: मतलब ऐसा डाल ही खाना पैरू लगी पवे है ना।
0: भाई जी माँ का दूध ना 100 बीमारियां मारता है,
1: बिल्कुल हाँ जी हाँ ठीक लगे तो हाँ जी हाँ, यानी कि डाली खाना अगर हाँ था छेलू पैरू लगी पवे
0: हाँ जी हाँ जी
1: इससे बाद अगर हाँ चाह तो खरीद सकते हैं ना,
0: हाँ जी हाँ
1: तो किन्ना किन्ने तक आई जाता अगर कोई लेना हुआ तो हाँ
0: जी
1: ते
0: चार
1: या
0: महीने तक बच्चा ऑटोमेटिक 10-12 हज़ार का हो जाता, 10-12 हज़ार का बच्चा हो जाता, 4 महीने का बच्चा 15-16 किलो तो हो जाता,
1: यानी कि
0: फिर
1: ये तो फिर वजन दे पैसे
0: वजन
1: हुए
0: दे पैसे हो
1: है ना
0: ना।
1: बाकी नहीं हुए है
0: इस
1: ना।
0: तो छोटा बच्चा कोई पाले भी है ना तो पढ़ना नहीं, उन टाइम ज्यादा लगना, जिन्ना बच्चा बन गया होगा ना बनी ही होगा थोड़ा, तो फिर वो अगे ग्रोथ ज्यादा होनी होगी, जो माँ का दूध देने मिलेगा तो फिर बच्चे ने चलना भी कहीं।
1: जियां तो हाँ जालू अपना जियां जल भी तो हाँ अपना कोई जियां बकरी बेची है या छेलू बेचे है या सही चीजा बाहर का अंदाजा इं लगाते
0: लगी
1: हैं
0: जाता बाहर
1: कि
0: दा
1: कोई तोलने तालने का भी आया कुछ। हाँ
0: नहीं, लगी जाता बाहर दा अंदाजा ना पता लगी जाता। हाँ भी है ना फोन ना भी देखते रहने हैं ना,
1: हाँ
0: तो फोन ना भी देखते रहने, तो सब फोन ना दे बड़े बड़े फार्मा बेच सब
1: हाँ
0: मीटर दे कन्ना नाप दे, खेल में लंबाई चौड़ाई नापी के
1: अच्छा
0: ना ना
1: फीते ने
0: हाँ फीते ना पूरा पूरा दस देना, तो एक
1: हाँ
0: दो बार अही भी नापिया तो पूरा पूरा ही आंदा।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: यानी कि तेरी लंबाई ना बनेगी हाइट।
0: और लंबाई नापनी ते पिछले हिस्से की गुड़ाई
1: अच्छा
0: पूरा पूरा
1: यानी
0: ही
1: कि
0: आंदा।
1: फीता मारी गई है
0: हाँ
1: ना।
0: जी हाँ जी
1: हाँ दिखा ये भी तो हाँ बड़ी अच्छी गल जेड़ी सा
0: फिर
1: दसी है।
0: पूरा पूरा ही आंदा।
1: हाँ कई बार नहीं भी पता लगता ठगी भी
0: हाँ
1: आंदे
0: जी हाँ
1: के है
0: जी
1: ना, नहीं कुनी आके दो ठार किट्ठे बेचे ने चार कई बार मजबूरी बिच बेचना भी पौंदे है
0: हाँ
1: ना,
0: जी हाँ
1: पैसे धेले दी तंगी आई जाती है जिन्हें किसी ठगो नहीं तो सभी इं जागरूक हो तेना जो जरा सा पूरा पता लगी जाना ना।
0: जी हाँ जी फीता मारना ना फीते दे पूरा आ जाता, 1 किलो 2 किलो वजन घटता वधदा है
1: अच्छा
0: बाकी नहीं वधदा। हाँ
1: अच्छा
0: जी
1: जी अश्विनी जी अहां दे जेड़े नौजवान युवा साथी है ना उन्हें तो हाँ जरा सा क्या संदेश देना चाहेंगे कि सभी किया अपना काम कार करेगी अपना रोजगार चलाई पान।
0: भाई जी मैं तो यो बोलना कि मैं भी बाहर नौकरी की,
1: अच्छा
0: 15-16 साल नौकरी की बाहर, मशीन चलाता हमें जेसीबी,
1: अच्छा
0: फिर दूजे वाल काम करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, अपना घर बंदा काम करे ना
1: हाँ जी
0: उस काम दे कन्ने साढ़े घर दे बिजी हो जाते,
1: हाँ जी
0: बच्चे बिजी, जिन्ने च 5 मैंबर तो 5 मैंबर हेल्प कर दे एक दूजे की,
1: हाँ जी
0: तो काम वही करो जेड़ा घर बैठ के हो जाए मिल के, तो काफी फायदा मेरे को दिखाई दिया ना,
1: हाँ जी
0: घर में बैठ के खेती बाड़ी करनी वो अच्छा है बाहर भटकने से
1: हाँ जी
0: फैक्ट्रियों में लगने से, सबसे अच्छा है घर में काम करना।
1: अश्विनी जी अपने खेती बाड़ी के अनुभव तो हाँ अहाँ करना साझा किए तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। तो किसान साथी अहाँ ये जानकारी जड़ी से बकरी पालन के बारे में सुनी कने इसके बाद अहाँ फिर ते चलना लोक गीत की तरफ।

0: जी तो किसान साथी इसी प्यारे दे लोक गीत कन्नै साढ़े कार्यक्रम दा समय जड़ा सा इत्थों ही संपन्न होंदा, पर जाने ते पहले दस दिए कि तकनीकी सहयोग रहा अंकित दिमान दा कन्नै कार्यक्रम प्रस्तुति जतिंदर पाल सिंह होर ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਦੱਸਿਓ ਪੰਚ ਜੋ
1: ਕਨੇ ਚੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੈ ਹਿੰਦ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां। इसमें आज आप सुनेंगे हास्य नाटिका नौखे लोग नौखियां गल्लां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राएं दी लेके एक बारी फिर इत्थे हाजिर हन तुहाडे अपने इस कार्यक्रम च। करण जी, कि तुसां जानदे हन कि अज है मंगलवार, मंगलवार जो आहां अपने श्रोतियां जो सुनांदे हन हास्य लघु नाटिका नोखे लोक नोखियां गल्लां, तां श्रोतियो ओह सुणदे हन ये लघु नाटिका।
1: केसरो, ओ केसरो, केसरो, ओ मिये कुछ कमरे बड़ी है तू, ओ इस कमरे भी नहीं है ताए जांदी वाला, इधे इत्थु भी नहीं है। केसरो, करे कोई नहीं है। केसरो,
2: तोड़ दे पिता, सारे पिता तोड़ी दे तू, दिखिया छड़ दी थोड़ा भी, जालू दिखिया तालू बिना सदिये चलिये उन्दी, ना तेरी चिट्ठी, ना तेरा फोन, ना तार, बिना मतलब ते इलड़े हैं, ना कोई तेरा संदेश, ना कुछ।

0: ना कुछ चलियो बिना सदियो चले चलिया जिस पाहे नी दिखे तिस पाहे बैठियो मैं
1: मिंचो की बता तू सिर सैल हुए बैठियो ए दिखमी पतरे दे लायो ते बची की गई तू
0: आईनी बहुत जो खुशी है ना कि केसरो बची गई
1: मी में तेरे सुख शांति ताई दिखला ताई तकारी ब्योरी हो यो ही मिले बड़ा भरी लन गया पता नहीं केसरो दसर सैलू बचिया कि नहीं बचिया ता दौड़ दी चलियो ही सुख शांत भी पूछना कने ले छाई दे डब्बे पकड़ी सियो कालकनी रखियो खटियो यही है उन पानी पाई पाई के पिंदी रही है सियो
0: आ ए तो तेरी सह गल होई चीज ना पोवे मुंह में तो खा मेरी ये नुम में पर इत्थू तो साब है केसरो तू खा खटिया छाई ले दौड़ी होंदी मिठी खवाई होंदी लोग कहेंगे ना खटिया ले होंदी केसरो यो
1: ओना ना तो टाइम में दे कने ले आ कर मैं कर कर देना नहीं ओना होंदा
0: बैठ बैठ चाह पानी जड़ा करना करी ले प्या गई ना ना कोई बकना बैठी गया अपने सो कम्मा छड़ी करिए ना पसूड़िया दा बखे बेहिया मिये बेहिया
1: मी केसरो बड़ी इज्जत पाई ते मेरी तेरे घरे के आई अज मैं ता सोगी छाई दे डब्बे भी लेके आई करे उपरे ते बोला दी खट्टी है
0: छा लंदी तो लगी तो प्याना तिजो में चाह मिये बैठिया बड़ा तमाड़ रखने नुआई देनी करी तिसने आईनी बो आईनी निश्चा रे आज कल शांति जरा निश्चा नहीं रहा अली मैं गला दी थोड़ा बहुत इलन होई या तमी नी मानू समझा दा कि चो दिना दे प्रोने ना हा रखियो मने च सही एनी ओ नी ए खरा ओ बुरा बैठ बैठ करना दे चाहियो
1: पता नहीं मी तू सीता गीता दे पापे ने लड़ियो कि क्या मंजोंदी खाना पे यही कोई नी मेरे खातिर कीती तू छड परा ए दस मिए इलन होया ना तल तू क्या करा दे ही मैं सोचे जाई ने पहले केसरो दा सुख शांत ले आंदी है अंदर थी तू है दस्से मी सुती थी
0: राती या घड़िया को ये जाना था अंदर ही थी मिये कने जिंगे ही पहला टोलका लगा हाय बो मिये गठड़ुए दी याद आई मिंजो ना ठी मैं भी गठड़ुए तो अपना पर मिये याद था जड़िया को तू रखे है जे भूली होंदी ना आ मिये बड़ा मुश्किल था गठड़ो लाया इक्का कने दौड़ी यही मैं बारे हो
1: गठड़ू कह दा गठड़ू
0: इतना की दसी तो सही बड़ा है लोग सुनी लेंदे दे दिया गल्ला नहीं दस दे
1: अच्छा तू गठड़ू तैयार ही रखे था तिजो पता था कि इलन होना है मिंजो क्या नहीं दसिया ते मैं भी गठड़ू पर नहीं रखना हा मिये जालू इलन होया मैं ता मिये बोड़ी ते गुड़ गुड़ गुड़ कर दे लो ये चपला में नहीं पाना मिलिया एक लत अंदर एक बार
0: ओहो ए तो इलने दी गलती हो ये कि कैसरो गलाई या कने तिजो नहीं गलाया तिन्नी कि मैं लग गया होना अड़िए तू कि गप्पा मारा दी मिंजो लगा दे इली या तेरा भी दिमाग इलने ने करने करने
1: इलना नी इड्डा भरी झटका लग गया हमिये हाँ दे तू चाहे दे कुट चली पोना फिर गाय अंदर बंधनी है माख खा दी उनी ते ना यो
0: ओ शांति ये दो कड़ियां बेई भी आ कर मिये जिंदगी मिलियो नंद भी लिया कर जालू दिखे गाय मई दूध क्यों दही छा बैठ कने नंद ले सचाई दा बैठ बैठ

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: Nexa.
6: मी केसरू तुझे पता है मैं सुनिया ना बखे आले दे ना सारी टीरी पियो है मी ए लगी टोटरी है चितिने दे मुन्नुए हो ताई ते मैं बोले केसरू दा भी सुख शांत ली हुंदी घर बार सब कुछ ठीक है कि नहीं मी पूरी रात मिंजो नींदर नहीं आई जरा नींदर नहीं आई
7: ओ शांति ए ते सैला दी गल लाई मी ए फोलणी दी याद आई ए मिंजो ती सादा भी क्या तिजो सुना मैं हिसाब किताब खरा बड्डा मकान पाया
6: छोली जाने आली पियोगा तो सैल पियोना कुदकी
7: ਪਰਾਲਾ ਤਿਸਾ ਪਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਾ ਤਿੰਨਾ ਨਮਾਨੇ ਹਈਆਂ ਪਰ ਪੀਰੀ ਵੀ ਮੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਲਣੇ ਦਾ ਇਹ ਕੁ ਤੁਹਾੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਕਾ ਵੈ ਸੁਣਿਆ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਬਚੀਓ ਸਕਸਾਂਤ ਪੰਤਰਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਿਸਾ ਦਾ ਲੈ ਇੱਕ ਛਾਈ ਦਾ ਡੋਲਣੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੀ ਚੁੱਕ ਜਾਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰੀ
6: ਆ ਤਾਂ

0: चल तो चल। ए दिख मी इस दर सैल वे दिखा अल्ली भी पुरानी संगली लगी हो है। ठोरे मी ठोरे सा फिर ठोरे सा यो
1: पीरी ठोरे तू कुंडिया ने खेलना आई इस सुंगलिया ने जे सुंगली पटोई ना तो उन्ना खाई सड़नी है ना हदोनो जी तुम्हारा आली गाल लो है केसरो गां करीं दिए
0: उंगी भी
1: फोलड़ी ओ फोलड़ी
0: ऐ वो अंदर ही है
1: वो यो मिये खड़ाका
2: ए कुण आई रे आज ऐ कुण
0: ऐनी पछड़ो दिया
2: ठहर ठहर एनका लाना दे जर करी जड़ी इया अखी भी नहीं हुण कम्मे दियां रहियां ए कुण गला दिए
0: मैं नी ओ मिये फोलनी तेरा स्यापा तेरा मैं शांति ए मिंजो ने आई हो केसरो दिखे तू जिब खुल दी तेरी मिंजो ने बड़ा चपर चपर पांदी तू
1: बखा होंगी ताता मैं दसगी फोलड़ी केसरो मेरे पाहे दिख मैं पणछोई आनी
2: पणछोई आई मिंजा तू मैं पणछोई आई कना ओ भी पणछोई आई जरा की भलेखा लगा है सुकी यही क्या होया मिये
0: कट सुझा था तुझे एक ही अखी ते दुन्नी ते दिख खरी ते ऐब दिया
2: दुन्नी नहीं अखी मेरियां खरियां न पर जरा करी लगी पे नजरा च फर्क पौना तू आ कियां की पूजियां आज
0: ओ मैं सोचिया सुख शांत लियोंदी फुलणी दा एडा भारी मी जड़जड़ आया हा एडा भारी लणाए हमिए तेरे रसैलुए दी चिंता लगी मेले फुलणी जाए के पूछी होंदी है जिंदा है कि चली यो कने कालकड़ी मिये ग्राए च नहीं सुजी बोले चली ये चार धाम गई है कुथी ही तू
2: जेड़े गला देना चार धाम तिने पूछ भला जे सखसांत तू फोलनी दाई के लिया भी चार धाम होइए मेरे घर है बिस्तरा ही पियो साल होइए मिंजो भैन सदियो अपनी ये बेचारी करा दी के माड़ा मोटा काम ता मिंजो खाने समला मिलना दा समझायो
3: हाँ जी नमस्ते जी नमस्ते बैठा जी बैठा ए भैणा दा तां क्या है ना अजकल थोड़ी जी तबीयत खराब चली हो तां भई मैं आई हो थी
2: तू बड़ियां गल्लां मत करा चाह लिया फटाफट हुण आई आ तां चाहदा कुटता पुछणा ही पौणा
3: बिल्कुल जी बिल्कुल बैठा तूं पहले मैं तुहानू पानी पियांदी फिर चाह लियोंदी है ठीक है जी कोई गलाने दी गल है
0: खरी फोलनी तू
2: हुण तां खरी है ताई तां तेरे सामने खड़ूती हो पर पहले नहीं थी मैं खरी दूवे जुगे हटी है मैं तां
3: ले जी लिया पानी पिए पहले
0: अधिक फोलनी मी खरा होए तेरी भैन आई रही हो एडी भारी सेवा करा दी मी दिख आंदी इतनी सेवा ता तेरी जान भी नहीं बचाई हड्डी मिंजे लगा दा
2: ओ मी ये बोल दे फस दिया दा गहना ए भी ना करा दी ही पहले बड़े परी मैं मिंता कितिया चले आ मी ये दो कड़ियां जे दिखनी है भैन चार दिन जिंदी ता यह भी कुतू टाइम सो कम बेहतर है कोई दुकान कोई बच्चे स्कूल ना भेजने फिर मैं बोले मी थोड़े दिन कढ़ाई दे मेरे ਸਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਣ ਪੁੱਛਾ ਦਾ
3: ਮੀਓ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਆਈ ਆ ਕਰਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰਾਏ ਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ
0: ਆਹਾਂ ਦੇ ਭਾਏ ਗਈ ਉਹ ਫੁੱਲਣੀ ਚਾਰ ਧਾਮ ਸਾਂਝੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਬਿਸਤਰੇ ਪਈ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮੀ ਫੁੱਲਣੀ ਦਿਖਦਾ ਆਹਾਂ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਡਰੀ ਆਈਆਂ
2: डरी तो मिये मैमी मैं तो उठने जोगी नहीं रही लण जाया था
3: ले ले उन चाह पी लिया चाह ये चाह पी
2: रखी दे मिये चाह ही रखी दे दो कड़ियां गलाना दे
3: पकोड़े भी बना थोड़े दे
2: मैं गलाया तिजो पकोड़े बनाने हो ऐ बेसन पहले अंदर जाए के देख पला ये भी खुआ दिया पकोड़े कदी चलिए तू अपना काम कमाई ले
3: तो ठीक है फिर ना ये बिस्कुट ही दे इन दी है
2: रहने दे तू चली पोडोल के तीजे कम में लगी कर बिस्कुट अपने खुआ दिया मिंजो ये रोज
3: तो मुझे ना सिर्फ कली चाय पियानी
2: तिजो ने पता तू चार दिन आई हो ना मैं जान दी ना ग्राए दी है
3: चल चल ठीक है फिर जी तू गला दी अड़िए
0: मी केसरो ये बढ़िया खुसर पुसर नहीं करा दी भैना भैना बड़ा प्यार मी ना दूनी दा पुछ दिख मी भैन के एडी भरी काम मी चाय यो पुछा दी पानी यो पुछा दी है ना
4: आ मी ये शांति बड़े सुख भैना दे बड़े सुख मी ये

0: केसरो चली पौंदियन, अच्छा फुल नहीं था चली पौंदियन तब केसरो चल तो चली पौंदियन।
1: उठे ता उठे कई बैठी कालू दी अड्डी राम कथा लाई करिया फोलनी।
2: हाँ
1: आई नी बो जान खरी सदी फोलनी ध्यान रखिया चल दिया ना। हाँ
2: रखिया मी रखिया भी दो चार दिन नहीं है भैन भी गला दी भी चली आना ना, पर मैं बोले चलो जरा की जंगा सदेरी थी इन्ने मेरिया ना चलने वाली हो ही ता हुण मैं मठिया मठिया चलियो करना तुहाड़ा भी कदी कदी।
1: आ निकले आ कर जरा के घर ते ना
2: तू भी चले आ करा तमी पुछी आ कर हाल चाल।
1: कोई नी कोई नी ए उंदा ना दुइया बरिया फिरी
2: कौन
1: ए इलण ए पीरी लगा ताऊंगी यहां तेरे सुख शांति हो आला।
2: इसने पहले नहीं आई सकती है पे इलणे ने आ लाई तू। हां
1: अमी ये सुख शांति लेने दा चल कोई पाना मिली यांगा तू ध्यान रखिया
2: दे दे पाना नहीं चाहिए वो सारे सुख शांति चाहिए दी।
3: फोलनी भैन ए तो चली पईया जरक मैंने रोटी राटी बनाई दी है थोड़ी देर बोल बहने
2: सामने ना मिंजो मत गलवा कर चलिया तो जाना दी डोल कितिया ने हूं तीजो घड़िया घड़िया खाने लेवा तीजो नहीं पता इन्हों का ये भी नहीं पुछदियाँ चाहे तो लावा मिंजो कुछ भी
3: ये दे दिया ने मिंजो नहीं है पता था ही नहीं आंदी है पूछना।
2: चल चल तू कमाई अपने कमे मिंजो जाना देने लगी भेजना।
1: अच्छा फोलनी चल दिया ने ता
2: रुको रुको मैं चली पिया चरफट खादा भी नहीं कुछ रोटी लगी बनना खाई के जानी थी।
0: ना ना मैं बस सुख शांति लेना आई है यहां रोटी घरे बनानी कने खानी चल केसरु चल।
2: ओ मैं दो मिनट लगनी है खाई आना था ग्राह ग्राह जरा करी।
0: ना ना मैं फलनी फिरी खांगी हां।
1: ओ शांति ए मैं बड़ा पर जोर पाए अन्ना खाई लेनी है
0: चल चल तू इन्ने बोल दिए चल।
3: ओ फलनी बहन तू मिंजो मना करा दी कने अप्पू तू बड़ा बड़ी जोर पा दी अजे बेही इन्या ता
2: तीजो नहीं पता चली अन्ना इन पुछ दी मैं जाती है बरिया कौन बैठे ने बुढ़े का नौकर इतू मिंजो तो नहीं बन दी रोटियां।
4: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
5: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
6: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
7: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने

0: बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. Addressing the media in New Delhi, External Affairs Minister Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System Vinimay in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. The system is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative marks a significant step towards building a modern and technology-driven border management system.
3: कि लैंड पोर्ट का तेजी से विकास होने के बाद
4: आफ्टर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड पोर्ट नॉट ओनली हैज ट्रेड इंक्रीज्ड बट सिक्योरिटी हैज आल्सो बीन इंश्योर्ड इट हैज हेल्प ट्रांसफॉर्म इलीगल ट्रेड इनटू लेजिटिमेट ट्रेड इन द विजन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज वेयर माइग्रेशन वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द लैंड पोर्ट्स हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एड्रेसिंग दिस एज वेल
3: लैंड पोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
1: Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Amir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jaber Al Sabha. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. The central government has given financial support of approximately 1.23 lakh crores rupees to the oil marketing companies to support the consumer from the burden of rising crude oil price. According to the government sources, the financial support has been provided to OMCs is for the initial 78 days of the West Asia conflict. This financial support includes the excise duty cut. Government has proposed an interim budget allocation of 95,692 crore rupees to the states and union territories to ensure a smooth transition from MNREGA to Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBG Ramji. The act will come into force across the country with effect from 1st of next month. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan announced this in a media briefing after holding a virtual meeting with the rural development ministers of the states and UTs in New Delhi. He said that the government has asked states and union territories to make necessary preparations ahead of the implementation of the act. Benchmark domestic equity indices ended over 0.5% up today, snapping two-day losing streak. The Sensex rose 395 points to close at 73,919, while the Nifty jumped 119 points to settle at 23,242. And that is the end of this news bulletin.
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है. शाम के 7:10 हुए हैं. अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, विशेष कार्यक्रम आर्थिक विकास.

0: सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा के विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट

0: लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई। उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित कर दें?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन्स का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन्स में से करीब करीब 250 स्टेशन्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कंप्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उनपे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कंप्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के

0: हो पाया क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए। आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स की डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला, क्योंकि ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इंपोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं PLI के

0: चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
1: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना है।
0: सर, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं, एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
1: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था, हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके CEO मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था और उसके बाद में HR डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
0: लेकिन
1: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
0: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि VPN के जरिए और उन सब के जरिए,
1: ये बात ठीक है आपकी,
0: आप कैसे उस पे रोक लगा?
1: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
0: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के इस तरीके की अभी
1: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 principles के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
0: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
1: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
0: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
1: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है जब भी परिवर्तन आता है तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
0: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी जो सपने थे वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं लहराते जा रहे हैं और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं संसदीय कार्य मंत्री भी हैं इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्युपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
3: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
4: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के पॉलिसी पैरालिसिस होकर के और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल

0: मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन, देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो, लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहां से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहां चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी है। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं।

0: और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रही है, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब

0: जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।

0: सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा हिमाचल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विकसित भारत 2047 मिशन को हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास जरूरी। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। मीडिया या सोशल मीडिया में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश की नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को, वार्ड सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता, तकनीक आधारित कृषि परिवर्तन, जलवायु अनुकूल और सतत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा, युवाओं में उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति का विकास करने और विश्वविद्यालय उद्योग साझेदारी को सुदृढ़

0: नियंत्रण करने पर बल दिया है। राज्यपाल आज डॉक्टर वाई एस परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि समर्पित नेतृत्व, प्रतिबद्ध संकाय और विद्यार्थियों के सहयोग से विश्वविद्यालय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित करेगा। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय प्रशासन को बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के पुनर्गठन की प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आई भारत में नॉर्वे की राजदूत मे एलिन स्टेनर से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निर्माण व विध्वंस मलबे के प्रबंधन और पुनर्चक्रण के क्षेत्र में नॉर्वे की विशेषज्ञता, श्रेष्ठ प्रणालियों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सतत व पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नॉर्वे के साथ सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने नॉर्वे की कंपनियों को हिमाचल में पर्यटन, हरित ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक राष्ट्रीय और सामूहिक मिशन है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास भी जरूरी है। पठानिया ने आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र जोन 2 को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत मिशन की नींव स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा रखी गई थी, जिसकी आज कल्पना की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सभी को संगठित होना होगा और इसमें कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पठानिया ने यह भी कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना होगा और बेरोजगारी को खत्म करने के प्रयास करने होंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और उनका निरीक्षण भी किया। अग्निहोत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ हैं और उनके कल्याण, सुरक्षा व सम्मान के लिए किया गया प्रयास सार्थक पहल है। रोहित ठाकुर आज शिमला में मीडिया वेलबींग एसोसिएशन द्वारा हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों के लिए 10-10 लाख रुपए की निशुल्क दुर्घटना बीमा पॉलिसी के शुभारंभ व वितरण के मौके पर बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार 60 साल से अधिक की उम्र के वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन शहर के माल रोड पर आयोजित महानाटी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान रंग बिरंगे पारंपरिक हिमाचली परिधानों में 320 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल शर्मा ने कहा कि इस महानाटी का थीम माँ यानी मदर्स अगेंस्ट एडिक्शन था। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने इस मौके पर महिलाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई।
1: है महानाटी है, ये एक विशेष थीम के अंतर्गत आयोजित की जा रही है और हमारा थीम है माँ, माँ मदर्स अगेंस्ट अब्यूज। तो जैसे कि हम देखते हैं महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ हिंसा भी, असमानता भी, अन्याय भी हमें समाज में देखने को मिलता है। तो आज हम सब महिलाओं ने यहाँ पे ये संकल्प लिया।
0: ग्रीष्मोत्सव के दूसरे दिन आज जहां गेटी थिएटर में पहाड़ी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, वहीं फ्लावर शो और हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड की प्रस्तुति भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। ग्रीष्मोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या के मौके पर पार्श्व गायिका ज्योतिका टांगरी अपने गानों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के उपाध्यक्ष नीरज भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की अनुशासन समिति की आज शिमला में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। विधायक व

0: अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब मीडिया या सोशल मीडिया में पार्टी और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं होगी।
1: एक तो सर्वसम्मति से हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी अनुशासन के मामले में जो है अब आने वाले समय में बहुत ज्यादा सख्त होने वाली। कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या कांग्रेस पार्टी संगठन से जुड़ा व्यक्ति मीडिया में नहीं जाए, ना ही सोशल मीडिया में कोई टिप्पणी करेगा जिससे पार्टी को नुकसान होता हो। वो सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया कि नीरज भारती जी को संगठन से, पार्टी से 6 वर्ष के लिए जो है तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए।
0: प्रदेश सरकार ने राज्य में नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को तय की है। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि लाहौल स्पीति में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, पंचायत समिति केलंग और चंबा जिला के पांगी सब डिवीजन की पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 18 अक्टूबर को होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायतों की पहली बैठक में प्रधानों द्वारा हाल ही में निर्वाचित वार्ड सदस्यों को उनके पद की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य सचिव के पंत ने सभी जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को आगामी मॉनसून सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण आपदा और उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तैयारियों को और मजबूत करने को कहा है। मुख्य सचिव आज शिमला में मॉनसून की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार विभागों के बीच बेहतर समन्वय, चेतावनी प्रणाली, बाढ़ नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश सरकार ने शिमला जिला के दत्तनगर क्षेत्र में बीएमसी केंद्रों से आज से दूध की खरीद बंद कर दी है। प्रदेश भाजपा ने सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार का ये फैसला किसानों की आजीविका पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रही है।
2: कल सरकार से आदेश आया है, जो सरकार का सुखी सरकार का एक तुगलकी फरमान जो आया है, जारी हुआ है कि मंगलवार को दत्तनगर के जितने भी बीएमसी है उसके अंतर्गत जो दूध नहीं खरीदा जाएगा, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। आप एक तरफ से महिला किसानों को और दूध उत्पादक किसानों को कह रहे हैं कि हम आपकी आय को दुगना कर रहे हैं, हम आपकी आय को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से दो दो महीने से पेमेंट नहीं मिल रही है।
0: प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी है। अदालत ने ये रोक भाजपा के दो पार्षदों द्वारा चंबा सदर के वर्तमान विधायक के इस चुनाव में वोट डालने पर आपत्ति जताए जाने के बाद लगाई है। अदालत ने इस संबंध में चंबा जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 15 जून के लिए निर्धारित की है। चंबा के एसडीएम प्रियांशु खाती ने कहा कि हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। एम्स चमियाना के प्रधानाचार्य डॉ ब्रिज शर्मा ने कहा है कि इस अस्पताल में अगले एक महीने में 3 टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित कर दी जाएगी। डॉक्टर ब्रिज शर्मा ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एम्स चमियाना को बहुत कम समय में पूरी तरह से क्रियाशील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और यहां हर रोज ओपीडी की संख्या 1000 से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में 24 घंटे की लैब सुविधा, ब्लड स्टोरेज सेंटर और सिटी स्कैन व एक्सरे सुविधा शुरू कर दी गई है और डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिक्षा व अनुसंधान में उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा नॉर्वे के साथ उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में कार्य करेगा हिमाचल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा विकसित भारत 2047 मिशन को हासिल करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों का विकास जरूरी। प्रदेश कांग्रेस ने नीरज भारती को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। मीडिया या सोशल मीडिया में बयानबाजी करने वाले नेताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। और प्रदेश की नवनिर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक 27 जून को वार्ड सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे

प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव और एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं देशगान।

0: देशकान अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी शिमला से। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स और FM 103.7 मेगा हर्ट्स पर ये आकाश।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति तलत अजीज की आवाज में गाई ये गजल।

अभी आपने सुने तलत अजीज की आवाज में गाई ये गजल, अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अभी आपने सुना हरभजन मानव साथियों की आवाज़ों में गाया ये पंजाबी गीत अनेक

रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं। आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति इलारून की आवाज में।

अभी आपने सुना इलारून की आवाज में गाया ये गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गणेश हेगड़े की आवाज में गाया ये गीत।

अभी आपने सुना गणेश हेगड़े की आवाज़ में गाया ये गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्रों से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति भूपेन हजारिका की आवाज़ में।

चोला चोला भूख मिटाए दे प्यास हटाए दे खाली है पेट का झोला वो झोला झोला वो झोला

भरियो कटोला कटोला। जिंदगी की आग में काहे को जलाते हो कागजी शरीर का चोला ओ चोला। भूख मिटाए दे।

अदनान सामी साबरी ब्रदर्स व सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब समय है देशकान का।
1: बोल फौजी बोल, पाकिस्तान जिंदाबाद।
2: हिंदुस्तान जिंदाबाद।

अभी आपने सुना अरिजीत सिंह व साथियों की आवाजों में गाया ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति महेंद्र कपूर व साथियों की आवाजों में।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि MT मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
2: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, LNG, LPG तथा उर्वरकों के

0: उत्पादक
1: एनर्जी
0: हैं, क्योंकि ये
1: फर्टिलाइजर
0: राष्ट्रीय हित का विषय
1: मैन्युफैक्चरर्स
0: है।
1: प्रोडक्ट्स
0: इसलिए
1: बिकॉज
0: विदेश
1: दिस इज
0: नीति
1: अ
0: पूरी
1: नेशनल
0: तरह
1: प्रोडक्ट
0: से
1: सो
0: उस
1: फॉरेन
0: समय के प्रमुख
1: पॉलिसी
0: राष्ट्रीय
1: कंटिन्यूअसली
0: लक्ष्यों के
1: इज इन
0: अनुरूप
1: सिंक
0: संचालित
1: विद
0: होती
1: व्हाट
0: है।
1: आर एक्चुअली द प्राइम नेशनल गोल्स ऑफ द मोमेंट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर नीट लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी राम जी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
10: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
9: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jayashankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer, and cyber strength.
11: The amount of time we have spent engaging countries who are oil providers, gas providers, within that LNG, LPG, fertilizer, manufacturers, traders, because this is a national priority. So the foreign policy continuously is in sync with what are actually the prime national goals of the moment.
9: Dr. Jayashankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Dr. Jayashankar also emphasized India's balanced engagement across key regions amid growing geopolitical tensions. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Meshel Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for the earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Emir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day official visit to France and Slovakia from Saturday. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron on Sunday. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship, which was elevated to the level of a special global strategic partnership earlier this year. On the second leg of his visit, Mr. Modi will pay a state visit to the Slovak Republic from 14th to the 16th of this month. This will be the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. On the third leg of the visit, the Prime Minister will participate in the G7 summit in Evian, France, on the 16th and 17th of this month. The BRICS Agriculture Conference kicked off in Indore, Madhya Pradesh today, bringing together representatives from 21 countries to discuss some of the most pressing challenges facing agriculture worldwide. India, which holds the BRICS presidency this year, is hosting the conference. The conference, running till 13th of June, will see wide-ranging discussions on food security, agricultural trade, climate-friendly farming practices, and innovation in the agriculture sector. The idea is to build stronger cooperation among member nations and find common solutions to shared challenges. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today visited the National Testing Agency headquarters and reviewed the preparations for the re-NEET exam, which is going to be held on the 21st of this month. Talking to reporters outside the NTA headquarters in New Delhi, the minister said the centre has ensured that all necessary measures are being taken while maintaining complete confidentiality, from the preparation of the question papers to all subsequent procedures. Mr. Pradhan said this includes ensuring that examination materials reach the examination centers accurately and on time.
12: From setting the question papers through all subsequent stages, it is the responsibility to ensure that question papers reach the examination centers on time. A meeting of secretaries from relevant departments was held under the leadership of the cabinet secretary. I have also written to the chief ministers of all states. While they have cooperated in the past, I have requested even greater attention this time.
9: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The central government has given financial support of approximately 1.23 lakh crore rupees to the oil marketing companies to support the consumer from the burden of rising crude oil price. According to government sources, the financial support has been provided to oil marketing companies is for the initial 78 days of the West Asia conflict. This financial support includes the excise duty cut. The sources said the gold imports have seen a reduction. It added that the reduction is a result of higher import duty on gold and the Prime Minister's appeal to the nation for not buying gold for at least 1 year. The sources further added that the growth of the economy is not under stress and high frequency indicates that the domestic economy is supporting the country. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System Vinime in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. Vinime is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable a secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Addressing the gathering, Mr. Shah said, the initiative marks a significant step towards building a modern and technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security.
13: After the rapid development of the land port, not only has trade increased, but security has also been ensured. It has helped transform illegal trade into legitimate trade. In the vision of all-round development of border areas, where migration was the biggest problem, the land ports have made a very important contribution in addressing this as well.
9: The Defence Ministry has approved the establishment of a 250-megawatt solar power project with Battery Energy Storage System, BESS, at Sitapur in Uttar Pradesh. This system will be established on approximately 850 acres of vacant defence land. This is the first of its kind project undertaken by the Ministry of Defence involving the development of a large-scale solar power generation facility with integrated BESS support on defence land. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Today, we focus on the measures taken by the government towards health services.
14: India's health system is now more accessible, affordable and quality-driven. In 2018, Prime Minister Narendra Modi launched the world's largest health insurance program, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Under the scheme, free health insurance up to 5 lakh rupees per family per year is being provided to socio-economically deprived families. More than 44 crore Ayushman cards have been created and treatment worth over 1 lakh 80,000 crore rupees have been provided. In October 2024, the government launched Ayushman Bharat Vaya Bandhana, extending health insurance coverage to all senior citizens over 70 years. Talking to Akashwani News, Rohit Singh of Delhi said, with this card, he can now avail treatment at private hospitals as well.
15: My name is Rohit Singh with the Ayushman card. I will be able to get treatment in private hospital for myself and my family. With this, my family will stay completely healthy and will able to get good treatment.
14: The government has also established 1,86,000 Ayushman Arogya Mandirs to provide primary health care at every neighborhood. The Pradhan Mantri Bharatiya Jan Oshadhi Pariyojana also providing quality assured generic medicines at significantly lower prices than market prices. Talking to Akashwani News, Dilip Kumar, a resident of Bihar, said that the medicines at Jan Oshadhi Kendras are available at very low prices.
16: If the medicines were not from the Jan Oshadhi Kendra, there would have been a lot of trouble in my life. Because here, medicines are very cheap. A 100 rupee medicine is available for just 10 rupees. I'm getting immense relief. The medicine is working well too, and my money is not being wasted either.
14: The government has expanded medical education to meet rising demand for health professionals. The number of AIIMS has gone up to 23, while the number of medical colleges increased from 387 to 818. Ministry of Ayush, formed in November 2014, established traditional medicine as an active part of India's health system. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
9: In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Dambula International Stadium today. IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। आज हम आपको सुनवाएंगे गायिका सुमन कल्याणपुर के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत इस समय हम आपको सुनवा रहे हैं गायिका सुमन कल्याणपुर के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। जी हाँ श्रोताओं, वे एक भारतीय पार्श्व गायिका थी। भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में से एक सुमन कल्याणपुर ने हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, ओडिया और पंजाबी के अलावा अन्य कई भाषाओं में भी फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। सुमन कल्याणपुर को मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, तलत महमूद, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे युग के लोकप्रिय गायिकाओं में से एक माना जाता है। सुमन कल्याणपुर ने कुल 857 हिंदी गाने गाए हैं।

कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं गायिका सुमन कल्याणपुर द्वारा गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत।

जी हाँ श्रोताओं, एक हिंदी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गीत के लिए 3 बार इन्हें प्रतिष्ठित सुर श्रृंगार सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2009 में इन्हें दिया गया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। इसमें आज आपने सुने सुमन कल्याणपुर द्वारा गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज 9:30 से लेकर 10:30 तक। और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा कटोच। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सुनवाने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले लीजिए सुनिए निकेश कुमार की आवाज में गाया ये लोकगीत।

अभी आपने सुना निकेश कुमार की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति शिव कुमार व साथियों की आवाज़ों में।

दयाराम व धनदेव की आवाजों में अभी आपने सुना ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदि इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं संत राम शर्मा की आवाज में गाया ये चंबियाली लोकगीत।

संतराम शर्मा को अभी आपने सुना इस चंबियाली लोकगीत में। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीता दी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार गद्दी की आवाज में गाया ये लोकगीत।

राजकुमार व साथियों की आवाज़ों में गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतां दी इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से और आज मैं हूं आपके साथ वर्षा कटोच। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति राज प्रभाकर की आवाज में।

अभी आपने सुना राज प्रभाकर की आवाज में गाया ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

प्रेम सिंह व साथियों की आवाजों में गाया लोकगीत अभी आपने सुना। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं तिलकराज व साथियों की आवाजों में ये लोकगीत।

अभी आपने सुना तिलकराज की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति रवि रघुवंशी की आवाज़ में।

अभी आपने सुना रवि रघुवंशी की आवाज़ में गाया ये लोकगीत। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश चौहान की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

सुरेश चौहान की आवाज में गाए इसी लोकगीत के साथ हमारा आज का धाम गीतांदी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से कुछ गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति जीवन मृत्यु फिल्म से मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के युगल स्वरों में।

अभी आपने सुना जीवन मृत्यु फिल्म का यह गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी ने। पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मुकेश की आवाज़ में फिल्म कभी कभी से।

अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में गाया कभी कभी फिल्म का यह गीत, संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपके साथ फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना आपके साथ फिल्म का यह गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कटी पतंग फिल्म से मुकेश की आवाज़ में।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना कटी पतंग फिल्म का ये गीत, पुरानी फिल्मों से कुछ गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मन्ना डे की आवाज़ में संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और फिल्म का नाम उपकार।

अभी आपने सुना उपकार फिल्म से यह गीत, जिसे गाया था मन्ना डे ने। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं ममता फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए ममता फिल्म के इसी गीत के साथ हमारा आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं अब पहले हिंदी में समाचार व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताज़ा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka.